सुप्रभात। एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है। आज मंगलवार है, शक संवत 1948, वैशाख मास की तिथि 22, तदनुसार 12 मई ईस्वी सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:59 हो रहे हैं। आरंभ होती है हमारी आज की सभा।

ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संघर्ष को इस दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताते हुए राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया है। वडोदरा में सरदार धाम छात्रावास का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम से कम प्रभाव पड़े। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से सात सूत्री अपील को अपनाने का आग्रह किया है।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टाले।
0: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से विदेशों से आयातित उत्पादों का उपयोग कम करने और विदेशी मुद्रा के व्यय से जुड़े व्यक्तिगत कार्यों से बचने का आग्रह किया। सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन और एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध है। विदेशी मुद्रा भंडार 703 अरब डॉलर के स्तर पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हुई मंत्री समूह की बैठक में ये जानकारी दी गई।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार से 5 देशों की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में वे शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। जर्सन के साथ बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की जाएगी तथा व्यापार और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के नए उपाय तलाशे जाएंगे। दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन के साथ उद्योग जगत प्रमुखों को संबोधित करेंगे। यात्रा के चौथे चरण में प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को नॉर्वे पहुंचेंगे। वे तीसरे भारत नॉर्वे शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी इस महीने की 19 तारीख से इटली की आधिकारिक यात्रा पर होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा से यूरोप के साथ भारत की साझेदारी मजबूत होगी। असम में आज हिमंता बिस्वा सरमा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। गुवाहाटी में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्य के मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल होंगे। पुदुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी मुख्यमंत्री पद की शपथ बुधवार को लेंगे। अमेरिका और ईरान के बीच कमजोर संघर्ष विराम के लाइफ सपोर्ट पर होने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी के बाद राजनयिक तनाव गहरा हो गया है और तेल बाजारों को झटका लगा है। ईरान ने अमेरिका के शांति प्रस्ताव पर अपनी प्रतिक्रिया में अमेरिकी प्रतिबंध हटाए जाने, ईरान की फ्रीज परिसंपत्तियां खोलने, अमेरिकी नाकाबंदी समाप्त करने और हॉर्मुज जल डमरू मध्य पर ईरानी प्रबंधन को मान्यता देने की मांग की थी, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन शर्तों को नामंजूर कर दिया था। शांति प्रस्ताव खारिज होने के बाद कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक का उछाल आया है। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को 3 विकेट से हरा दिया। 211 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दिल्ली कैपिटल्स ने 19 ओवर में 7 विकेट पर 216 रन बनाकर मैच जीत लिया। आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला अहमदाबाद में सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वीसी प्रमोद। Senior BJP leader Hemanta Biswa Sarma will be sworn in as Chief Minister of Assam in Guwahati today. Assam Governor Lakshman Prasad Acharya will administer him the oath of office in secrecy at a ceremony to be held at the Veterinary College playground in Khanapada area of the city. 4 ministers, including 2 from the BJP and 1 each from AGP and BPF, will also take oath along with the Chief Minister. They are Rameshwar Teli, Atul Boda, Charan Bodo and Ajanta Niyog. In a social media post, Mr. Sarma said that former Minister Ranjit Kumar Das will be NDA's candidate for the Assam Assembly Speaker's position. This will be the second consecutive term for Mr. Sarma as Chief Minister of, and third term for an NDA government in Assam. The swearing-in ceremony will be attended by Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh and BJP President Nitin Nobin, among others. The NDA, comprising the BJP, Aham Gana Parishad, AGP and Bodoland People's Front, BPF, secured a sweeping mandate in the assembly polls, winning 102 seats in the 126-member house. The BJP bagged 82 seats, while AGP and BPF won 10 seats each. Mr. Sarma, who first became Chief Minister in 2021, is set to become the first non-Congress leader in Assam to serve 2 consecutive terms as CM. This will be the NDA's 3rd consecutive term in the state since the BJP-led alliance first came to power in 2016 under then-CM Sarbanand Sonowal. Enforcement Directorate ED has arrested former Fire and Emergency Services Minister of the Government of West Bengal, Sujit Basu, in Kolkata in connection with the South Dumdum Municipality recruitment scam. Officials at the ED said that Bose allegedly recommended around 150 candidates for various posts under the South Dumdum Municipality in

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। अब आइए सुनवाते हैं खेती की बातें। इस कार्यक्रम के तहत श्रोताओं आज आप जानकारी प्राप्त करेंगे रवि फसलों की कटाई के उपरांत खेत का प्रबंधन। इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं संजीव मेहता।

किसान भाइयों, कार्यक्रम खेती की बातें में आज हम रबी फसलों की कटाई के उपरांत खेत का प्रबंधन विषय की चर्चा करेंगे। किसान भाइयों, रबी फसल अर्थात गेहूं, चना आदि इन फसलों की कटाई के उपरांत आम तौर पर हम लोग खरीफ फसलों की तैयारी शुरू कर देते हैं। इसीलिए हमारा सुझाव है कि रबी फसल की कटाई के उपरांत उनके अवशेषों को खेतों में न जलाएं, बल्कि खेतों की ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करें। इससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ेगी, नमी भी संरक्षित होगी, साथ ही खेतों के कीट और खरपतवार नष्ट हो जाएंगे। किसान भाइयों, इस समय खेतों को खाली छोड़ने के बजाय आप हरी खाद जैसे ढैंचा, सनई आदि आप अपने खेतों में लगा सकते हैं। ये खरीफ फसल के लिए मिट्टी को उपजाऊ भी बनाते हैं, साथ ही गर्मी में आपके पशुओं को हरा चारा भी उपलब्ध कराते हैं। किसान भाइयों, रबी फसलों की कटाई के उपरांत आप खेत को कल्टीवेटर या मिट्टी पलटने वाले हल से गहरी जुताई करें। इस कार्य के लिए मई का महीना उचित माना गया है। गहरी जुताई से मिट्टी की संरचना में सुधार होता है और खेतों में नमी बनी रहती है। किसान भाइयों, आप पराली जलाने के बजाय उन्हें मिट्टी में मिलाकर रोटावेटर से अच्छी तरह जुताई कर दें, ताकि वे खाद में बदल जाएं। किसान भाइयों, आपको बता दूं कि खाली खेत में ढेंचा, सनई और लोबिया बोने से ये फसलें मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाती है, जो खरीफ फसलों के उत्पादन में वृद्धि करती है। हाँ किसान भाइयों, एक बात और, यदि इस समय आपके पास सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं, तो आप ग्रीष्मकालीन फसलें जिसमें मूंग, उड़द या चारे वाली फसलें उगा सकते हैं। ये फसलें कम समय में अतिरिक्त आमदनी करवाकर आपको मुनाफा दिला सकती है। किसान भाइयों, इस समय आप अपने खेतों की मिट्टी की जांच भी करवाकर सूक्ष्म पोषक तत्वों का प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, आप खेतों के मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए और वर्षा जल को संरक्षित करने के लिए खेतों की मेड़बंदी भी जरूर करा लें। किसान भाइयों, किसी भी परिस्थिति में खेत में आग लगाकर पराली नहीं जलानी चाहिए, क्योंकि आग लगाने से खेतों में पड़े मित्र कीट और केंचुए भी मर जाते हैं, जिससे मिट्टी की प्राकृतिक उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है। तो किसान भाइयों, इन सारी बातों का ध्यान रखकर आप रबी फसलों के बाद खरीफ फसलों से अच्छी उपज प्राप्त कर सकते हैं।

आज का सुविचार। गौतम बुद्ध के अनुसार हर सुबह हम एक नया जन्म लेते हैं और हम आज क्या करेंगे ये सबसे अधिक मायने रखता है।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र और अब हम हाजिर हैं कार्यक्रम वंदना लेकर। इस कार्यक्रम में आइए सबसे पहले सुनवाते हैं ये देशभक्ति गीत।

ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब आइए सुनवाते हैं कार्यक्रम वंदना में भक्ति रचनाएं। पहली प्रस्तुति है हरिहरण के स्वर में।

श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी जमशेदपुर और सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। अगली प्रस्तुति है नितिन मुकेश के स्वर में।

0: श्रोताओं, सुरेश वाडकर के गाए इस भक्ति गीत के साथ ही हमारा आज का कार्यक्रम वंदना अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस।
1: पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने श्री राम अवतार की कथा सुनाते हुए ब्रह्म के निर्गुण तथा सगुण रूपों की व्याख्या की। जो निर्गुण अर्थात अरूप, अव्यक्त और अजन्मा है, वही भक्तों के प्रेमवश सगुण हो जाता है। जिस प्रकार जल और ओले में कोई भेद नहीं, दोनों जल के ही रूप हैं, उसी प्रकार सगुण और निर्गुण भी तत्वतः एक ही हैं। अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रम को समझ पाने में असमर्थ होता है, इसी कारण वो प्रकाश पुंज पुराण पुरुष श्री रामचंद्र पर एक मानव की भांति मोह के आवरण में लिपटे होने का आरोप लगाता है।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संघर्ष को इस दशक के सबसे बड़े संकट में से एक बताया है। उन्होंने राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया। वडोदरा में कल सरदार धाम छात्रावास का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम प्रभाव पड़े। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से सात सूत्री अपील को अपनाने का आग्रह किया।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में शुक्रवार को प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग तथा परस्पर हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत होने की संभावना है। दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नरेश विलेम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। इसके बाद श्री मोदी रविवार को स्वीडन की यात्रा पर गोथनबर्ग पहुंचेंगे। यात्रा के चौथे चरण में प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को नॉर्वे पहुंचेंगे। वे तीसरे भारत नॉर्वे शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी इस महीने की 19 तारीख से इटली की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी नेता हिमंत बिस्व शर्मा आज दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये असम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की तीसरी सरकार होगी। श्री शर्मा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वे राज्य में ये उपलब्धि हासिल करने वाले एकमात्र गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन तथा एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी उपस्थित रहेंगे। तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के 30 विधायकों ने पी वेलु मणि को विधायक दल का नेता और सी विजय भास्कर को सचेतक चुनने की घोषणा की है। इन विधायकों ने अस्थाई अध्यक्ष करुपैया से मुलाकात कर अपने हस्ताक्षर वाला पत्र उन्हें सौंपा। वहीं 17 विधायकों के एक अन्य समूह ने इडपड्डी के पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना है। इस विधानसभा सत्र में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय की नेतृत्व वाली नई सरकार को बुधवार तक बहुमत साबित करना है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि देश में खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार है और किसी तरह का कोई अभाव नहीं है। नई दिल्ली में कल स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ कृषि बदलाव से स्वास्थ्य के लिए विज्ञान की उत्कृष्टता सेहत का शुभारंभ करते हुए श्री चौहान ने कहा कि इस पहल से लोगों के लिए स्वास्थ्य के लिए लाभदायक जीवन शैली को बढ़ावा देने में सहायता मिलेगी।
2: सदियों से कहा गया है, पहला सुख निरोगी काया, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। अगर शरीर स्वस्थ है तो आप सब धर्मों का पालन कर सकते हैं। जो शरीर के लिए उपयोगी है, स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है, पोषण के लिए उपयोगी है, वही खाओ, संतुलित आहार।
0: खान मंत्रालय जम्मू कश्मीर में चूना पत्थर खंडों की नीलामी का दूसरा चरण आज से शुरू करेगा। इसके अंतर्गत 12 चूना पत्थर खंडों की नीलामी होगी। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल सरकार के पूर्व अग्निशमन और आपातकालीन सेवा मंत्री सुजीत बसु को दक्षिण दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले के सिलसिले में कोलकाता से गिरफ्तार किया है। सुजीत बसु पर तृणमूल कांग्रेस सरकार के दौरान नगर पालिका में नौकरी दिलाने के बदले धन और अन्य लाभ लेने का आरोप है। ईडी गिरफ्तार पूर्व मंत्री को आज अदालत में पेश करेगी। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को 3 विकेट से हरा दिया है। 211 रन के लक्ष्य के जवाब में दिल्ली कैपिटल्स ने 19 ओवर में 7 विकेट पर 216 रन बनाकर मैच जीत लिया। माधव तिवारी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, आइए अब आपको जानकारी दे दें आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के। अब से थोड़ी देर बाद यानी 7:10 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम। 7:20 का हमारा समय होता है लोकगीतों का और 7:35 पर हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम सुरांजलि। 7:50 पर स्वास्थ्य चर्चा का प्रसारण होगा। सुबह 8:00 समाचार प्रभात आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया जाएगा और यहीं से आप सुनेंगे 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज़। 8:30 का हमारा समय होता है प्रादेशिक समाचार का, जो कि रिले किया जाता है आकाशवाणी के रांची केंद्र से। सुबह 8:45 पर आप सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। सुबह 9:00 हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किया जाएगा। 9:05 पर कार्यक्रम सुरंजना में आज आप सुनेंगे एक ही गीतकार के रचे गाने। सुबह 9:30 पर शास्त्रीय संगीत की प्रस्तुति होगी। सुबह 10:00 हिंदी में समाचार, 10:05 पर अंग्रेजी में समाचार और 10:10 पर विश्व दर्पण आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किया जाएगा। 10:20 पर हम आपसे जुड़ेंगे फिल्म संगीत लेकर। सुबह 11:00 और दोपहर 12:00 श्रोता सुनते हैं हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। 11:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर और 12:05 पर प्रस्तुत किया जाएगा भावगीत। 12:30 का समय होगा शास्त्रीय संगीत का। दोपहर के 1:00 हिंदी में समाचार, 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार और 1:10 पर प्रादेशिक समाचार का प्रसारण होगा। 1:20 और दोपहर 2:30 पर श्रोता आनंद ले सकते हैं फिल्म संगीत का। दोपहर के 2:00 मिड डे न्यूज आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किया जाएगा और यहीं से आप सुनते हैं 2:15 पर दोपहर समाचार। 2:55 का समय होता है प्रादेशिक समाचार का। अपराह्न के 3:00 एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का प्रसारण होगा और अपराह्न 3:30 पर आप आनंद लेंगे सुगम संगीत का। 3:45 पर श्रोताओं लोकगीत प्रस्तुत किया जाएगा। संध्या 4:00 एवं 5:00 कार्यक्रम कल समाचार मुख्यांश आकाशवाणी रांची से सुनवाया जाएगा। 4:02 पर फिल्म संगीत का प्रसारण होगा और 5:02 पर युवा साथी सुनेंगे कार्यक्रम युवाणी। 5:30 पर कल कारखाने कार्यक्रम की प्रस्तुति होगी। संध्या 6:00 हिंदी में समाचार, 6:05 पर अंग्रेजी में समाचार और 6:20 पर संस्कृत में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किया जाएगा। संध्या 6:10 पर आप सुनते हैं झारखंड के लोकगीत। 6:30 का समय होता है कृषि जगत का और संध्या 7:00 हम आपको सुनवाते हैं प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से। यहीं से प्रसारित किया जाता है जिले में आजकल 7:10 पर। 7:15 का हमारा समय होता है बांग्ला कार्यक्रम का। 7:45 पर आज के दिन हमारे श्रोता सुनते हैं कार्यक्रम आलोक। रात्रि 8:00 फिल्म संगीत का प्रसारण होगा। 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या आकाशवाणी दिल्ली से। रात्रि 9:00 न्यूज एट नाइट यहीं से प्रसारित किया जाएगा और 9:15 पर आप सुनेंगे स्पॉटलाइट। रात्रि 10:00 फिल्म संगीत का प्रसारण होगा। रात्रि 11:00 हिंदी में समाचार, 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से सुनवाया जाएगा और रात्रि 11:10 पर हमारी आज की सभा संपन्न होगी।

0: श्रोताओं, अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, FM के 102.4 MHz पर।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
0: ट्यून क्या है आकाशवाणी जमशेदपुर और अब हम हाजिर हैं सुगम संगीत लेकर। इस कार्यक्रम में आइए सुनवाते हैं गजलें। पहली गजल सुनवा रहे हैं फनकार चंदन दास की आवाज़ में।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फनकार हरिहरन की आवाज़ में ये गज़ल, और इसी के साथ हमारा आज का सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
3: मन की बात, प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर।
4: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी, संसद मार्ग, नई दिल्ली, अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे वो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा और मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
3: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें। मन की बात आकाशवाणी, संसद मार्ग, नई दिल्ली 110001।
4: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब आइए सुनवाते हैं लोक गीतों का कार्यक्रम। लोक गीतों के आज के इस कार्यक्रम में हमारे श्रोता आनंद लेंगे। मैथिली गीत का कलाकार हैं गोपाल जी मिश्रा।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे गोपाल जी मिश्रा का गाया मैथिली लोकगीत। और इसी के साथ हमारा आज का लोकगीतों का ये सफ़र अब यहीं पूरा होता है। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय सुबह के 7:35 हो रहे हैं। अब आइए सुनवाते हैं कार्यक्रम सुरांजलि। इस कार्यक्रम में आज आप आनंद लेंगे आधुनिक गान का राघव चट्टोपाध्याय सिंह।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आधुनिक गान राघव चट्टोपाध्याय से। इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम सुरांजलि अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM के 102.4 MHz पर। और अब लीजिए सुनवाते हैं स्वास्थ्य चर्चा। इस कार्यक्रम में आज आप जानकारी प्राप्त करेंगे महिलाओं में एनीमिया विषय पर। जानकारी दे रही हैं डॉक्टर निशा यादव, जिनसे बातें कर रहे हैं राजेश कुमार।

0: श्रोताओं, आज के दौर में एनीमिया एक गंभीर समस्या बनती जा रही है, खासकर महिलाओं के लिए। एनीमिया है क्या, किस तरह के लक्षण उभर कर आते हैं और इससे फिर हम कैसे बच सकते हैं, इन तमाम बातों पर प्रकाश डालने के लिए आज हमारे साथ हैं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर निशा यादव। डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि एनीमिया वास्तव में हम कहते किसे हैं?
1: एनीमिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें कि ब्लड में हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन कम हो जाता है।
0: जी
1: ऐसे तो WHO के क्लासिफिकेशन के हिसाब से 11 ग्राम पर 100 ml अगर हीमोग्लोबिन है तो उसके नीचे अगर आता है तो उसे एनीमिया कहते हैं। लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज के लिए 10 ग्राम ही माना गया, क्योंकि ज्यादातर महिलाएं डेवलपिंग कंट्रीज में 10 ग्राम से नीचे ही रहती हैं, इसीलिए बॉर्डर लाइन 10 ग्राम हीमोग्लोबिन को माना गया है। इससे अगर कम हो तो उसे एनीमिया कहते हैं।
0: किस अवस्था में, या फिर यूं कहें कि किस उम्र की महिलाओं में ज्यादा एनीमिया होने की संभावना रहती है?
1: ज्यादा एनीमिया रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की महिलाओं में होने की संभावना होती है, क्योंकि बच्चों का स्पेसिंग बहुत कम होता है, जल्दी जल्दी बच्चे होते हैं। एक बच्चा जन्म लिया उसमें काफी मात्रा में खून का ये बहाव हुआ, उसके बाद वो फिर से अपना हीमोग्लोबिन वापस सही मात्रा में ला भी नहीं पाई कि तब तक फिर प्रेग्नेंट हो गई, और खान पान पे भी विशेष ध्यान नहीं दिया, इसके कारण हीमोग्लोबिन धीरे धीरे घटता ही चला जाता है।
0: आज हमारे देश में किशोरावस्था में जो लड़कियां हैं उनमें एनीमिया की शिकायत ज्यादा देखने को मिलती है, किन कारणों से उन्हें एनीमिया होता है?
1: किशोरावस्था में जो बच्चियां हैं उनमें एनीमिया का सबसे बड़ा कारण है मासिक के समय ज्यादा खून का बहाव।
0: जी
1: दूसरा कारण है हमारे देश में वर्म इन्फेस्टेशन,
0: अच्छा
1: मतलब लोग उतना हाइजीन तो मेंटेन करते नहीं
0: जी,
1: है, बाहर ठेले पे कहीं भी खाते हैं, उससे जो वर्म्स हमारे इंटेस्टीन में ग्रो करता है वो भी
0: हाँ।
1: एनीमिया का एक मुख्य कारण होता है। तीसरा कारण है जैसे पाइल्स हुआ,
0: अच्छा
1: पाइल्स से भी काफी मात्रा में खून, लोग पैखाना जाते हैं देखते हैं खून आ रहा है उसको इग्नोर करते हैं, डॉक्टर से सलाह नहीं लेते हैं, उससे भी एनीमिया होने के चांसेस होते हैं।
0: कैसे लोगों को ये पता चले कि वो एनीमिया के शिकार हैं?
1: अक्सर एनीमिया अगर माइल्ड है, माइल्ड कहते हैं हम लोग 8 ग्राम से 10 ग्राम हीमोग्लोबिन, तो वैसे में कोई सिम्टम्स पेशेंट को नहीं पता चलता है, थोड़ा बहुत थकावट काम करने से ऐसा महसूस करते हैं। जब वो मॉडरेट हो जाता है, मतलब 6 से 8 ग्राम हो गया या 6 से भी कम हो गया, वैसे में सीढ़ी चलने से या थोड़ा भी काम करने से हाँफ जाना, उसके बाद दिल का बहुत जोर से जल्दी जल्दी धड़कना, जैसे पल्स रेट नॉर्मल 80 है तो 100 120 ऐसा होगा, पैर हाथ का फूलना।
0: तो क्या सलाह देना चाहेंगे, किस तरह के प्रिकॉशन लेना चाहिए लोगों को ताकि उन्हें एनीमिया ना हो?
1: एनीमिया के लिए प्रिकॉशंस तो यही होगा कि अपने खान पान पे विशेष ध्यान दें, ज्यादा मात्रा में आयरन वाले खाद्य पदार्थ लें, जैसे कि हरी सब्जियां हो, फिर अगर जो नॉनवेज खाते हैं वो लीवर मीट अंडा ये सब में आयरन की मात्रा काफी होती है।
0: किशोरावस्था में अगर किसी महिला को या लड़की को अगर एनीमिया है तो आगे चल के गर्भधारण करने में उन्हें क्या कुछ परेशानी होती है?
1: हाँ, गर्भावस्था में भी उन्हें एनीमिया तो बरकरार ही रहेगा, और वैसे केस में गर्भावस्था के समय आयरन का जरूरत और ज्यादा बढ़ जाता है, इससे उनका हीमोग्लोबिन और घटेगा, और जब हीमोग्लोबिन और घटेगा तो उन्हें बहुत सारी तकलीफें शुरू हो जाएंगी, और साथ साथ बच्चे पे भी बहुत खराब असर पड़ेगा। बच्चे में अबॉर्शन का डर रहता है, या बच्चा समय से पहले हो जाए, या लो बर्थ वेट हो, बच्चे का वजन जितना होना चाहिए उससे बहुत ही कमजोर बच्चा पैदा हो, तो वो माँ भी कमजोर होगी और साथ साथ उसका बच्चा भी बहुत कमजोर होगा।
0: अंत में एक संदेश वैसे लोगों के लिए जो एनीमिया से ग्रसित हैं,
1: यही कि अपने खान पान पे विशेष ध्यान दें, और 2 बच्चों के बीच में 2 से 3 साल का गैप जरूर रखें। अगर मासिक के समय ज्यादा खून का बहाव हो रहा है या पाइल्स जैसी बीमारी हो तो अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लेके उचित इलाज कराएं।
0: डॉक्टर साहिबा, आपने एनीमिया के बारे में काफी अच्छी जानकारियां दी, उम्मीद है हमारी महिला श्रोता इसका लाभ जरूर उठाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

अभी आप जानकारी प्राप्त करे थे महिलाओं में एनीमिया विषय पर। इस विषय पर जानकारी दे रही थी डॉक्टर निशा यादव, जिनसे बातें कर रहे थे राजेश कुमार। इसी के साथ हमारा आज का स्वास्थ्य चर्चा का ये अंक अब यहीं संपन्न होता है।

0: सुनो ना,
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे?
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
0: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
2: हर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
3: मन की बात, प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर।
4: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली, अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे वो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा और मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
3: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें, मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 110001।
4: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।
5: हेलो डॉक्टर,
6: आकाशवाणी जमशेदपुर का लाइव फोन इन कार्यक्रम
5: हेलो डॉक्टर।
6: सुनिए हर माह के आखिरी बुधवार को रात 8 बजे से FM 102.4 MHz पर विशेषज्ञों से कीजिए बातें लाइव कार्यक्रम के दौरान और पाइए अपनी समस्याओं से निदान। तो कॉल कीजिए साथियों 0657-2960-445 पर। नंबर एक बार पुनः सुनिए 0657-2960-445 और बातें कीजिए लाइव डॉक्टर के साथ।
5: हेलो डॉक्टर,
7: ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM के 102.4 MHz पर। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज, और इसके ठीक बाद 8:30 पर प्रसारित किया जाएगा आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रादेशिक समाचार। फिलहाल आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी दिल्ली।

0: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा बचाने के लिए लोगों से ईंधन और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया। वरिष्ठ भाजपा नेता हेमंत बिस्व शर्मा आज गुवाहाटी में असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भाजपा के दो तथा असम गण परिषद और बोडो पीपल्स फ्रंट के एक एक मंत्री भी शपथ लेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री सुजीत बसु को गिरफ्तार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ युद्ध विराम सबसे कमजोर स्थिति में और लाइफ सपोर्ट पर है। और बांग्लादेश ने भारत में ICC T20 क्रिकेट विश्व कप से अपनी टीम के हटने के कारणों की जांच के लिए समिति गठित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपयोग कम करने तथा घर से काम, ऑनलाइन कक्षाएं और वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें।
0: सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है तथा रसोई गैस की आपूर्ति लगातार हो रही है। पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम पर कल नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि LPG वितरण केंद्रों पर किसी अभाव की सूचना नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा सार्वजनिक परिवहन और कार पूलिंग पर बल दिया है।
2: माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी लोगों से आग्रह किया है कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें, जहां भी संभव हो मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, कार पूलिंग का विकल्प चुनें, रेलवे एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर गुड्स को प्रेफर करें और जहां भी संभव हो इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाएं।
0: रसायन और उर्वरक मंत्रालय में अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने बताया कि देश में खरीफ सीजन के लिए 51% से अधिक उर्वरक भंडार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 97 लाख मीट्रिक टन उर्वरक का अतिरिक्त प्रबंधन किया गया है। संवाददाता सम्मेलन में पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने कहा कि समुद्री क्षेत्र में सभी भारतीय जहाज सुरक्षित हैं। विदेश मंत्रालय में अपर सचिव असीम महाजन ने कहा कि भारतीय दूतावास और वाणिज्य दूतावास समय से सहायता उपलब्ध कराने के लिए लगातार हेल्पलाइन संचालित कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मीडिया को बताया कि भारतीय जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए भारत ईरानी अधिकारियों के संपर्क में है। मंत्रालय ने बताया कि तेहरान में भारतीय दूतावास ने 2500 से अधिक भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने में मदद की है। भारतीय जनता पार्टी नेता हेमंत बिस्व शर्मा आज दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये असम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की तीसरी सरकार होगी। श्री शर्मा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे। वे राज्य में उपलब्धि हासिल करने वाले एकमात्र गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं। एक रिपोर्ट।
3: डॉक्टर हेमंत बिस्व शर्मा के साथ आज 4 अन्य मंत्रियों को भी शपथ दिलाई जाएगी। जिन 4 कैबिनेट मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी उनमें रामेश्वर तेली, अतुल बोरा, चरण बोरो और अजंता नियोग शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कई केंद्रीय मंत्री तथा भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। गुवाहाटी के खानापारा स्थित वेटरनरी कॉलेज मैदान को शपथ ग्रहण समारोह के लिए पूरी तरह सजाया गया है। वहीं कामरूप मेट्रो जिला जिला प्रशासन ने शहर के विभिन्न हिस्सों में यातायात सुचारू बनाए रखने और जाम से बचने के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के 30 विधायकों ने पी वेलुमणि को विधायक दल का नेता और सी विजय भास्कर को सचेतक चुनने की घोषणा की है। इन विधायकों ने अस्थायी अध्यक्ष करुपैया से मुलाकात कर अपने हस्ताक्षर वाला पत्र उन्हें सौंपा। वहीं 17 विधायकों के एक समूह ने इडपड्डी के पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नई सरकार को बुधवार तक विधानसभा में बहुमत साबित करना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
4: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
5: परीक्षा एक ऐसा अवसर है और परीक्षा के लिए हेल्दी कंपटीशन की भावना हमारी तैयारी को और बेहतरीन बनाती
4: है। NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन।
6: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
7: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
6: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में शुक्रवार को प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। इस दौरान विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत होगी। एक रिपोर्ट।
8: संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नरेश विलेम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री की यात्रा से नीदरलैंड्स के साथ संबंधों को नई गति मिलेगी। इसके बाद श्री मोदी रविवार को स्वीडन की यात्रा पर गोथनबर्ग पहुंचेंगे। वहां स्वीडन के प्रधानमंत्री अल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की जाएगी तथा व्यापार और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के नए उपाय तलाशे जाएंगे। दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन के साथ उद्योग जगत के प्रमुखों को संबोधित करेंगे। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
0: प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पूर्व अग्निशमन और आपात सेवा मंत्री सुजीत बसु को कल कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया। निदेशालय ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के शासन में सुजीत बसु ने नगर पालिका में विभिन्न पदों के लिए कथित रूप से लगभग 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की थी। प्रवर्तन निदेशालय ने नौकरी देने के बदले कथित रूप से फ्लैट की मांग के अपराध का भी पता लगाया है। जांच एजेंसी को बसु के बैंक खातों में बड़ी राशि जमा होने के भी सबूत मिले हैं। सुजीत बसु को आज विशेष अदालत में पेश किया जाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि देश में खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार है और किसी तरह का कोई अभाव नहीं है। नई दिल्ली में कल कृषि बदलाव के स्वास्थ्य के लिए विज्ञान की उत्कृष्टता सेहत पहल का शुभारंभ करते हुए श्री चौहान ने कहा कि इससे लोगों के लिए स्वास्थ्य के लिए लाभदायक जीवन शैली को बढ़ावा देने में सहायता मिलेगी।
9: सदियों से कहा गया है, पहला सुख निरोगी काया, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। अगर शरीर स्वस्थ है तो आप सब धर्मों का पालन कर सकते हैं। जो शरीर के लिए उपयोगी है, स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है, पोषण के लिए उपयोगी है, वही खाओ, संतुलित आहार।
0: इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि ये पहल स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए सरकार की सक्रियता दर्शाती है।
10: हम जानते हैं कि हम लोगों ने एक ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोग्रेस किया है, और जब हम ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोग्रेस की बात करते हैं तो हमने हेल्थ सिस्टम्स को भी काफी स्ट्रेंथन किया है। और हमारी कोशिश क्या है कि हम एक्सपैंड करें अफोर्डेबल और हाई क्वालिटी के हेल्थ, और जो हमारा फोकस है वो फोकस है प्रिवेंशन पर, अर्ली डिटेक्शन पर और कॉन्टिन्यूम ऑफ केयर पर।
0: सेहत पहल का उद्देश्य स्वस्थ भारत के लिए कृषि, पोषण और वैज्ञानिक नवाचार को मजबूत करना है। खान मंत्रालय जम्मू कश्मीर में चूना पत्थर खंडों की नीलामी का दूसरा चरण आज से शुरू करेगा। इसके अंतर्गत 12 चूना पत्थर खंडों की नीलामी की जाएगी। खान मंत्रालय ने इन खंडों को संयुक्त राष्ट्र संसाधन वर्गीकरण प्रणाली के 3 और 4 अन्वेषण चरणों के अंतर्गत रखा है। मंत्रालय ने कहा कि संसाधन सीमेंट निर्माण और अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है। इससे क्षेत्र में औद्योगिक विकास और आर्थिक प्रगति को गति मिलेगी। अमेरिका और ईरान के बीच कमजोर संघर्ष विराम के लाइफ सपोर्ट पर होने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी के बाद राजनयिक तनाव गहरा गया है। इससे तेल बाजारों को झटका लगा है। अमेरिका ने ईरान के शांति प्रस्ताव पर अपनी प्रतिक्रिया में अमरीकी प्रतिबंध हटाए जाने, ईरान की फ्रीज परिसंपत्तियां खोलने, अमरीकी नाकाबंदी समाप्त करने और हुर्मुज जलडमरू मध्य पर ईरानी प्रबंधन को मान्यता देने की मांग की थी, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन शर्तों को नामंजूर कर दिया। शांति प्रस्ताव खारिज होने के बाद कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक का उछाल आया है। एक रिपोर्ट।
11: ईरान की मांगे मुख्य रूप से युद्धकालीन परिस्थितियों और आर्थिक दबावों पर केंद्रित रही है, न कि तत्काल परमाणु रियायतों पर। लेकिन फिलहाल अमेरिका इन मांगों को मानने के पक्ष में नहीं है। मध्यस्थ लगातार साझा समाधान खोजने की कोशिश में है, लेकिन युद्ध के दबाव और आर्थिक संकट के कारण स्थिति और जटिल होती जा रही है। इस बीच संयुक्त अरब अमीरात बुनियादी ढांचों पर हुए हमलों पर अपनी प्रतिक्रिया तय कर रहा है। उसने एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया है, जिसका उद्देश्य देश पर 2,800 से अधिक ड्रोन और मिसाइल हमलों से हुए नुकसान का दस्तावेजीकरण करना है। संयुक्त अरब अमीरात अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानूनी जवाबदेह तय करने और अपने प्रमुख स्थलों तथा ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हुए हमलों के लिए मुआवजे की मांग करने की तैयारी कर रहा है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: बांग्लादेश क्रिकेट टीम के भारत में आईसीसी T20 विश्व कप से हटने के कारणों की जाँच के लिए 3 सदस्यों की जाँच समिति गठित की गई है। एक रिपोर्ट।
12: इस साल 7 फरवरी से 8 मार्च तक भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में हुई T20 विश्व कप से बांग्लादेश ने अपना नाम वापस ले लिया था। यह फैसला तब लिया गया जब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने सुरक्षा चिंताओं के कारण बांग्लादेश के मैच भारत से श्रीलंका स्थानांतरित करने की मांग को ठुकरा दी। विवाद तब शुरू हुआ जब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने कथित तौर पर कट्टरपंथी समूहों से धमकियों के बाद बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्ताफिजुर रहमान को IPL से बाहर कर दिया। हालांकि ICC ने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त है, लेकिन इसके बाद अंतरिम सरकार ने BCB को टूर्नामेंट से हटने का निर्देश दिया। नवलसन परमार, आकाशवाणी समाचार, ढाका।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
13: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेशी मुद्रा बचाने की सलाह सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान के अनुसार मोदी बोले, ऑनलाइन

0: और काम को प्राथमिकता दें, कोरोना महामारी की तरह इस संकट से भी बाहर निकल आएंगे। पत्र के अनुसार सरकार ने कहा, परेशान ना हो, देश में पर्याप्त पेट्रोल और डीजल उपलब्ध। जनसत्ता के अनुसार पोखरण परीक्षण की याद दिलाते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, कोई ताकत भारत को झुका नहीं सकती। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, कोरोना सदी का सबसे बड़ा संकट था, जंग दशक के बड़े संकटों में से एक। नवभारत टाइम्स इसी खबर पर ऊर्जा में आत्मनिर्भरता शीर्षक से संपादकीय में लिखता है, पीएम नरेंद्र मोदी के बाद सोमवार को पेट्रोलियम और गैस मंत्रालय ने भी लोगों से सार्वजनिक परिवहन और इलेक्ट्रिक व्हीकल का उपयोग करने की अपील की, ताकि पेट्रोल डीजल की खपत कम की जा सके। हालांकि सरकार ने ये भरोसा दिया है कि देश में ईंधन की कमी नहीं है। वीर अर्जुन का शीर्षक है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार्य बताकर खारिज किया। दैनिक जागरण की सुर्खी है, बंगाल सरकार का फैसला, सीमा पर बाढ़ के लिए 45 दिन के भीतर देगी जमीन।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा बचाने के लिए लोगों से ईंधन और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया। वरिष्ठ भाजपा नेता हेमंत बिस्व शर्मा आज गुवाहाटी में असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भाजपा के दो तथा असम गण परिषद और बोडो पीपल्स फ्रंट के एक एक मंत्री भी शपथ लेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने दक्षिणी दमदम नगरपालिका भर्ती घोटाले में पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री सुजीत बसु को गिरफ्तार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। और बांग्लादेश ने भारत में आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप से अपनी टीम के हटने के कारणों की जांच के लिए समिति गठित की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संघर्ष को एक दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताया। राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने और एकजुट होने का किया आह्वान। खान विभाग ने राज्य के 17 जिलों के लंबित 35 बालोघाटों की लीज प्रक्रिया अगले 10 दिनों के भीतर पूरी करने का दिया निर्देश। झारखंड हाईकोर्ट ने आपराधिक मामलों के अनुसंधान की धीमी प्रगति पर पुलिस की कार्यशैली पर जताई नाराजगी। कहा, पुलिस हर मामले में अदालत के आदेश का न करे इंतजार। प्रदेश भाजपा ने राज्य सरकार से ट्रेजरी घोटाले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की। विभिन्न जिलों की ट्रेजरी से करोड़ों रुपए की अवैध निकासी को बताया चिंताजनक। और मौसम विभाग ने झारखंड में 17 मई तक आंधी बारिश का सिलसिला जारी रहने का जताया अनुमान। तेज हवा चलने और वज्रपात को लेकर जारी किया ऑरेंज अलर्ट। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संघर्ष को एक दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताते हुए राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया है। वडोदरा में कल सरदारधाम छात्रावास के लोकार्पण कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने नागरिकों से एक बार फिर ईंधन बचाने और कार्यालयों में ऑनलाइन व्यवस्था को प्राथमिकता देने का आग्रह किया।
1: पिछले कुछ वर्षों में दुनिया लगातार अस्थिर परिस्थितियों से गुजर रही है। पहले कोरोना का संकट, फिर वैश्विक आर्थिक चुनौतियां और अब पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव। अगर कोरोना महामारी इस सदी का सबसे बड़ा संकट थी तो पश्चिम एशिया में युद्ध से बनी परिस्थितियां इस दशक के बड़े संकटों में से एक है। ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज जरूरत है कि हम सब मिलकर अपना दायित्व निभाएं, देश के संसाधनों पर पड़ने वाले बोझ को कम करें।
0: इस बीच पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री की अपील देश पर आर्थिक बोझ कम करने के लिए की गई है। देश में कच्चा तेल, रसोई गैस या अन्य किसी भी तरह के ईंधन की कोई कमी नहीं है। झारखंड में अवैध बालू खनन, परिवहन और भंडारण पर रोक लगाने के लिए खान विभाग के सचिव अरवा राजकमल ने 17 जिलों के 35 बालू घाटों की लीज प्रक्रिया अगले 10 दिनों के भीतर पूरी करने का निर्देश अधिकारियों को दिया है। खनन टास्क फोर्स की कल आयोजित बैठक में उपायुक्तों ने निर्धारित समय सीमा के भीतर लीज एग्रीमेंट पूरा कर सफल बोलीदाताओं को बालू घाट सौंपने पर सहमति दी। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में अपराध के मामलों और उनके अनुसंधान की धीमी प्रगति पर पुलिस की कार्यशैली पर कड़ी नाराजगी जताई है। अदालत ने कल एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए आदेश का इंतजार न करे। जस्टिस सुजित नारायण प्रसाद की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने हाल के आपराधिक मामलों का जिक्र करते हुए पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए और कहा कि पुलिस अपनी जिम्मेदारी निभाने में फेल हो रही है। प्रदेश भाजपा ने कल धनबाद में बिजली पानी संकट को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ आक्रोश प्रदर्शन किया। मौके पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार की लापरवाही के कारण केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी नल से जल योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई।
2: बिजली और पानी को लेकर के पूरे झारखंड प्रदेश में जनता तराही तराही मांग कर रही है। आज घर में सब सूख रहा है भाई, पानी नहीं है, चापाकल खराब पड़े हुए। प्रधानमंत्री की जल जीवन मिशन दम तोड़ रहे हैं भ्रष्टाचार की झारखंड में। कहीं टंकी बना हुआ है तो सप्लाई नहीं है। आम जनता ग्रामीण क्षेत्रों में तराही तराही कर।
0: वहीं धनबाद विधायक राज सिन्हा ने कहा कि भीषण गर्मी में महिलाएं घरों में रहने के बजाय घड़ा लेकर सड़क पर उतरने को विवश हैं, जो राज्य सरकार की विफलता को दिखाता है।
3: कहीं गांव देहात में चापाकल भी काम नहीं कर रहा और बिजली की हालत तो देख ही रहे हैं। धनबाद में 19 में यहां लगभग 900 करोड़ रुपए की योजना का शिलान्यास भी हुआ था, मैथन फेज 2 और फिर जामाडोवा, लेकिन जो योजना 22 में पूरा होना था वह योजना आज तक नहीं पूरा हुआ। पूरे प्रदेश के अंदर पानी के लिए जनता त्राहि त्राहि कर रही है, तो इसलिए सब प्रदेश भर में आक्रोश प्रदर्शन कर रहे हैं।
0: प्रदेश भाजपा ने झारखंड में हुए ट्रेजरी घोटाले की सीबीआई जांच की मांग की है। प्रदेश अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर कहा कि विभिन्न जिलों की ट्रेजरी से करोड़ों रुपए की अवैध निकासी चिंताजनक है। उन्होंने राज्य सरकार से श्वेत पत्र जारी करने, अनियमितताओं की जानकारी सार्वजनिक करने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग की है। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा है कि राज्य में रक्त से जुड़ी आपात सेवाओं के लिए टोल फ्री नंबर जारी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसके माध्यम से जरूरतमंदों को समय पर रक्त उपलब्ध कराने के साथ जिलों में ब्लड सेवाओं को और सुरक्षित और सशक्त बनाने में मदद मिलेगी। राज्य की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कल गुड्डा जिले के मेहरमा प्रखंड में विरामचक दियाजोरी बरबड्डा सड़क सुदृढ़ीकरण योजना का शिलान्यास किया। इस योजना की लागत 1,47,00,000 रुपए है। इस दौरान मंत्री ने भुस्का पहाड़ को पर्यटन केंद्र बनाने और पार्क निर्माण की योजना की जानकारी दी। राज्य के श्रम एवं रोजगार मंत्री संजय प्रसाद यादव ने कल जमशेदपुर में झारक्राफ्ट के नए एम्पोरियम का उद्घाटन किया। मौके पर श्री यादव ने कहा कि यह एम्पोरियम 25,000 बुनकरों, 120 बुनकर समितियों और 220 कर्मियों की मेहनत, हुनर और सपनों का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि नया एम्पोरियम वोकल फॉर लोकल अभियान को मजबूती देने के साथ स्थानीय शिल्पकारों को बाजार से जोड़ेगा।
4: सरकार की सोच है माननीय मुख्यमंत्री आनंद जी का, रोजगार का बढ़ापा मिलेगा। गांव घर देहात में 25,000 लोगों को अभी तक इस रोजगार में हम लोग जोड़े हैं। हम लोग का टारगेट है कि कम से कम 2,00,000-2,50,000 लोगों को हम लोग रोजगार से जोड़ेंगे और ये इंपोर्ट भी होगा, बाहर भी विदेश भी जाएगा, तो इससे रोजगार को बढ़ापा मिलेगा।
0: चतरा जिले के गिद्धौर प्रखंड ने स्वच्छ ऊर्जा और सौर परियोजना के क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। पीएम कुसुम योजना का लाभ सफलतापूर्वक उठाने के बाद गिद्धौर का चयन अब पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के जरिए मॉडल सोलर गांव के लिए किया गया है। चतरा के जिला कृषि पदाधिकारी गौतम कुमार ने कहा कि यहां के किसान अब खेती के साथ पर्यावरण संरक्षण का भी ध्यान रख रहे हैं।
5: पीएम सूर्य घर योजना जो हम लोग को मिलने वाला है, इससे पूरा घर सौर ऊर्जा से घर में बिजली उत्पादन होगा और ये गिद्धौर के लिए बहुत अच्छा मौका मिला है कि सरकार हम लोग के देगी, इससे बिजली उत्पादन होगा।
0: और अब मौसम का हाल। झारखंड में 17 मई तक आंधी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। मौसम विभाग ने

की गई अपील को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, पीएम के आह्वान पर मंथन, केंद्रीय मंत्रालय खुद भी कम करेंगे पेट्रोल डीजल की खपत। प्रभात खबर ने लिखा है, अब जमीन से जुड़े फैसले ग्राम पंचायतें लेंगी, रजिस्टर 2 की कॉपी देने का आदेश। दैनिक भास्कर ने जेटेट 2026 में भोजपुरी, मगही और अंगिका भाषा के शामिल नहीं होने की खबर को प्राथमिकता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने जमशेदपुर में पूर्व मंत्री आलमगीर आलम को 23 माह बाद जमानत मिलने की खबर को पहले पेज पर प्रकाशित किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संघर्ष को एक दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताया। राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए एकजुट होने का किया आह्वान। खान विभाग ने राज्य के 17 जिलों के लंबित 35 बालू घाटों की लीज प्रक्रिया अगले 10 दिनों के भीतर पूरी करने का दिया निर्देश। झारखंड हाई कोर्ट ने आपराधिक मामलों के अनुसंधान की धीमी प्रगति पर पुलिस की कार्यशैली पर जताई नाराजगी, कहा पुलिस हर मामले में अदालत के आदेश का ना करे इंतजार। प्रदेश भाजपा ने राज्य सरकार से ट्रेजरी घोटाले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की। विभिन्न जिलों की ट्रेजरी से करोड़ों रुपए की अवैध निकासी को बताया चिंताजनक। और मौसम विभाग ने झारखंड में 17 मई तक आंधी बारिश का सिलसिला जारी रहने का जताया अनुमान। तेज हवा चलने और वज्रपात को लेकर जारी किया ऑरेंज अलर्ट। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रसारित प्रादेशिक समाचार। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर।

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: आपकी सीट तो आगे,
1: हमें तो यहीं बैठा है उसने।
0: नहीं नहीं आप चलिए, और आप पत्नी कहाँ?
1: वो तो है ही नहीं।
2: देखिए आप लोग यहाँ पे डिस्टर्ब कर रहे हैं, आप लोग उस तरफ जाके बातचीत कीजिए।
0: अच्छा अच्छा ठीक।

दोस्तों, तारीफ अगर सच्चे दिल से की जाए तो चेहरे की रंगत अपने आप बढ़ जाती है, और जब तारीफ के शब्दों में माशाअल्लाह जुड़ जाए तो वो पल और भी खास हो जाता है।

0: चेहरा माशाल्लाह, जुल्फ का पहरा सुभान अल्लाह।
1: आपकी बातें

दोस्तों, आज के फिल्म संगीत के सफ़र में आपने जिन फिल्मों के गाने सुने वो फिल्में थीं अंगूर वक्त और रू ठाना करो। आवाज़ें आशा भोसले, महेंद्र कपूर और मोहम्मद रफ़ी साहब की थीं। बोल गुलजार, साहिर लुधियानवी और हसरत जयपुरी के थे। संगीत निर्देशन था राहुल देव बर्मन, रवि और श्री रामचंद्र का। इसी के साथ हमारा आज का

ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित हिंदी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल जनसभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा घर से काम, ऑनलाइन कक्षाएं और वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें।
0: सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है तथा रसोई गैस की आपूर्ति लगातार हो रही है। पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम पर कल नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि एलपीजी वितरण केंद्रों पर किसी अभाव की सूचना नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा सार्वजनिक परिवहन और कार पूलिंग का बल दिया है।
2: माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी लोगों से आग्रह किया है कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें, जहां भी संभव हो मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, कार पूलिंग का विकल्प चुनें, रेलवे एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर गुड्स को प्रेफर करें और जहां भी संभव हो इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाएं।
0: रसायन और उर्वरक मंत्रालय में अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने बताया कि देश में खरीफ सीजन के लिए 51% से अधिक उर्वरक भंडार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 97,00,000 मीट्रिक टन उर्वरक का अतिरिक्त प्रबंध किया गया है। भारतीय जनता पार्टी नेता हेमंत बिस्व शर्मा आज दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये असम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की तीसरी सरकार होगी। श्री शर्मा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वे राज्य में उपलब्धि हासिल करने वाले एकमात्र गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं। तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के 30 विधायकों ने पी वेलुमणि को विधायक दल का नेता और सी विजय भास्कर को सचेतक चुनने की घोषणा की है। इन विधायकों ने अस्थायी अध्यक्ष करुपैया से मुलाकात कर अपने हस्ताक्षर वाला एक पत्र उन्हें सौंपा। वहीं 17 विधायकों के एक अन्य समूह ने इडपड्डी के पलनी सामी को विधायक दल का नेता चुना है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय की नेतृत्व वाली नई सरकार को बुधवार तक विधानसभा में बहुमत साबित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में शुक्रवार को प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे।

विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत होगी। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में दक्षिणी दमदम नगरपालिका भर्ती घोटाले में पूर्व अग्निशमन और आपात सेवा मंत्री सुजीत बसु को कल कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया। निदेशालय ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के शासन में सुजीत बसु ने नगरपालिका में विभिन्न पदों के लिए कथित रूप से लगभग 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की थी। सुजीत बसु को आज विशेष अदालत में पेश किया जाएगा। अमरीका और ईरान के बीच कमजोर संघर्ष विराम के लाइफ सपोर्ट पर होने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी के बाद राजनयिक तनाव गहरा गया है। इससे तेल बाजारों को झटका लगा है। ईरान ने अमरीका के शांति प्रस्ताव पर अपनी प्रतिक्रिया में अमरीकी प्रतिबंध हटाए जाने, ईरान की फ्रीज परिसंपत्तियां खोलने, अमरीकी नाकाबंदी समाप्त करने और हुर्मुज जल डमरू मध्य पर ईरानी प्रबंधन को मान्यता देने की मांग की थी, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन शर्तों को नामंजूर कर दिया। बांग्लादेश में क्रिकेट टीम के भारत में आईसीसी टी20 विश्व कप से हटने के कारणों की जांच के लिए 3 सदस्यों की जांच समिति गठित की गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। थोड़ी ही देर में हम हाजिर होते हैं कार्यक्रम सुरंजना लेकर।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: नमस्कार जमशेदपुर, नमस्कार जमशेदपुर का एक अलग अंदाज,
2: ज्ञान विज्ञान,
3: इतिहास के पन्नों से,
2: सेहत और बॉलीवुड की बातें,
1: मौसम का मिजाज,
2: अपने शहर की खबरें,
3: बातों मुलाकातों के साथ
1: सुरीला मनोरंजन
2: और भी बहुत कुछ।
1: आप सुनते हैं कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर में दिन के 11:05 से 12 तक
3: आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से।
1: नमस्कार जमशेदपुर।
4: हेलो मन भावन, आप सुनेंगे नए अंदाज में मेरे यानी निमिषा के साथ। प्रत्येक रविवार दिन के 11 आकाशवाणी जमशेदपुर के विविध भारती केंद्र से 100.8 मेगाहर्ट्ज पर। आपके फोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक बुधवार दोपहर 12 से 12:30 के बीच। हमारा टेलीफोन नंबर है 2960445 और कोड है 0657। तो आप भी जुड़ जाइए हेलो मनभावन कार्यक्रम से।
5: जलवायु और अर्थव्यवस्था, यह यूनेस्को का संदेश है। आज भी दुनिया की अर्थव्यवस्था जीवाश्म ईंधन पर आधारित है। 31% तेल, 27% कोयला और 25% प्राकृतिक गैस। इसके मुकाबले हाइड्रो, सौर, पवन और जैव ऊर्जा जैसे स्वच्छ स्रोत सिर्फ 17% हैं। जीवाश्म ईंधन का संग्रह दशकों तक रहने का अनुमान है, लेकिन उनका अत्यधिक इस्तेमाल जलवायु परिवर्तन को और बढ़ाएगा, इसलिए हमें जल्द ही इसे रोकना होगा। यदि हम जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित नहीं करते तो इसे दुनिया को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। आर्थिक विकास को ऐसे बढ़ाना चाहिए कि उत्सर्जन ना बढ़े और पानी, भोजन और ऊर्जा की सुरक्षा बनी रहे। हरित प्रौद्योगिकरण का उपयोग करने से विशेषकर युवाओं के लिए कई नौकरियां पैदा हो सकती हैं। यहां एक रोचक तथ्य है, महासागरों में अत्यधिक गतिशील ऊर्जा होती है जो भविष्य में हमारी ऊर्जा जरूरतें पूरी कर सकती हैं।
4: हेलो मनभावन, आप सुनेंगे नए अंदाज में मेरे यानी निमिषा के साथ। प्रत्येक रविवार दिन के 11 आकाशवाणी जमशेदपुर के विविध भारती केंद्र से 100.8 मेगाहर्ट्ज पर। आपके फोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक बुधवार दोपहर 12 से 12:30 के बीच। हमारा टेलीफोन नंबर है 2960445 और कोड है 0657। तो आप भी जुड़ जाइए हेलो मनभावन कार्यक्रम से।

श्रोताओं, आज हम कार्यक्रम सुरंजना में एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करेंगे जो मुंबई तो आए थे एक गायक बनने, लेकिन किस्मत ने उनके हाथों में कलम थमा दी और आज वो बॉलीवुड के सबसे महंगे और मशहूर गीतकार बन गए हैं। जी हाँ, हम बातें कर रहे हैं अमिताभ भट्टाचार्य की।

दोस्तों, लखनऊ की गलियों और मुंबई का संघर्ष। अमिताभ भट्टाचार्य का जन्म 16 नवंबर 1976 को नवाबों के शहर लखनऊ में हुआ था। उन्होंने अपनी पढ़ाई लखनऊ यूनिवर्सिटी से पूरी की और 1999 में आंखों में बड़े बड़े सपने लेकर मुंबई पहुंचे। शुरुआती दौर में 8 से लेकर 9 सालों तक उन्होंने कड़ा संघर्ष किया। वे म्यूजिक डायरेक्टर को अपने डेमो ऑडियो कैसेट देते थे और यहाँ तक कि वे संगीतकार प्रीतम के असिस्टेंट के तौर पर भी काम किए थे।

दोस्तों कहते हैं ना कि वक्त बदलते देर नहीं लगती। साल 2009 में फिल्म देव डी आई और इसके गाने इमोशनल अत्याचार ने पूरे देश में तहलका मचा दिया। इस गाने ने अमिताभ को रातों रात पहचान दिला दी। मज़ेदार बात तो यह है कि वे खुद को कभी गीतकार नहीं मानते थे, वे तो बस रफ लिरिक्स लिखते और म्यूज़िक कंपोज़र उनका धुन बना लेते, लेकिन वही लिखे शब्द उनको इतने पसंद आए कि वे एक दिन गीतकार बन गए।

श्रोताओं, अमिताभ की कलम का जादू ऐसा चला कि उन्हें फिल्म आईएम के लिए नेशनल अवार्ड से नवाजा गया। उनके लिखे गाने चन्ना मेरिया ने तो अवार्ड की झड़ी लगा दी थी। वे आज भी उतने ही सरल और खुद को एक स्पॉन्ज की तरह मानते हैं जो जिंदगी के अनुभवों को सीखकर गीतों में ढाल देते हैं। वे अब भी कभी कभी अपनी आवाज़ का जादू बिखेरते हैं, जैसे वेकअप शीट का वो गाना एक तारा। आइए सुनवाते हैं।

श्रोताओं, ये तो थी कहानी उस कलाकार की जिसने शब्दों को नई भाषा दी। अमिताभ भट्टाचार्य हमें सिखाते हैं कि अगर रास्ता बंद हो तो हुनर अपना दूसरा रास्ता बना लेती है। इस कार्यक्रम में आपने आज जिन फिल्मों के गाने सुने वो फिल्में थी बजरंगी भाईजान, भेड़िया, ब्रह्मास्त्र और वैकअप सीट। आवाजें आतिफ असलम, अरिजीत सिंह, सचिन जिगर, कविता सेठ और अमिताभ भट्टाचार्य की थी। संगीत निर्देशन था प्रीतम, सचिन जिगर और अमित त्रिवेदी का।

आज के कार्यक्रम सुरंजना में आप सुन रहे थे एक ही गीतकार अमिताभ भट्टाचार्य के रचे गाने। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: मन की बात प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर।
1: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे तो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा और मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
0: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें, मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 110001।
1: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।
2: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
3: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
2: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
3: अब घर दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
2: डायल कीजिए 870001424।
3: नंबर एक बार फिर नोट करें 870001424।
4: ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब आइए सुनवाते हैं शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत के आज के इस कार्यक्रम में श्रोताओं आप सुनेंगे उस्ताद बिस्मिल्ला खान से शहनाई वादन, राग है गुजरी तोड़ी।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान से शहनाई पर ये धुन। इसी के साथ हमारा आज का शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं, FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल जनसभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा घर से काम, ऑनलाइन कक्षाएं और वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई। सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है तथा रसोई गैस की आपूर्ति लगातार हो रही है। पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम पर कल नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि एलपीजी वितरण केंद्रों पर किसी अभाव की सूचना नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा सार्वजनिक परिवहन और कार पूलिंग पर बल दिया है।
1: माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी लोगों से आग्रह किया है कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें, जहां भी संभव हो मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, कार पूलिंग का विकल्प चुनें, रेलवे एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर गुड्स को प्रेफर करें और जहां भी संभव हो इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाएं।
0: भारतीय जनता पार्टी नेता हिमंत बिस्वा सरमा आज दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये असम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की तीसरी सरकार होगी। श्री सरमा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वे राज्य में ये उपलब्धि हासिल करने वाले एकमात्र गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं। तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के 30 विधायकों ने पी वेलुमुड़ी को विधायक दल का नेता और सी विजय भास्कर को सचेतक चुनने की घोषणा की है। इन विधायकों ने अस्थाई अध्यक्ष करुपैया से मुलाकात कर अपने हस्ताक्षर वाला पत्र उन्हें सौंपा है। वहीं 17 विधायकों के एक अन्य समूह ने इडापड़ी के पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय की नेतृत्व वाली नई सरकार को बुधवार तक विधानसभा में बहुमत साबित करना है। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पूर्व अग्निशमन और आपात सेवा मंत्री सुजीत बसु को कल कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया है। निदेशालय ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के शासन में सुजीत बसु ने नगर पालिका में विभिन्न पदों के लिए कथित रूप से लगभग 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की। जांच एजेंसी को बसु के बैंक खातों में बड़ी राशि जमा होने के भी सबूत मिले हैं। सुजीत बसु को आज विशेष अदालत में पेश किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में शुक्रवार को प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग तथा परस्पर हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत होगी। जम्मू कश्मीर में व्हाइट नाइट कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल पीके मिश्रा ने पुंछ जिले के सुरनकोट सेक्टर के परिचालन क्षेत्रों का दौरा किया और आतंकवाद रोधी अभियानों की समीक्षा की। इस दौरान कोर कमांडर को वरिष्ठ अधिकारियों ने आतंक रोधी ग्रिड, खुफिया नेटवर्क और अंतर एजेंसी समन्वय तंत्र के बारे में भी जानकारी दी। अमेरिका और ईरान के बीच कमजोर संघर्ष विराम के लाइफ सपोर्ट पर होने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी के बाद राजनयिक तनाव गहरा गया है। इससे तेल बाजारों को झटका लगा है। ईरान ने अमेरिका के शांति प्रस्ताव पर अपनी प्रतिक्रिया में अमेरिकी प्रतिबंध

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार से संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, भारत और श्रीलंका सदियों से विकसित सभ्यतागत, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संबंधों से जुड़े हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ युद्ध विराम सबसे कमजोर स्थिति में और लाइफ सपोर्ट पर है। और बांग्लादेश ने भारत में ICC T20 क्रिकेट विश्व कप से अपनी टीम के हटने के कारणों की जांच के लिए समिति गठित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा घर से काम, ऑनलाइन कक्षाएं और वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें।
0: सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है तथा रसोई गैस की आपूर्ति लगातार हो रही है। पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम पर कल नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि LPG वितरण केंद्रों पर किसी अभाव की सूचना नहीं है।
2: माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी लोगों से आग्रह किया है कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें, जहां भी संभव हो मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, कार पूलिंग का विकल्प चुनें, रेलवे एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर गुड्स को प्रेफर करें और जहां भी संभव हो इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाएं।
0: रसायन और उर्वरक मंत्रालय में अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने बताया कि देश में खरीफ सीजन के लिए 51% से अधिक उर्वरक भंडार उपलब्ध है।
3: फॉर द सीजन ऑफ खरीफ 2026,
4: खरीफ 2026 सीजन के लिए उर्वरकों का भंडार 51% से अधिक उपलब्ध है। प्रमुख उर्वरकों की अधिकतम खुदरा मूल्य MRP में भी लगभग स्थिरता बनी हुई है। संकट काल के बाद देश में उर्वरकों का घरेलू उत्पादन 76.78 लाख मीट्रिक टन रहा है, जबकि आयात के माध्यम से 19.94 लाख मीट्रिक टन उर्वरक प्राप्त हुए हैं। संकट की स्थिति के बाद लगभग 97 लाख मीट्रिक टन उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पहले चरण में शुक्रवार को प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे।
5: संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नरेश विलेम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री की यात्रा से नीदरलैंड्स के साथ संबंधों को नई गति मिलेगी। इसके बाद श्री मोदी रविवार को स्वीडन की यात्रा पर गोथनबर्ग पहुंचेंगे। वहां स्वीडन के प्रधानमंत्री अल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत में द्विपक्षीय

0: प्रयासों की समीक्षा की जाएगी तथा व्यापार और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के नए उपाय तलाशे जाएंगे। दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन के साथ उद्योग जगत के प्रमुखों को संबोधित करेंगे। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
1: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि भारत और श्रीलंका सदियों से विकसित सभ्यतागत, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संबंधों से जुड़े हैं। संसद भवन में श्रीलंका की महिला सांसदों के प्रतिनिधि मंडल से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देशों की साझा बौद्ध विरासत आपसी संबंधों की मजबूत नींव है। ये प्रतिनिधि मंडल श्रीलंका की महिला और बाल मामलों की मंत्री सरोजा सावित्री पॉलराज के नेतृत्व में भारत आया है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका और ईरान के बीच कमजोर संघर्ष विराम के लाइफ सपोर्ट पर होने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी के बाद राजनयिक तनाव गहरा गया है। ईरान ने शांति प्रस्ताव में अमरीकी प्रतिबंध हटाए जाने, ईरान की फ्रीज पर संपत्तियां खोलने, अमरीकी नाकाबंदी समाप्त करने और होर्मुज जलडमरू मध्य पर ईरानी प्रबंधन को मान्यता देने की मांग की थी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की इन शर्तों को नामंजूर कर दिया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शांति प्रस्ताव खारिज होने के बाद कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक का उछाल आया है।
2: ईरान की मांगें मुख्य रूप से युद्धकालीन परिस्थितियों और आर्थिक दबावों पर केंद्रित रही हैं, न कि तत्काल परमाणु रियायतों पर। लेकिन फिलहाल अमेरिका इन मांगों को मानने के पक्ष में नहीं है। युद्ध के दबाव और आर्थिक संकट के कारण स्थिति और जटिल होती जा रही है। इस बीच संयुक्त अरब अमीरात बुनियादी ढांचे पर हुए हमलों पर अपनी प्रतिक्रिया तय कर रहा है। उसने एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया है जिसका उद्देश्य देश पर 2,800 से अधिक ड्रोन और मिसाइल हमलों से हुए नुकसान का दस्तावेजीकरण करना है। संयुक्त अरब अमीरात अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानूनी जवाबदेही तय करने और अपने प्रमुख स्थलों तथा ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हुए हमलों के लिए मुआवजे की मांग करने की तैयारी कर रहा है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: पाकिस्तान ने अमरीका के हवाई हमलों से बचाने के लिए ईरान के सैन्य विमानों को अपने हवाई अड्डों पर उतरने की अनुमति दे दी है। रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने 28 फरवरी को शुरू हुए अमेरिका ईरान संघर्ष समाप्त करने में पाकिस्तान की मध्यस्थता भूमिका के मूल्यांकन की मांग की है। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अप्रैल में संघर्ष विराम घोषणा के तुरंत बाद ईरान ने एक खुफिया विमान सहित कई विमान पाकिस्तान के नूर खान हवाई अड्डे पर भेजे थे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ताइवान और ऊर्जा सुरक्षा उनकी आगामी चीन यात्रा के दौरान बातचीत के प्रमुख मुद्दे रहेंगे। उन्होंने चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग के साथ अपने संबंधों की सराहना करते हुए विश्वास व्यक्त किया कि ताइवान को लेकर तनाव नहीं बढ़ेगा।
3: व्हाइट हाउस में कल मात्र स्वास्थ्य कार्यक्रम में श्री ट्रंप ने कहा कि उनका प्रशासन चीन के साथ बेहतर तरीके से काम कर रहा है। उन्होंने पूर्व अमेरिकी प्रशासन पर चीन को अमेरिका का फायदा उठाने देने का भी आरोप लगाया। श्री ट्रंप ने चीन से संबंधित अपनी टिप्पणियों को पश्चिम एशिया में व्यापक तनाव और होर्मुज़ जलडमरू मध्य बंद किए जाने की चिंताओं से जोड़ा। उन्होंने कहा कि चीन को अपने तेल भंडार का लगभग 40% हिस्सा होर्मुज़ से प्राप्त होता है। श्री ट्रंप ने कहा कि शी चिनफिंग के साथ शिखर सम्मेलन स्तर की वार्ताओं में ऊर्जा और ईरान प्रमुख विषय होंगे। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: बांग्लादेश में क्रिकेट टीम के भारत में आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप से हटने के कारणों की जांच के लिए 3 सदस्यों की जांच समिति गठित की गई है। एक रिपोर्ट।
4: इस साल 7 फरवरी से 8 मार्च तक भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में हुई T20 विश्व कप से बांग्लादेश ने अपना नाम वापस ले लिया था। यह फैसला तब लिया गया जब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने सुरक्षा चिंताओं के कारण बांग्लादेश के मैच भारत से श्रीलंका स्थानांतरित करने की मांग को ठुकरा दी। विवाद तब शुरू हुआ जब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने कथित तौर पर कट्टरपंथी समूहों से धमकियों के बाद बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्ताफिजुर रहमान को IPL से बाहर कर दिया। हालांकि ICC ने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त है, लेकिन इसके बाद अंतरिम सरकार ने BCB को टूर्नामेंट से हटने का निर्देश दिया। नवल सिंह परमार, विश्व समाचार, ढाका।
1: आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है। स्वास्थ्य सेवा में नर्सों के योगदान को मान्यता देने के लिए प्रत्येक वर्ष 12 मई को ये दिवस मनाया जाता है। फ्रेंच रिवेरा में स्वतंत्र सिनेमा का वार्षिक उत्सव कांस फिल्म महोत्सव आज से शुरू हो रहा है। जॉन ट्रिवोल्टा, एडम ड्राइवर और बारबरा स्ट्रीसैंड सहित कई सुपरस्टार

कारपेट पर नजर आएंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री शुक्रवार से संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर होंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, भारत और श्रीलंका सदियों से विकसित सभ्यतागत, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संबंधों से जुड़े हैं और बांग्लादेश ने भारत में आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप से अपनी टीम के हटने के कारणों की जांच के लिए समिति गठित की। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित विश्व दर्पण। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। थोड़ी देर में आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे?
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
0: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
2: मन की बात, प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर।
3: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली, अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे वो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा और मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
2: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें, मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 110001।
3: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।
4: हेलो डॉक्टर,
5: आकाशवाणी जमशेदपुर का लाइव फोन इन कार्यक्रम
4: हेलो डॉक्टर।
5: सुनिए हर माह के आखिरी बुधवार को रात 8 बजे से FM 102.4 MHz पर विशेषज्ञों से कीजिए बातें लाइव कार्यक्रम के दौरान और पाइए अपनी समस्याओं से निदान। तो कॉल कीजिए साथियों 0657-2960-445 पर। नंबर एक बार पुनः सुनिए 0657-2960-445 और बातें कीजिए लाइव डॉक्टर के साथ।
4: हेलो डॉक्टर।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र, और अब हम हाजिर हैं फिल्म संगीत लेकर की। तो भले इस सुहाने सफर में स्वागत है आपका।

कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं फिल्म बाहर आने तक के इस गाने से। अनुराधा पौडवाल और पंकज उदास की आवाजें हैं। इब्राहिम अश्क ने इस गीत को रचा है। संगीत निर्देशन राजेश रोशन का है।

और अब लीजिए सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गाना, बेवफा फिल्म से। लता मंगेशकर की आवाज़ है, शब्दकार हैं समीर और संगीतकार हैं नदीम श्रवण।

और अब लीजिए सुनवाते हैं हमारा दिल आपके पास है फिल्म का ये गीत। गीतकार हैं जावेद अख्तर, संगीतकार हैं संजीव दर्शन, आवाज़ें अलका याग्निक और उदित नारायण की हैं।

0: पुलिस।
1: मिस सीमा
0: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों, लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1,00,000 दो, बच जाओगे।
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र और सुन रहे हैं फिल्म संगीत।

वीर ज़ारा, आपने सुना इस फिल्म का गाना अलका याग्निक और माफ़ करेंगे लता मंगेशकर और जगजीत सिंह की आवाज़ों में। जावेद अख्तर ने इस गीत को रचा था और धुन मदन मोहन का था। अब आइए सुनवाते हैं खट्टा मीठा फिल्म से गाना। गीतकार हैं इरशाद कामिल, संगीतकार हैं प्रीतम, आवाज़ें के और सुनिधि चौहान की हैं।

कार्यक्रम के आखिर में लीजिए सुनवाते हैं अरमान मल्लिक का गाया ये गाना। संगीत अमाल मल्लिक का है, बोल रश्मि विराग के हैं। ये गीत हम आप तक लेकर आ रहे हैं फिल्म चीफ से।

0: श्रोताओ, फिल्म चीफ के इस गाने के साथ ही हमारा आज का फिल्म संगीत का ये सफर अब यहीं पूरा होता है।
1: हमारा अगला कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर आप सुनेंगे इसी चैनल पर।
0: ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित हिंदी में समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल जनसभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा घर से काम, ऑनलाइन कक्षाएं तथा वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई। भारतीय जनता पार्टी नेता हिमंता बिस्व शर्मा आज दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। यह असम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की तीसरी सरकार होगी। श्री शर्मा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के 30 विधायकों ने पी वेलुमणि को विधायक दल का नेता और सी विजय भास्कर को सचेतक चुनने की घोषणा की है। इन विधायकों ने अस्थायी अध्यक्ष करुपैया से मुलाकात कर अपने हस्ताक्षर वाला पत्र उन्हें सौंपा है। वहीं 17 विधायकों के एक अन्य समूह ने इडापट्टी के पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नई सरकार को बुधवार तक विधानसभा में बहुमत साबित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में राज्य मंत्रिमंडल की पहली बैठक के निर्णयों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य के लोग अब विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत का लाभ उठा सकेंगे। इससे पहले कल राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें बांग्लादेश सीमा पर 45 दिन के भीतर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को भूमि हस्तांतरित करना शामिल है। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पूर्व अग्निशमन और आपात सेवा मंत्री सुजीत बसु को कल कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया है। निदेशालय ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के शासन में सुजीत बसु ने नगर पालिका में विभिन्न पदों के लिए

कथित रूप से लगभग 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की। जांच एजेंसी को बसु के बैंक खातों में बड़ी राशि जमा होने के भी सबूत मिले हैं। सुजीत बसु को आज विशेष अदालत में पेश किया जाएगा। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए दोहरीघाट औड़िहार यात्री पैसेंजर ट्रेन को रवाना किया। इससे मऊ और गाजीपुर जिलों के यात्रियों को किफायती और सुरक्षित रेल सेवा उपलब्ध होगी। श्री वैष्णव ने कहा कि इस रेल सेवा का विस्तार जल्द ही वाराणसी तक किया जाएगा। श्री वैष्णव ने बताया कि उत्तर प्रदेश में कई प्रमुख रेल अवसंरचना परियोजनाओं पर काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि एक प्रमुख चार लेन का गलियारा गंगा के दक्षिण में प्रयागराज कानपुर आगरा दिल्ली मार्ग के साथ विकसित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में शुक्रवार को प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग तथा परस्पर हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत होगी। अमेरिका और ईरान के बीच कमजोर संघर्ष विराम के लाइफ सपोर्ट पर होने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी के बाद राजनयिक तनाव गहरा गया है। इससे तेल बाजारों को झटका लगा है। ईरान ने अमेरिका के शांति प्रस्ताव पर अपनी प्रतिक्रिया में अमेरिकी प्रतिबंध हटाए जाने, ईरान के फ्रीज परिसंपत्तियां खोलने, अमेरिकी नाकाबंदी समाप्त करने और होर्मुज जलडमरू मध्य पर ईरानी प्रबंधन को मान्यता देने की मांग की थी। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के शुरुआती कारोबार में आज लगभग 0.5% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 474 अंक लुढ़ककर 75,541 पर, जबकि निफ्टी 126 अंक की गिरावट के साथ 23,689 पर था। आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है। आधुनिक नर्सिंग के संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती पर यह दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है हमारी नर्सें हमारा भविष्य। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित हिंदी में समाचार अभी आपने सुनी। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। दिन के 11:05 हुए हैं और आप इस समय हैं हमारे दिवाकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ। और अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर।

कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर सुनने वाले सभी श्रोताओं को गीता का प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आप सभी श्रोताओं का आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर थक जाते हैं, हार मान लेते हैं, लेकिन दोस्तों असली जीत तो वो नहीं जो कभी नहीं गिरता, बल्कि वो है जो हर बार गिरकर भी उठ खड़ा होता है। वैसे सपने देखना तो आसान है, लेकिन उन्हें पूरी करने के लिए मेहनत, लगन और कभी ना हार मानने वाली हिम्मत चाहिए, क्योंकि जीवन हमें कई बार चुनौतियां देती है, जैसे नाकामियां, आलोचनाएं और असफलताएं, लेकिन इन सबको पार करके आगे बढ़ने वाला ही इतिहास रचता है। श्रोताओं, हमारी हर छोटी मेहनत, हर रात की पढ़ाई, हर सुबह का जज्बा, ये सब हमें उस मुकाम तक ले जाएगा जहां हम खुद को देखना चाहते हैं। इसलिए बस हमें विश्वास रखना है, मेहनत करना है और समय पर भरोसा करना है। इसलिए रुकना नहीं, थकना नहीं, बस चलते जाना है।

इम्तिहान फिल्म का ये गाना था, किशोर कुमार की आवाज़ में। मजरूह सुल्तानपुरी ने गीत लिखा और धुन बनाई लक्ष्मीकांत प्यारीलाल ने।

और अब कार्यक्रम में बात उन फरिश्तों की जो सफ़ेद वर्दी में आकर दर्द को कम करती हैं, आंसुओं को पोंछती हैं और उम्मीद की नई किरण जगाती हैं। जी हाँ श्रोताओं, ये वो शख्स हैं जिन्हें हम नर्स कहकर पुकारते हैं। नर्स, ये शब्द सुनते ही मन में एक तस्वीर उभरती है, कोमल स्पर्श, आश्वासन भरी मुस्कान और थकी हुई आंखों में भी जिम्मेदारी की चमक। श्रोताओं, आज नर्सों की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज यानी 12 मई को हम मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। हम सभी जानते हैं कि नर्स सिर्फ दवा नहीं देती, वो दुआ भी देती है। वो सिर्फ इंजेक्शन नहीं लगाती बल्कि हमारा हौसला भी बढ़ाती है। वो सिर्फ मरीज की निगरानी नहीं करती बल्कि पूरे परिवार की चिंता भी बांट लेती है। हर साल आज ही के दिन विश्व नर्स दिवस मनाया जाता है क्योंकि आज ही के दिन वर्ष 1820 में जन्मी थी आधुनिक नर्सिंग की जननी फ्लोरेंस नाइटिंगेल। वो लेडी विद द लैम्प के नाम से जानी जाती हैं। क्रीमिया युद्ध के दौरान उन्होंने अस्पतालों में सफाई व्यवस्था और देखभाल का ऐसा मॉडल खड़ा किया था कि मृत्यु दर में बहुत कमी आई थी और उन्होंने साबित कर दिया कि नर्सिंग कोई साधारण काम नहीं है बल्कि एक पवित्र मिशन है।

बर्निंग ट्रेन। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना, पद्मिनी कोल्हापुरे और साथियों की आवाज़ों में साहिर ने गीत लिखा था और धुन बनाई थी आर डी बर्मन ने।

श्रोताओ, आज के दौर में देखा जाए तो नर्सों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई है। कोविड के दिनों में हम याद करेंगे तो हमने देखा कि जब डॉक्टर भी हार मानने लगे थे, तब नर्स 24 घंटे पीपीई किट पहनकर मरीजों के सिरहाने खड़ी रहीं। कई नर्सें स्वयं संक्रमित हुईं, कई ने अपने परिवारों से दूर रहकर भी ड्यूटी निभाई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। आज हम उन सभी नर्सों को सलाम करते हैं जो नवजात शिशु को पहली सांस दिलाती हैं, बुजुर्गों को दर्द से राहत पहुंचाती हैं, कैंसर के मरीजों को हिम्मत दिया करती हैं, आखिरी सांस तक मरीजों का हाथ थामे रहती है। आज के दिन हमें चाहिए श्रोताओं कि हम उन नर्सों का सम्मान करें, क्योंकि वो हमारी ज़िंदगी की सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन नर्सों को सलाम करें जो रात जाग कर दिन में आराम नहीं करती, जो त्यौहार मनाने के बजाय ड्यूटी पर रहती हैं, जो अपने बच्चों को फ़ोन पर ये दिलासा देती हैं कि जल्दी आ रही हूँ कहकर मरीज को प्राथमिकता देती है। आज के दिन सभी नर्सों को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं हम देते हैं। आपका समर्पण, आपकी मेहनत और आपकी सेवा करने के जज्बे को हम सलाम करते हैं।

0: अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: मन की बात, प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर।
3: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली, अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे वो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा, मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
2: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें। मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 110001।
3: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।

अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का हम स्वागत कर रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर में। आज कार्यक्रम के साथ मैं आपकी दोस्त गीता।

श्रोताओ, आज के दिन की बात अगर हम करें तो आज का दिन एक और रूप से खास है, जो हमें याद दिलाता है कि हमारी जिंदगी की नींव हरी भरी पत्तियों, मजबूत जड़ों और स्वस्थ पौधों पर टिकी हुई है। जी हाँ, आज हम मना रहे हैं संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ, यानी अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस। ये दिन हमें बताता है कि पौधों की सुरक्षा करना सिर्फ किसानों का काम नहीं है, बल्कि पूरी मानवता का दायित्व है। श्रोताओं, पौधे सिर्फ हरे भरे या फसल नहीं है, वे हमारी जान है। हम जो ऑक्सीजन लेते हैं उसका 98% पौधों से हमें मिलता है। हमारे लिए भोजन, दवाइयाँ, कपड़े, लकड़ी, फल फूल सब हमें पौधों से ही तो मिलता है। लेकिन वर्तमान समय में देखा जाए तो आज पेड़ पौधे खतरे में हैं। कीट पतंगे, बीमारियाँ, जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और अनियंत्रित व्यापार इन सब को नुकसान पहुँचा रही है। हर साल इस दिवस को एक विशेष थीम के साथ मनाया जाता है। इस साल का थीम है प्लांट बायोसिक्योरिटी फॉर फूड सिक्योरिटी, यानी खाद्य सुरक्षा के लिए पादप जैव सुरक्षा। इसका मतलब है कि पौधों को कीटों, बीमारियों और बाहरी खतरे से बचाना ही हमारी खाद्य सुरक्षा की सबसे मजबूत दीवार है।

हरियाली और रास्ता इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। श्रोताओं, अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस की हम बात कर रहे हैं और देखा जाए तो हमारे देश भारत जैसे कृषि प्रधान देश में आज के दिन का विशेष महत्व है। हम सभी जानते हैं कि हमारा देश भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक है। गेहूं, फल, सब्जी, मसाले सब में अग्रणी है, लेकिन अगर पौधों की सेहत पर हम अगर ध्यान ना दें तो ये सारी उपलब्धियाँ खतरे में पड़ सकती हैं। श्रोताओं, पादप स्वास्थ्य सिर्फ कृषि का विषय नहीं है बल्कि हमारे स्वास्थ्य का भी हिस्सा है, क्योंकि मानव स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य और पर्यावरण स्वास्थ्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसलिए हमें चाहिए कि कुछ ज़रूरी बातों का हम ध्यान अवश्य रखें। स्वस्थ बीज बोएं, रासायनिक कीटनाशकों का कम से कम उपयोग करें, जैविक खेती को बढ़ावा दें, कीटों और बीमारियों की निगरानी करें और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएँ और जंगलों की रक्षा करें, तभी हम पादप स्वास्थ्य को मजबूत बना सकते हैं।

एक बार फिर इसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना, अनुराधा पौडवाल और भूपेंद्र सिंह की आवाज़ों में। विनोद पांडे ने गीत लिखा था और धुन बनाई थी रघुनाथ सेठ ने।

और श्रोताओं, अब कार्यक्रम में बात आज के दिन के इतिहास की। आज यानी 12 मई का इतिहास बहुत समृद्ध है हमारे लिए। आज ही के दिन साल 1459 में राव जोधा ने जोधपुर की नींव रखी थी। राजस्थान की इस सन सिटी या ब्लू सिटी को आज भी अपनी वीरता, संस्कृति और साहस के लिए जाना जाता है। राव जोधा की दूरदर्शिता ने एक ऐसा शहर बसाया जो आज भी राजपूत शौर्य का प्रतीक है। आज ही के दिन 12 मई 1949 को विजय लक्ष्मी पंडित स्वतंत्र भारत की पहली महिला राजदूत बनी। उन्होंने अमेरिका में भारत का प्रतिनिधित्व किया और ये दिन भारतीय महिलाओं के सशक्तिकरण का भी प्रतीक है। आज ही के दिन साल 1638 में मुगल बादशाह शाहजहां ने दिल्ली में लाल किले के निर्माण का आदेश दिया। ये किला आज भी हमारी स्वतंत्रता, एकता और वैभव का प्रतीक है। हर साल 15 अगस्त को यहाँ से माननीय प्रधानमंत्री तिरंगा फहराते हैं।

फना फिल्म का ये गाना था महालक्ष्मी अय्यर और साथियों की आवाज़ों में। प्रसून जोशी थी गीतकार और संगीतकार थे जतिन ललित।

पर श्रोताओं आप कुछ जरूरी सूचनाएं। श्रोता, शहर में लगातार बढ़ती ट्रैफिक समस्या, जाम और कानून व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए जमशेदपुर ट्रैफिक पुलिस अब हाईटेक तकनीक का सहारा लेने जा रही है। ट्रैफिक विभाग ने 10 क्विक रिस्पांस टीम KURT बाइक यूनिट गठित करने का प्रस्ताव तैयार करके उच्च अधिकारियों को भेज दिया है। अंतिम स्वीकृति मिलते ही ये विशेष टीम शहर की सड़कों पर तैनात कर दी जाएगी और इसके अनुसार प्रत्येक QRT बाइक यूनिट में अत्याधुनिक कैमरे लगाए जाएंगे और इनकी मदद से ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले, सड़क पर जाम लगाने वाले और हंगामा करने वाले लोगों पर तत्काल नजर रखी जा सकेगी। कैमरे घटनास्थल की लाइव रिकॉर्डिंग करेंगे जिससे किसी भी घटना का डिजिटल साक्ष्य तुरंत उपलब्ध हो जाएगा और इससे मौके पर कार्रवाई करने में तेजी आएगी और बाद में कानूनी कार्रवाई भी आसान हो सकेगी। प्रशासन विभाग के अनुसार नई बाइक यूनिट खास तौर पर उन संवेदनशील इलाकों में सक्रिय रहेंगी जहां अक्सर सड़क जाम, दुर्घटनाएं या यातायात अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होती है। बाइक होने के कारण जवान कम समय में घटनास्थल तक पहुंच सकेंगे और अक्सर बड़े वाहनों और भीड़भाड़ के कारण पुलिस टीम को मौके पर पहुंचने में देर हो जाती है, लेकिन बाइक यूनिट शुरू होने के बाद त्वरित कार्रवाई संभव हो जाएगी।

हम हेरा ही प्यार के इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना। उदित नारायण, अलका याग्निक और साथियों की आवाज़ों में गीत समीर ने लिखा और धुन बनाई नदीम श्रवण ने।

और श्रोता, अब चलते चलते मौसम का हाल आपको बताते चले। आज शहर और इसके आसपास के क्षेत्रों में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, साथ ही बारिश, गरज चमक या धूल भरी आंधी की संभावना भी बनी हुई है। और इसके तहत आज का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। आज का सूर्यास्त होगा 6:17 पर और कल का सूर्योदय होगा 5:07 पर। और इसी के साथ आज का कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर से मुझे यानी गीता को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: नमस्कार जमशेदपुर।
1: नमस्कार जमशेदपुर कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी का। यह जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। दिन के 12 बजने वाले हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारतीय जनता पार्टी नेता हिमंता बिस्व शर्मा ने आज असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।
3: मैं श्री हिमंत बिस्व शर्मा ईश्वर नाम शपथ लो जे विधि द्वारा स्थापित भारत संविधान प्रति मैं प्रकृत विश्वास और अनुगत्य पोषण करिम।
2: श्री शर्मा के साथ चार मंत्रियों ने भी शपथ ली। इनमें से दो भाजपा के और एक एक सहयोगी दल असम गण परिषद तथा बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट के हैं। ये असम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की तीसरी बार सरकार है। श्री शर्मा ने लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। वे राज्य में ये उपलब्धि हासिल करने वाले एकमात्र गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन तथा एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी उपस्थित हैं। पुदुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भाजपा के चुनाव प्रभारी डॉ. मनसुख मांडविया तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई नेता शामिल होंगे। तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के 30 विधायकों द्वारा पी वेलुमणि को विधायक दल का नेता और सी विजय भास्कर को सचेतक चुनने की घोषणा के साथ राज्य की राजनीतिक स्थिति में उलटफेर हुआ है। इन विधायकों ने अस्थायी अध्यक्ष करुपैया से मुलाकात कर अपने हस्ताक्षर वाला पत्र उन्हें सौंपा। वहीं 17 विधायकों के एक अन्य समूह ने ई पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना है। इस विधानसभा सत्र में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नई सरकार को बुधवार तक बहुमत साबित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में राज्य मंत्रिमंडल की पहली बैठक के निर्णयों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य के लोग अब विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत का लाभ उठा सकेंगे। इससे पहले कल राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें बांग्लादेश सीमा पर 45 दिन के भीतर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को भूमि हस्तांतरित करना शामिल है। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पूर्व अग्निशमन और आपात सेवा मंत्री सुजीत बसु को कल कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया। निदेशालय ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के शासन में सुजीत बसु ने नगर पालिका में विभिन्न पदों के लिए कथित रूप से लगभग 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की। जांच एजेंसी को बसु के बैंक खातों में बड़ी राशि जमा होने के भी सबूत मिले हैं। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में समाजवादी पार्टी के सांसद अजेंद्र सिंह लोधी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। भाजपा नेता सत्येंद्र प्रताप की शिकायत के बाद महोबा कोतवाली थाने में मामला दर्ज किया गया। ये विवाद तब शुरू हुआ जब लोधी ने कथित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की उस अपील पर आपत्तिजनक टिप्पणी की जिसमें उन्होंने लोगों से सोना न खरीदने का आग्रह किया था। इन टिप्पणियों के बाद राज्य में भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार से 5 देशों की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में वे शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल जनसभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा घर से काम, ऑनलाइन कक्षाएं और वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई। आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है। आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती पर यह दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है हमारी नर्सें हमारा भविष्य। आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी से प्रसारित समाचार अभी आपने सुनी। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। दिन की 12:05 हुए हैं और आप इस समय हैं हमारी दिवाकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ। शीर्षक गीत कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे बस थोड़ी ही देर में।
1: हमार बाबूजी के कहना बा बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।

आकाशवाणी जमशेदपुर से प्रस्तुत है कार्यक्रम शीर्षक गीत। कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत। स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, प्यार एक ऐसी भावना है जो जीवन को रंगों से भर देती है। ये मनुष्य के हृदय की गहराइयों से उत्पन्न होता है और आत्मा को एक नई ऊर्जा प्रदान करता है। लेकिन जब बात पहले प्यार की आती है तो ये अनुभव और भी अनोखा, नाजुक और अविस्मरणीय हो जाता है। पहला प्यार वो अनुभूति है जो जीवन में पहली बार धड़कनों को तेज करती है और आंखों में अनजानी सी चमक लेकर आती है।

दोस्त, पहला प्यार अक्सर अनजाने में हमारे जीवन में दस्तक देता है। ये किसी की मुस्कान, उसके बात करने की अदा या फिर उसकी छोटी छोटी हरकतों से शुरू हो सकता है। एक अनजाना सा खिंचाव, एक अनकही सी चाहत, यही तो पहले प्यार की पहली सीढ़ी होती है। और यही वही पल होता है जब दोस्ती की मासूमियत धीरे धीरे किसी गहरे रिश्ते की ओर बढ़ने लगती है।

आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से शीर्षक गीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं और आज कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं पहले प्यार की। वैसे जब कोई किसी को पसंद करता है तो वो पल ऐसे होते हैं हमारे लिए जब उससे बातें करने में हिचकिचाहट होती है, फिर भी मन उसकी एक झलक पाने को बेकरार रहता है। साथ ही ये वो समय होता है जब हर छोटी बात दिल को छू जाती है। सभी रिश्तों से अलग ये रिश्ता होता है, बिल्कुल नया सा एहसास जो बिना कुछ कहे सब कुछ कह देता है।

वैसे दोस्तों, पहले प्यार का एहसास हमें सपने देखना सिखाता है, उम्मीद करना सिखाता है और सबसे बढ़कर किसी की खुशी को अपनी खुशी से जोड़ना भी सिखाता है। साथ ही ये जीवन का वो सबक होता है जो किताबों में नहीं मिलता, बल्कि अनुभवों से सीखा जाता है।

और दोस्तों आज की शीर्षक गीत कार्यक्रम में बस इतना ही। आपको बता दें जिन फिल्मों के गीतों को आज के कार्यक्रम में आपने सुना वे थे कबीर सिंह, हम आपके हैं कौन, वो फिर आएगी और इल्ज़ाम। आवाज़ें थी अरमान मलिक, एसपी बाला सुब्रमण्यम, अमित कुमार, अनुपमा देश पांडे और आशा भोसले की। गीत लिखा अरशाद कामिल, देव कोहली, समीर और अनजान ने और संगीत तैयार किया विशाल मिश्रा, राम लक्ष्मण, आनंद मिलिंद और बप्पी लाहिरी ने। और इसी के साथ आज का शीर्षक गीत कार्यक्रम बस यहीं संपन्न हुआ। ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय दोपहर के ठीक 12:30 हुए हैं और अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं पंडित भीमसेन जोशी का ख्याल गायन, राग है गौड़ सारंग।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंडित भीमसेन जोशी का ख्याल गायन, राग था मुल्तानी। और इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय दिन का ठीक 1 बजने वाला है। कुछ ही पलों में अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होगा। आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। और ठीक 1:10 पर सुनिएगा आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रसारित प्रादेशिक समाचार।

0: साथ मैं कनकलता। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने चिकित्सकीय शिक्षा में दाखिले के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने कहा है कि यह फैसला विद्यार्थियों के हित तथा राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली पर टिके विश्वास को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। एनटीए ने बताया है कि सरकार ने पेपर लीक के आरोपों की पूरी जांच के लिए मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। एनटीए ने कहा है कि परीक्षा के लिए नई तिथि अलग से अधिसूचित की जाएगी। पंजीकरण विवरण, उम्मीदवार की जानकारी और मई 2026 के लिए चयनित परीक्षा केंद्र अपरिवर्तित रहेंगे तथा पुनः परीक्षा में उपयोग किए जाएंगे। एजेंसी ने कहा है कि दोबारा परीक्षा के लिए फिर पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं होगी और इसके लिए कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हिमंता बिस्व सरमा ने आज लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने गुवाहाटी में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में डॉ. सरमा को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
1: मैं श्री हिमंत बिस्व सरमा ईश्वर नाम शपथ लो जे विधि द्वारा स्थापित भारत संविधान प्रति मैं प्रकृत विश्वास और अनुगत्य पोषण करिम।
0: डॉक्टर शर्मा के साथ चार विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। इनमें भाजपा से रामेश्वर तेली और अजंता नियोग, असम गण परिषद से अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट से चरण बोरो शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी उपस्थित थे। पुदुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी डॉ. मनसुख मांडविया तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई नेता शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंप दी गई है। राज्य पुलिस की सिफारिश पर एजेंसी ने आज आधिकारिक रूप से मामले की जांच शुरू कर दी। सीबीआई ने एक बयान में कहा कि कोलकाता जोन के संयुक्त निदेशक की देखरेख में एक विशेष जांच दल का गठन किया जाएगा। सीबीआई की एक टीम आज मध्यग्राम पुलिस स्टेशन जाकर घटनास्थल का मुआयना कर सकती है। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पूर्व अग्निशमन और आपात सेवा मंत्री सुजीत बसु को कोलकाता से गिरफ्तार किया है। निदेशालय ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के शासनकाल में सुजीत बसु ने नगर पालिका में विभिन्न पदों के लिए कथित रूप से लगभग 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की। प्रवर्तन निदेशालय ने नौकरी देने के बदले कथित रूप से फ्लैट की मांग के अपराध का भी पता लगाया है। जांच एजेंसी को बसु के बैंक खातों में बड़ी राशि जमा होने के भी सबूत मिले हैं। सुजीत बसु को आज सुबह विशेष अदालत में पेश किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में 15 नर्सिंग पेशेवरों को वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। उन्हें ये पुरस्कार नर्सिंग क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए गए। ये पुरस्कार पंजीकृत नर्सों, मिडवाइफ, सहायक नर्स मिडवाइफ और महिला स्वास्थ्य आगंतुकों को प्रदान किए गए। प्रत्येक पुरस्कार में एक प्रमाण पत्र, 1,00,000 रूपये नकद और पदक शामिल है। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार की स्थापना 1973 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल एक जनसभा में श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कक्षाएं और वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगभग 1.3% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 1041 अंक लुढ़ककर 74,975 पर, जबकि निफ्टी 297 अंक की गिरावट के साथ 23,519 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Valsa Williams. Senior BJP leader Himanta Biswa Sarma today took oath as the Chief Minister of Assam for a second consecutive term. Governor Lakshman Prasad Acharya administered the oath of office in secrecy to Dr. Sarma at a ceremony held at the Veterinary College ground in Khanapara, Guwahati.
1: মই শ্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ঈশ্বরৰ নামত শপত লওঁ যে বিধিৰ দ্বাৰা স্থাপিত ভাৰতৰ সংবিধানৰ প্ৰতি মই প্ৰকৃত বিশ্বাস আৰু আনুগত্য পোষণ কৰিম।
2: Along with Dr. Sarma, four MLA

रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने नीट UG की परीक्षा रद्द की। CBI करेगी पेपर लीक मामले की जांच। परीक्षा की नई तारीख की घोषणा जल्द। राज्य सरकार ने झारखंड सैंड माइनिंग संशोधन नियमावली 2026 जारी की। बालूघाट आवंटन के नियमों में बदलाव से अब लीज लेना होगा आसान। प्रदेश भाजपा ने JTET नियमावली

0: से भोजपुरी, मगही और अंगिका को बाहर करने का निर्णय वापस लेने की मांग की। वित्त मंत्री ने कहा, कमेटी का निर्णय अगली परीक्षा पर होगा लागू। झारखंड हाईकोर्ट ने अधिसूचित पेसा नियमावली को उसकी मूल भावना के विपरीत लागू करने पर सरकार से मांगा जवाब। और JSCA ने प्रस्तावित झारखंड T20 क्रिकेट लीग के पहले संस्करण के फ्रेंचाइजी अधिकारों के लिए बोली जमा करने की अंतिम तिथि 15 मई तक बढ़ाई। और अब समाचार विस्तार से। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने नीट UG की परीक्षा रद्द कर दी है। यह परीक्षा 3 मई 2026 को देश भर में आयोजित की गई थी। पेपर लीक के कारण यह परीक्षा रद्द की गई है। इस मामले की जांच के लिए NTA सभी रिकॉर्ड और दस्तावेज CBI को सौंपेगी। परीक्षा की नई तारीख का ऐलान जल्द किया जाएगा। खान विभाग ने बालू खनन व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए झारखंड सैंड माइनिंग संशोधन नियमावली 2026 की अधिसूचना जारी की है। नई नियमावली में लीज भुगतान प्रणाली और पर्यावरणीय जिम्मेदारियों में बदलाव किए गए हैं। नए प्रारूप के अनुसार लीज अवधि की गणना पंजीकरण की तारीख से होगी। इसके अंतर्गत लीज धारकों को अब भुगतान 3 किस्तों में करना होगा। इससे राज्य सरकार को 2,000 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष राजस्व मिलने की संभावना है। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा JTET की नियमावली से भोजपुरी, मगही और अंगिका भाषाओं को बाहर किए जाने के मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है। भाजपा के धनबाद विधायक राज सिन्हा ने राज्य सरकार से इस निर्णय को तत्काल वापस लेने की मांग की है।
1: इस राज्य में अधिकांश लोग मगही बोलते हैं, भोजपुरी बोलते हैं, तो अंगिका बोलते हैं। पूरा पलामू, गढ़वा, धनबाद, बोकारो, रांची, पटिया, पूरा संथाल परगना लगभग सभी जगह बोले जाते हैं कि इस राज्य की अधिकांश जनता के साथ सरकार ने अन्यायपूर्वक निर्णय लिया है। सरकार को इस निर्णय को बदलना चाहिए और बदलना होगा।
0: वहीं झरिया विधायक रागनी सिंह ने कहा कि भाषा किसी क्षेत्र या राजनीतिक दल की नहीं बल्कि लोगों की पहचान और सम्मान से जुड़ा विषय है। उन्होंने कहा कि हर भाषा को सम्मान मिलना चाहिए।
2: झारखंड में भी हमको लगता है कि 80% से 90% बिहारी है, तो उनको भी सम्मान मिलना चाहिए। आप हर किसी को सम्मान दीजिए, लेकिन ऐसा निर्णय ना लीजिए कि किसी को ठेस पहुंचे और कोई आंदोलन पे उतरना पड़े, यहाँ नहीं तो सदन में।
0: इधर इस मामले में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि उच्च स्तरीय कमेटी जो निर्णय लेगी वह अगली परीक्षा पर लागू होगा। वर्तमान JTET परीक्षा पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। भाजपा के वरीय नेता चंपाई सोरेन ने कहा कि मौजूदा राज्य सरकार के संरक्षण में संताल परगना की डेमोग्राफी बदल रही है। बोकारो परिसदन में आज पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि पिटरवार प्रखंड की उलगड़ा पंचायत में एक विशेष समुदाय के लोगों ने आदिवासियों की जमीन पर कब्जा कर लिया है।
3: ये अबुआ सरकार आर आदिवासी के जमीन पर जबरन कब्जा हो रहा है। सरकार तो हर जगह उसी तरह हो रहा, पूरा संताल परगना डेमोग्राफी बदल रहा है, उसमें बोकारो भी अच्छा। अबुआ सरकार में आदिवासी का जमीन है सुरक्षित नहीं है, ना माँ बहन का सुरक्षित।
0: झारखंड हाईकोर्ट ने अधिसूचित पेसा नियमावली को सही ढंग से लागू नहीं करने पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। इस मामले में दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सरकार को याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए बिंदुवार सवालों पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। याचिका में कहा गया है कि सरकार ने पेसा नियमावली की मूल भावना के विपरीत संशोधन कर उसे लागू किया है। झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा में दिव्यांग आरक्षण का लाभ नहीं दिए जाने के मामले में झारखंड लोक सेवा आयोग से जवाब मांगा है। चीफ जस्टिस MS सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने आयोग को शपथ पत्र दाखिल कर जानकारी मांगी कि दिव्यांग आरक्षण श्रेणी में चयनित अभ्यर्थियों की तुलना में याचिकाकर्ता वैष्णवी के प्राप्तांक अधिक हैं या कम। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है तथा रसोई गैस की आपूर्ति लगातार हो रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा सार्वजनिक परिवहन और कार पोलिंग पर बल दिया है।
4: भारत सरकार ने कई इफेक्टिव स्टेप्स लिए हैं और ये सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि आम उपभोक्ता को कम से कम असुविधा के साथ फ्यूल सप्लाई की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। और इन सभी जो स्टेप्स लिए हैं उनके फलस्वरूप हमारी क्रूड इन्वेंटरी मेंटेन है, हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम लेवल पर ऑपरेट कर रही हैं, किसी रिटेल आउटलेट पर कोई ड्राई आउट नहीं है, एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर भी कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है, पेट्रोल और डीजल के पर्याप्त स्टॉक्स अवेलेबल हैं।
0: रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने पश्चिम एशिया में जारी युद्ध से उत्पन्न स्थिति से निपटने और राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 7 आह्वानों का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का यह आग्रह राजनीतिक नहीं है बल्कि राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित है। झारखंड समेत देश भर में आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जा रहा है। आधुनिक नर्सिंग के संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगल की जयंती के उपलक्ष्य में यह दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह और स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नर्सों को देश की स्वास्थ्य प्रणाली की रीढ़ और आशा का स्तंभ बताया। बोकारो स्टील सिटी के सेक्टर 6 थाना क्षेत्र के इलाके से पुलिस ने भारी मात्रा में वोटर कार्ड, एटीएम कार्ड और पैन कार्ड बरामद किया है। पुलिस ने सभी दस्तावेजों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। थाना प्रभारी संगीता कुमारी ने कहा कि संबंधित विभाग और बैंकों से संपर्क कर दस्तावेजों की सत्यता की पुष्टि की जाएगी। कमजोर वैश्विक संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार आज गिरावट के साथ शुरू हुआ। सेंसेक्स 1025 अंक गिरकर 74,990 पर कारोबार कर रहा है, जबकि निफ्टी 299 अंक फिसल कर 23,526 पर कारोबार कर रहा है। राजधानी रांची के सर्राफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,42,000 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,78,000 रुपए प्रति किलो है। रांची के मोरहाबादी इंडोर स्टेडियम में द्वितीय रांची जिला पेंचक सलार चैंपियनशिप 2026-27 का आयोजन किया गया। इसमें 170 बच्चों ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लिया। मुख्य अतिथि आदित्य मल्होत्रा ने कहा कि पेंचक सलाट आत्मरक्षा, एकाग्रता और अनुशासन विकसित करने का उत्कृष्ट माध्यम है। वहीं रांची जिला पेंचक सलाट एसोसिएशन ने बताया कि झारखंड के खिलाड़ियों ने गुजरात में आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक जीतकर राज्य का नाम रोशन किया है। झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन JSCA ने प्रस्तावित झारखंड T20 क्रिकेट लीग के पहले संस्करण के फ्रेंचाइजी अधिकारों के लिए बोली जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। एसोसिएशन की ओर से जारी सूचना के अनुसार अब 15 मई की रात तक अपनी बोली जमा की जा सकती है। इससे पहले अंतिम तिथि 11 मई निर्धारित थी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने नीट UG की परीक्षा रद्द की। CBI करेगी पेपर लीक मामले की जांच। परीक्षा की नई तारीख की घोषणा जल्द। राज्य सरकार ने झारखंड सैंड माइनिंग संशोधन नियमावली 2026 जारी की। बालूघाट आवंटन के नियमों में बदलाव से अब लीज लेना होगा आसान। प्रदेश भाजपा ने JTET की नियमावली से भोजपुरी, मगही और अंगिका को बाहर करने का निर्णय वापस लेने की मांग की। वित्त मंत्री ने कहा, कमेटी का निर्णय अगली परीक्षा पर होगा लागू। झारखंड हाईकोर्ट ने अधिसूचित पेशा नियमावली को उसकी मूल भावना के विपरीत लागू करने पर सरकार से मांगा जवाब। और JSCA ने प्रस्तावित झारखंड T20 क्रिकेट लीग के पहले संस्करण के फ्रेंचाइजी अधिकारों के लिए बोली जमा करने की अंतिम तिथि 15 मई तक बढ़ाई। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

आकाशवाणी रांची से प्रसारित प्रादेशिक समाचार अभी आपने सुनी। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। दोपहर के 1:20 हुए हैं और आप इस समय हैं हमारे दिवाकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ। अगला कार्यक्रम फिल्म संगीत हम आपको सुनवाएंगे बस थोड़ी ही देर में।

0: हमार बाबूजी के कहना बा बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
3: उपभोक्ताओं तक पहुँचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
4: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
3: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
4: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
3: डायल कीजिए 8700014242।
4: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
5: नमस्कार जमशेदपुर का एक अलग अंदाज,
6: ज्ञान विज्ञान
7: इतिहास के पन्नों से,
8: सेहत और बॉलीवुड की बातें,
5: मौसम का मिजाज,
6: अपने शहर की खबरें,
8: बातों मुलाकातों के साथ
5: सुरीला मनोरंजन
6: और भी बहुत कुछ।
5: आप सुनते हैं कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर में दिन के 11:05 से 12 बजे तक
8: आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से।
5: नमस्कार जमशेदपुर।

आकाशवाणी जमशेदपुर से आप प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। बहुत बहुत स्वागत आप सभी श्रोताओं का आज के कार्यक्रम में। चलिए हम और आप शुरू करते हैं आज का ये फिल्म संगीत का सफर। जी हाँ दोस्तों, बिताते हैं कुछ खूबसूरत पल कुछ खूबसूरत गीतों के साथ।

इश्क फिल्म का ये गाना था उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ों में। राहत इंदौरी ने गीत लिखा था और धुन बनाई थी अनु मलिक ने। बागी फिल्म का ये गाना है अमित कुमार की आवाज़ में। साथ में साथ दे रही हैं अनुराधा पौडवाल, समीर हैं गीतकार और संगीतकार आनंद मिलंत।

बागी फिल्म का ये गाना था अमित कुमार और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ों में। समीर ने गीत लिखा और धुन बनाई आनंद मिलिंद ने।

0: FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र और इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। और अब इस कार्यक्रम के लिए हम ले रहे हैं छोटा सा अंतराल, अभी हाजिर होते हैं।
1: बाबूजी के कहना बा बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
4: नमस्कार जमशेदपुर, का एक अलग अंदाज,
5: ज्ञान विज्ञान,
6: इतिहास के पन्नों से,
5: सेहत और बॉलीवुड की बातें,
4: मौसम का मिजाज,
5: अपने शहर की खबरें,
6: बातों मुलाकातों के साथ
4: सुरीला मनोरंजन
5: और भी बहुत कुछ।
4: आप सुनते हैं कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर में दिन के 11:05 से 12 बजे तक
6: आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से।
4: नमस्कार जमशेदपुर।
7: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: हेलो डॉक्टर,
1: आकाशवाणी जमशेदपुर का लाइव फोन इन कार्यक्रम
0: हेलो डॉक्टर।
1: सुनिए हर माह के आखिरी बुधवार को रात 8 बजे से FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर विशेषज्ञों से कीजिए बातें लाइव कार्यक्रम के दौरान और पाइए अपनी समस्याओं से निदान। तो कॉल कीजिए साथियों 06572960445 पर। नंबर एक बार पुनः सुनिए 06572960445 और बातें कीजिए लाइव डॉक्टर के साथ।
0: हेलो डॉक्टर।
2: प्रस्तावना। जलवायु क्या है और हमें इसकी परवाह क्यों करनी चाहिए? नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जलवायु क्या होती है? जलवायु वह सामान्य मौसम है जो हम किसी जगह पर लंबे समय तक, लगभग 30 साल तक महसूस करते हैं। यह सूर्य की रोशनी, हवा, जमीन, समंदर और बर्फ से प्रभावित होती है। वैज्ञानिक विभिन्न क्षेत्रों जैसे भूगोल, महासागर विज्ञान और मौसम विज्ञान से जुड़ी जानकारियों को एक साथ लेकर अध्ययन करते हैं, ताकि हम ये समझ सकें कि हमारा ग्रह कैसे काम करता है। लेकिन आज हमारी जलवायु पहले से कहीं ज्यादा तेजी से बदल रही है। इसका सबसे बड़ा कारण मानव गतिविधियों से ग्रीन हाउस गैस का निकलना है। इस वजह से गर्मी बढ़ रही है, बाढ़ आ रही है, सूखा पड़ रहा है और समंदर का जल स्तर भी बढ़ रहा है। जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए सबसे पहला कदम इससे समझना है। इसलिए यूनेस्को जलवायु परिवर्तन की जानकारी को आसान और सरल भाषा में समझाने का समर्थन करता है, ताकि स्कूल के बच्चों से लेकर समुदाय के नेता तक सभी ये जान सकें कि धरती पर क्या हो रहा है और हम इसे बचाने के लिए क्या कर सकते हैं। इस विषय पर एक खास प्रदर्शनी आयोजित की गई है जो आपको दिखाएगी कि जलवायु परिवर्तन हमारी दुनिया को कैसे प्रभावित कर रहा है। इसमें साफ पानी, बेहतर स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा और संयुक्त राष्ट्र के 17 सतत विकास लक्ष्यों को भी शामिल किया गया है। यह प्रदर्शनी अब कई भाषाओं में उपलब्ध है। इसे पहले से ही भारत, भूटान और श्रीलंका में साझा किया जा रहा है। इसे लोगों में जागरूकता बढ़ रही है और वे अपने आप को बदलती जलवायु के लिए तैयार कर रहे हैं। तो जुड़े रहिए, अधिक जानिए और बदलाव का हिस्सा बनिए। हम सभी के लिए जलवायु के बारे में जानना बेहद जरूरी है।
3: अंतराल हुआ पूरा और अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम फिल्म संगीत में। श्रोताओं, अगला गीत सुनने से पहले एक आवश्यक

आप अपने मोबाइल से sec.census.gov.in पोर्टल पर अपनी और अपने परिवार की जानकारी स्वयं भरें। ये पोर्टल झारखंड में आगामी 15 मई 2026 तक स्वगणना हेतु खुली रहेगी। आपकी गोपनीयता हमारी प्राथमिकता है। हमारे जिले के सुनहरे भविष्य और सटीक योजना निर्माण के लिए हमने अपनी जिम्मेवारी निभाई, अब आपकी बारी है। सूचना समाप्त हुई।

लकी फिल्म का ये गाना था लता मंगेशकर और अदनान सामी की आवाज़ों में। समीर ने गीत लिखा और धुन बनाई अदनान सामी ने।

यंगिस्तान फिल्म का ये गाना था। अरिजीत सिंह की आवाज़ में कौसर मुनीर ने गीत लिखा और धुन बनाई जीत गांगुली ने। और कार्यक्रम का अगला गाना हम आपको न्यूयॉर्क फिल्म से हम आपको सुनवा रहे हैं। सुनिधि चौहान की आवाज़ है, संदीप श्रीवास्तव हैं गीतकार और संगीतकार हैं प्रीतम।

न्यूयॉर्क फिल्म का ये गाना था सुनिधि चौहान और साथियों की आवाज़ों में। संदीप श्रीवास्तव ने गीत लिखा और धुन बनाई प्रीतम ने। और श्रोताओं, इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ।

0: FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से। श्रोताओं, हम आपको बता दें, हमारी इस सभा में दिन में 3 बजे सुनिएगा NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। 3:30 पर सुगम संगीत का कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय दोपहर के ठीक 2 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होगा। आप सुनेंगे दोपहर समाचार बुलेटिन अंग्रेजी और हिंदी में बारी बारी से।
1: दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द मिडडे न्यूज। The headlines: NEET exam for admission to undergraduate medical education cancelled over paper leak allegations, CBI probe ordered. Hemanta Biswa Sarma takes oath as Chief Minister of Assam for second consecutive term. CBI takes over probe into murder of West Bengal Chief Minister Shubhendu Adhikari's aide Chandranath Rath. President Draupadi Murmu confers National Florence Nightingale Awards on 15 nursing professionals. And in IPL cricket, Gujarat Titans to take on Sunrisers Hyderabad in Ahmedabad this evening. The National Testing Agency, NTA, has decided to cancel the NEET-UG 2026 examination conducted on the 3rd of this month for admission to undergraduate medical education. In a social media post, NTA informed that the decision has been taken in the interest of students and in recognition of the trust on which the national examination system rests. The agency also stated that the government

0: साथियों के साथ समन्वय में एनटीए द्वारा जांच निष्कर्षों का मूल्यांकन करने के बाद लिया गया है। परीक्षा के लिए नई तिथि अलग से अधिसूचित की जाएगी। पंजीकरण विवरण, उम्मीदवार की जानकारी और मई 2026 के लिए चयनित परीक्षा केंद्र अपरिवर्तित रहेंगे। दोबारा परीक्षा के लिए फिर पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी और कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हिमंता बिस्व शर्मा ने लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने गुवाहाटी में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में डॉक्टर शर्मा को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
2: मैं श्री हिमंता बिस्व शर्मा ईश्वर नाम शपथ लो जे विधि द्वारा स्थापित भारत संविधान प्रति मैं प्रकृत विश्वास आरु अनुगत्य पोषण करिम।
1: डॉक्टर शर्मा के साथ चार विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। इनमें भाजपा से रामेश्वर तेली और अजंता नियोग, असम गण परिषद से अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट से चरण बोरो शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर डॉ. हिमंता बिस्व शर्मा को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री शर्मा ने एक कुशल प्रशासक के रूप में अपनी पहचान बनाई है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने असम में नवगठित मंत्रिमंडल के सदस्यों को मंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई दी। श्री नवीन ने आशा व्यक्त की कि मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा के नेतृत्व में एनडीए सरकार विकसित असम और विकसित भारत के दृष्टिकोण के साथ काम करती रहेगी। असम विधानसभा में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन ने लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी करते हुए 126 सदस्य विधानसभा में 102 सीटें हासिल की हैं। पुदुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी डॉ. मनसुख मांडविया तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई नेता शामिल होंगे। सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच शुरू कर दी है। राज्य पुलिस की सिफारिश पर एजेंसी ने आज आधिकारिक रूप से मामले की जांच शुरू कर दी। सीबीआई ने एक बयान में कहा कि कोलकाता जोन के संयुक्त निदेशक की देखरेख में एक विशेष जांच दल का गठन किया जाएगा। सीबीआई की एक टीम आज मध्यग्राम पुलिस स्टेशन जाकर घटनास्थल का मुआयना कर सकती है। इस बीच सीबीआई ने जांच करने के लिए डीआईजी पंकज सिंह के नेतृत्व में 7 सदस्यीय टीम का गठन किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पूर्व अग्निशमन और आपात सेवा मंत्री सुजीत बसु को कोलकाता से गिरफ्तार किया है। निदेशालय ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के शासनकाल में सुजीत बसु ने नगर पालिका में विभिन्न पदों के लिए कथित रूप से लगभग 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की। प्रवर्तन निदेशालय ने नौकरी देने के बदले कथित रूप से फ्लैट की मांग के अपराध का भी पता लगाया है। जांच एजेंसी को बसु के बैंक खातों में बड़ी राशि जमा होने के भी सबूत मिले हैं। प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में राज्य मंत्रिमंडल की पहली बैठक के निर्णयों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य के लोग अब विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत का लाभ उठा सकेंगे। कल राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें बांग्लादेश सीमा पर 45 दिन के भीतर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को भूमि हस्तांतरित करना शामिल है। तमिलनाडु विधायक जेसीडी प्रभाकर को आज सर्वसम्मति से विधानसभा अध्यक्ष चुना गया। कार्यवाहक अध्यक्ष एमबी करुपैया ने मुख्यमंत्री जोसेफ विजय द्वारा प्रस्तावित प्रभाकर के नाम की घोषणा की, जिसका सदन में पार्टी के नेता के.ए. सेंगोत्तैयान ने समर्थन किया। थोरायूर निर्वाचन क्षेत्र से तमिलनाडु के विधायक रविशंकर को भी सर्वसम्मति से उपाध्यक्ष चुना गया। टीवीके सरकार को कल विधानसभा में अपना बहुमत साबित करना है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने स्कूलों, कॉलेजों, पूजा स्थलों और बस स्टैंड के पास स्थित खुदरा शराब की दुकानों को बंद करने का आदेश दिया है। राज्य सरकार ने कहा है कि 4,675 खुदरा शराब की दुकानें चल रही हैं। इनमें से स्कूलों, कॉलेजों, पूजा स्थलों और बस टर्मिनलों से 500 मीटर के दायरे में 717 दुकानों को 2 सप्ताह के भीतर

0: बंद करने का आदेश दिया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में 15 नर्सिंग पेशेवरों को वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। उन्हें ये पुरस्कार नर्सिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए गए। ये पुरस्कार पंजीकृत नर्सों, मिडवाइफ्स, सहायक नर्स मिडवाइफ्स और महिला स्वास्थ्य पर्यवेक्षकों को प्रदान किए गए। राष्ट्रपति ने कहा कि अवसर और नर्सिंग कर्मियों और स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों के अमूल्य योगदान को श्रद्धांजलि है, जो करुणा और संपूर्ण निष्ठा के साथ देश की सेवा करते हैं। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार की स्थापना 1973 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल एक जनसभा में श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कक्षाएं तथा वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टाले।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच भारत ने अपने घरेलू एलपीजी उत्पादन को लगभग 36,000 टन प्रतिदिन से बढ़ाकर 54,000 टन कर दिया है। श्री पुरी ने नई दिल्ली में वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन 2026 को संबोधित करते हुए कहा कि जहां कई देशों को पिछले कुछ महीनों में आसमान छूती कीमतों और ईंधन की कमी का सामना करना पड़ा है, वहीं भारत घरेलू कीमतों को अपेक्षाकृत स्थिर रखने में कामयाब रहा है।
2: किचन में इस्तेमाल होने वाली एलपीजी सिलेंडर गैस का लगभग 60% पहले हॉर्मुज क्षेत्र से आता था। अब हमें इसके लिए नई व्यवस्थाएं करनी पड़ी। संकट से पहले हमारी घरेलू एलपीजी उत्पादन क्षमता लगभग 35,000 या 36,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन थी। हमने अपने घरेलू उत्पादन को 36,000 से बढ़ाकर 54,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन कर दिया है।
0: श्री पुरी ने उद्योग जगत के नेताओं और अपने हितधारकों से एलपीजी से एलएनजी की ओर रुख करने और हरित ऊर्जा की ओर बढ़ने का आग्रह किया। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में समाजवादी पार्टी के सांसद अजेंद्र सिंह लोधी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। भाजपा नेता सत्येंद्र प्रताप की शिकायत के बाद महोबा कोतवाली थाने में मामला दर्ज किया गया। ये विवाद तब शुरू हुआ जब लोधी ने कथित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की उस अपील पर आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसमें उन्होंने लोगों से सोना न खरीदने का आग्रह किया था। इन टिप्पणियों के बाद राज्य में भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। पाकिस्तान ने हाल ही में ईरान और अमेरिका के बीच संघर्ष के दौरान ईरानी सैन्य विमानों को गुप्त रूप से अपने एयरबेस पर ठहरने की अनुमति दी, जबकि वो ईरान तथा अमेरिका के बीच संघर्ष समाप्त करने के लिए पाकिस्तान के मध्यस्थ की भूमिका निभाने का दावा करता है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ ईरानी विमान रावलपिंडी के निकट नूर खान वायुसेना अड्डे पर खड़े किए गए थे। रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने पाकिस्तान की मध्यस्थ की भूमिका की पूरी तरह से पुनः समीक्षा करने की मांग की है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि ईरान ने कुछ यात्री विमानों को पड़ोसी देश अफगानिस्तान भेज दिया था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में वे शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे,

0: और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। इससे पहले उन्होंने 2017 में नीदरलैंड्स की यात्रा की थी। प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड्स के नरेश विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री रॉब जेटन से भी उनकी बातचीत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रविवार को स्वीडन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। वे स्वीडन के प्रधानमंत्री अल्फ क्रिस्टन के साथ बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। यात्रा के चौथे चरण में प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को नॉर्वे पहुंचेंगे। वे तीसरे भारत नॉर्वे शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की ये पहली नॉर्वे यात्रा होगी। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी इटली जाएंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मित्रोला से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ भी उनकी व्यापक बातचीत होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा से यूरोप के साथ भारत की साझेदारी मजबूत होगी। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज चिली गणराज्य के विदेश मंत्री फ्रांसिस्को पेरेस मैकेना और चिली प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने भारत चिली व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA की वार्ता की प्रगति की समीक्षा की। चेन्नई से अबुधाबी जाने वाली इत्तेहाद एयरवेज की उड़ान संख्या EY0343 आज सुबह तकनीकी खराबी और बाएं पंख में आग लगने की घटना के बाद रद्द कर दी गई। लगभग 280 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। चेन्नई हवाई अड्डे ने सोशल मीडिया पोस्ट में यात्रियों से आगे की जानकारी के लिए एयरलाइन से संपर्क करने का अनुरोध किया है। मौसम विभाग ने कल तक गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में भी कल तेज बारिश हो सकती है। बिहार और उत्तराखंड में भी कल 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ आंधी आने की संभावना है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगभग 1.4% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 1048 अंक लुढ़ककर 74,967 पर, जबकि निफ्टी 305 अंक की गिरावट के साथ 23,511 पर था। आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए आयोजित नीट UG परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के कारण रद्द, CBI जांच के आदेश। हिमंता बिस्व शर्मा ने लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। CBI ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच शुरू की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 15 नर्सिंग पेशेवरों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। और IPL क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित दोपहर समाचार बुलेटिन अंग्रेजी और हिंदी में बारी बारी से अभी आपने सुनी। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोपहर के 2:30 हैं और आप इस समय हैं हमारी दिवाकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ। हमारा अगला कार्यक्रम फिल्म संगीत सुनिएगा बस थोड़ी ही देर में।

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर

0: चाहिए आशीर्वाद आयोडाइज्ड नमक।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

आरती मुखर्जी की आवाज़ में मासूम फिल्म का ये गाना था। गुलजार निक्की शब्द रचना थी और धुन थी आर डी बर्मन का। और अगला गाना निकाह फिल्म से हम आपको सुनवा रहे हैं। सलमा आगा की आवाज़ है, हसन कमाल ने गीत लिखा है और धुन बनाई है रवि ने।

आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से फिल्म संगीत का कार्यक्रम अभी आप सुन रहे हैं। लावारिस फिल्म का ये गाना है, किशोर कुमार की आवाज में। प्रकाश मेहरा है गीतकार, संगीतकार हैं कल्याण जी, आनंद जी।

तुम्हारी कसम ऐसे फिल्म का गीत अभी आपने सुना, मुकेश और आशा भोसले की आवाज़ों में। आनंद बख्शी ने गीत लिखा था और धुन बनाई थी राजेश रोशन ने। और श्रोताओं, इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यही संपन्न हुआ।

आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय दोपहर की ठीक 2:55 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में अगला प्रसारण आकाशवाणी के रांची केंद्र से होगा। आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। कृपया कीजिए थोड़ी सी प्रतीक्षा।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द कर दी है। पेपर लीक के आरोपों की जांच अब केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई करेगी। विद्यार्थियों को दोबारा परीक्षा के लिए नया पंजीकरण या अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। परीक्षा की नई तारीख जल्द ही अलग से घोषित की जाएगी। राजधानी रांची में बिजली पानी के गंभीर संकट को लेकर भाजपा ने विरोध प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन में मुख्य रूप से रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ शामिल हुए। उन्होंने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि चिलचिलाती गर्मी में जनता बूंद बूंद पानी और बिजली के लिए त्रस्त है, लेकिन सरकार पूरी तरह संवेदनहीन बनी हुई है।
1: प्रधानमंत्री मोदी जी का जो संकटा हर घर में नल जल जीवन मिशन, उसको फेल करने के लिए सारी ताकत इस सरकार ने लगा दी। मतलब जनता से पानी की दूरी बनी रहे। कहते हैं राजधानी में बिजली सरप्लस है, कहाँ सरप्लस है? 8-8 घंटे लोड शेडिंग है। ग्रामीण इलाकों में तो बिजली रहती नहीं। लाडर पूरी तरह ध्वस्त है, एकदम साफ। ये सरकार पॉलिटिकल टूरिज्म पे विश्वास करती है, जनता से कोई लेना देना नहीं है।
0: राजधानी रांची के बाद दुमका में भी बिजली पानी संकट को लेकर भाजपा ने जनाक्रोश रैली और धरना दिया। पूर्व मंत्री राज पलिवार, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अभयकांत प्रसाद और विधायक देवेंद्र कुंवर ने राज्य सरकार पर हर मोर्चे पर विफल रहने का आरोप लगाया। नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि बुनियादी समस्याओं का जल्द समाधान नहीं हुआ तो उग्र जन आंदोलन

0: कर कामकाज ठप किया जाएगा। उधर लोहरदगा में भी भाजपा ने विधायक शशिभूषण मेहता और जिला अध्यक्ष अजय कुमार पंकज के नेतृत्व में प्रदर्शन किया। नेताओं ने राज्य सरकार पर बुनियादी सुविधाएं देने में विफल रहने का आरोप लगाते हुए आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से आज लोकभवन में राज्य के लोकायुक्त न्यायमूर्ति अमिताभ कुमार गुप्ता ने शिष्टाचार भेंट की। इस मुलाकात के दौरान लोकायुक्त ने राज्यपाल को राज्य की विभिन्न न्यायिक और प्रशासनिक व्यवस्थाओं की प्रगति से अवगत कराया। दोनों के बीच राज्य में पारदर्शिता और भ्रष्टाचार मुक्त शासन सुनिश्चित करने से जुड़े अहम विषयों पर चर्चा हुई। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में 15 नर्सिंग पेशेवरों को वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। उन्हें ये पुरस्कार नर्सिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए गए। ये पुरस्कार पंजीकृत नर्सों, मिडवाइव्स, सहायक नर्स मिडवाइव्स और महिला स्वास्थ्य पर्यवेक्षकों को प्रदान किए गए। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने बिहार आई बैंक ट्रस्ट की समीक्षा करते हुए इसका नाम जल्द झारखंड आई बैंक करने के निर्देश दिए। उन्होंने संस्थान को आयुष्मान भारत योजना से जोड़ने, भूमि विवाद सुलझाने और सीएसआर फंड से आधुनिक सुविधाएं बढ़ाने को कहा, ताकि इसे राज्य का उत्कृष्ट नेत्र चिकित्सा केंद्र बनाया जा सके। गिरिडीह पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिला शक्ति पेट्रोलिंग दस्ते की शुरुआत की है। एसपी डॉ. विमल कुमार ने इस विशेष स्कूटी दस्ते को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने बताया कि यह दस्ता मुख्य रूप से स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटरों के पास गश्त करेगा। किसी भी आपात स्थिति में महिलाएं डायल 112 पर संपर्क कर सकती हैं।
1: महिला शक्ति पेट्रोलिंग की शुरुआत गिरिडीह में की जा रही है और इनका बेसिक जो नेचर रहेगा पेट्रोलिंग, जहाँ भी महिला कॉलेज है, जहाँ पे की कोचिंग सेंटर्स है, उन सभी जगहों पे हम लोग ना नहीं हो, छिड़काने की घटना नहीं हो, हम अपील करेंगे सभी महिलाओं से, पुरुष से भी जो इनकी सहायता लेना चाहते हैं, डायल 112 में भी आप संपर्क करें और हम लोग का जो जिला कंट्रोल नंबर है उसमें भी आप संपर्क करें।
0: रांची के सदर थाना क्षेत्र के कोकर खोरहा टोली से रविवार से लापता 18 महीने की मासूम बच्ची अदिति पांडे का शव बरामद हो गया है। बच्ची का शव गाड़ी गांव इलाके के एक बड़े नाले से मिला है। लापता होने के बाद रांची पुलिस लगातार बच्ची की तलाश में जुटी थी और सुराग देने वाले को 50,000 रुपए इनाम देने की भी घोषणा की गई थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और यह जांच कर रही है कि मामला महज हादसा है या कोई साजिश। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: आकाशवाणी रांची से प्रसारित प्रादेशिक समाचार अभी आपने सुनी। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। और अब लीजिए सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: तो हो जाए सब दंग।
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं हूं विमलेश।
1: और मैं हूं अजीत। नमस्कार श्रोताओं, शुरुआत करते हैं एक खूबसूरत विचार से जिसे हमें भेजा है ग्रामपुत की कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे जी ने। बड़ा खूबसूरत लिखा है।
2: लिखते हैं, मुश्किलों को कुछ यूं हराते हैं, चलो आज थोड़ा मुस्कुराते हैं।
1: वाह, बहुत सुंदर विचार, मुश्किलों को कुछ यूं हराते हैं, चलो आज थोड़ा मुस्कुराते हैं। जी हाँ श्रोताओ, मुस्कान वो रोशनी है जो अंधकार और निराशा से भरे किसी भी हृदय को उजाले से भर सकती है। याद रखिए,
2: आपकी मुस्कान किसी के जीवन का सबसे खूबसूरत उपहार बन सकती है। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
1: तो सबसे पहला संदेश हमें मिला है जेल रोड जालंधर से, रोशन जहां, मन्नत जहां और इशरत जहां का।
2: केंद्रपाड़ा उड़ीसा से देशदीप दास जी का।
1: और डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा पुष्कर लेहान, अजिज्ञासा के साथ विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया।
2: हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, राजेश साबले पाटिल, शेख अल्लाह बख्श।
1: और नजदीक बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़ फजिलका पंजाब से रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा और डॉक्टर मदनलाल वर्मा।
2: हार्दिक आभार आपके संदेशों के लिए और जो आपने प्रश्नों के उत्तर भेजे उनके लिए भी हार्दिक आभार।
1: आप सबका हार्दिक स्वागत है एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए में। साथियों, गर्मी का मौसम है और पूरे भारत में भीषण गर्मी पड़ रही है।
2: हमें आपकी चिंता है और चाहते हैं कि ऐसे मौसम में आप अपना और आपके अपनों का जरूर ख्याल रखें।
1: जी,
2: तो इस सप्ताह हमारी चर्चा का विषय रहेगा कैसे रखें अपना ख्याल इस गर्मी के मौसम में। तो आइए अजीत जी आपसे शुरुआत करते हैं।
1: जी विमलेश जी, तो श्रोताओ सबसे पहली बात, ऐसे मौसम में सबसे पहली सलाह ये दी जाती है कि 12 बजे से 4 बजे तक बाहर ना निकलें।
2: लेकिन अजीत जी, हमारे श्रोता ये जरूर जानना चाहेंगे कि 12 बजे से 4 बजे तक के समय में ऐसा क्या होता है जिसके कारण ये सलाह दी जाती है।
1: विमलेश जी, ऐसे तो गर्मी के मौसम में हमें हर समय अपना ख्याल रखना ही चाहिए, लेकिन ये समय खास हो
2: जी,
1: क्योंकि सुबह से तो गर्मी पड़ती ही है, लेकिन पृथ्वी की परिक्रमा की स्थिति के कारण 12 बजे सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधी पड़ती हैं, जिसके कारण इस समय तापमान अपने चरम पर होता है।
2: जी, और जब तापमान अपने चरम पर होता है तो इस समय लू लगने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है, जिसके कारण उल्टी, चक्कर आना, बेहोशी, मति भ्रम और कभी कभी जान को भी खतरा हो सकता है।
1: लेकिन विमलेश जी, एक बार फिर से मैं उसी प्रश्न पर आता हूँ, क्या पृथ्वी का गर्म होना और 12 बजे सूर्य की किरणों का सीधा पड़ना ही एकमात्र कारण है या इस समय कुछ और विशेष भी होता है?
2: जी, बहुत अच्छा प्रश्न है अजीत जी। इसे हमें ये जानना भी बहुत जरूरी है कि सूर्य की किरणों के सीधे पड़ने का प्रभाव पृथ्वी के धरातल पर क्या पड़ता है,
1: तो इसे जरा विस्तार से बताइए।
2: अजीत जी, गर्मी के मौसम में सुबह से सूर्य की किरणें जब पृथ्वी पर पड़ती हैं तो भूमि गर्म हो जाती है, या दूसरे शब्दों में वो गर्मी को सोख लेती है
1: जी।
2: और 12 बजे सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधी पड़ती हैं, जो बाद में धीरे धीरे तिरछी होने लगती हैं, इसलिए उसका तापमान पृथ्वी पर थोड़ा कम होने लगता है। लेकिन इस दौरान भूमि अपनी गर्मी धीरे धीरे छोड़ती है, जिसके कारण गर्मी और अधिक बढ़ जाती है। इसे थर्मल लैग कहते हैं।
1: क्या कहते हैं?
2: थर्मल लैग।
1: अच्छा, तो शायद यही कारण है कि हमें गर्मी 12 बजे से अधिक 1 से 4 बजे के दौरान महसूस होती है
2: जी।
1: तो क्या हम थर्मल लैग को बोलचाल की भाषा में भभक उठना या भभका कह सकते हैं?
2: जी बिल्कुल कह सकते हैं। उस समय ऐसा लगता है जैसे भूमि से गर्मी निकल रही है, ऊपर से सूर्य का ताप और नीचे से पृथ्वी का ताप, यानी एक तरह से दोहरी मार।
1: जी यही बात है, एक तरह से दोहरी मार, बिल्कुल सही कहा। तो ऐसे समय में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
2: देखिए, कहा जा सकता है कि यदि बहुत जरूरी हो तभी बाहर निकलें।
1: लेकिन विमलेश जी, यदि निकलना ही पड़े तो?
2: यदि निकलना ही पड़े तो सर पर टोपी या कोई कपड़ा जरूर रखें, और हाँ, प्यास लगे या न लगे थोड़ा थोड़ा पानी जरूर पिए। ऐसे में नींबू पानी, नारियल पानी और ORS बहुत लाभकारी होते हैं
1: जी।
2: और हाँ, कोशिश करें जहाँ कहीं छाया मिल जाए वहाँ थोड़ी देर जरूर सुस्ता लें।
1: जी हाँ श्रोताओ, ऐसे समय में बहुत जरूरी ये भी है कि हल्के और ढीले कपड़े पहने।
2: जी।
1: कोशिश करें कि हल्के सूती कपड़े हों और उनका ज्यादा गहरा रंग ना हो।
2: जी।
1: सफेद कपड़ों और हल्के रंगों के कपड़ों की सलाह दी जाती है क्योंकि वे सूर्य की किरणों को परावर्तित करने में सक्षम होते हैं।
2: प्रयास करें कि त्वचा ढकी हुई हो क्योंकि सनबर्न का खतरा भी बना रहता है। और धूप का चश्मा जरूर पहने क्योंकि सूरज की तेज किरणों का असर हमारी आँखों पर भी पड़ सकता है।
1: जी, तो श्रोताओं ये थी हमारी आज की जानकारी जिसके द्वारा हमने बताया कि कैसे रखें अपना ख्याल गर्मी के इस मौसम में। हम तो फिर से कहेंगे कि अपना
2: और अपने अपनों का ख्याल जरूर रखें, खासकर बच्चों और बुजुर्गों का। तो अब सुनिए आज का प्रश्न है,
1: थर्मल लैग किसे कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
2: थर्मल लैग किसे कहते हैं?
1: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल के पते पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
2: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो श्रोताओ अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। शीर्षक है आग बरसाती धूप।
2: इस कार्यक्रम में एक नाटक के द्वारा गर्मी से बचाव के उपायों के बारे में बताया गया है और विशेष रूप से चर्चा की गई है कि गर्मी के मौसम में बच्चे अपना ध्यान किस प्रकार से रखें।
3: आग बरसाती धूप।
4: विद्या, क्या है? आम के बाग में चलते हैं।
5: क्यों?
4: वहाँ बहुत सारे आम हैं।
5: अच्छा, तुमने खुद देखे?
4: हाँ।
5: अच्छा, तो फिर चलते हैं, जल्दी चलो।
4: धीरे से, माँ उठ जाएगी।
5: हाँ हाँ, धीरे से चलो ना।

0: वाह, कितने ढेर सारे आम हैं। अब तो मजा आ जाएगा।
1: हाँ, पर कितनी तेज धूप है और हवा भी गर्म चल रही है।
0: छोड़ो भी, वो रहे आम।
1: हाँ
0: आओ चलो खाते हैं। अरे यहाँ पर तो बहुत सारे आम गिरे हुए हैं। लो विद्या, एक तुम भी खाओ, एक मैं खाता हूँ।
1: आहा, इसकी खुशबू कितनी अच्छी है। वाह, मजा आ गया, कितना मीठा आम है।
0: हाँ पर गर्मी भी कितनी हो रही है।
1: हाँ मोहन, गर्मी तो मुझे भी कितनी लग रही है। देखो ना, कितना पसीना आ रहा है मुझे।
0: चलो नदी में नहा कर आते हैं,
1: फिर तो मजा आ जाएगा और गर्मी भी कम हो जाएगी। आओ जल्दी चले।
2: कितनी तेज धूप है, जैसे आग बरस रही है। आज तो आधा खेत भी नहीं जोत पाया। अरे इन दोनों बच्चों को देखो, कहां भागे जा रहे।
1: मोहन और तेज दौड़ो, देखो मुझे छू सकते हो।
0: कोशिश करता हूँ।
1: अरे मोहन, मोहन क्या हो गया तुझे? अरे अरे तो गिर पड़ा। अरे मोहन, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? मोहन मोहन,
2: मैं पहले कहता था ना कि इन बच्चों को कुछ होकर रहेगा। भला ये भी कोई घर से निकलने का टाइम है? लगता है कुछ गड़बड़ है, चलूं देखो। अब भागना मत मेरे हीरा मोती, मेरे बैलों की जोड़ी, मैं अभी आया। यहीं पेड़ की छांव में रहना। हाँ।
1: अरे मोहन मोहन, क्या हो गया तुझे? तो कुछ बोलता क्यों नहीं?
0: विद्या विद्या,
1: अरे ये तो बेहोश हो गया। मोहन मोहन मोहन, कुछ बोल मोहन।
2: क्या बात है बेटे, क्या बात है?
1: देखो ना हामिद काका, मोहन को क्या हो गया?
2: लगता है इसे लू लग गई है। बेटा चलो जल्दी से उठाकर इसे छांव में ले चलते हैं।
1: इसे डॉक्टर के पास ले चलिए काका।
2: हाँ हाँ, डॉक्टर के पास ही चलते हैं। मैं उठाता हूँ। हाँ ऐसे चलो।
1: हाँ हाँ चलिए चलिए।
2: आ गया डॉक्टर साहब का घर। इसे छांव में खाट पर लिटाते हैं
1: जी।
2: तब तुम जरा डॉक्टर को आवाज दो बेटा।
1: डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब।
3: कौन है भाई, अभी आया?
2: इसका जरा कपड़ा उतार दू। लीजिए, डॉक्टर साहब भी आ गए। आइए आइए डॉक्टर साहब, जल्दी आइए।
3: क्या बात है हामिद भाई, क्या बात है?
2: डॉक्टर साहब, लगता है इसे लू लग गई है।
3: ओहो, अच्छा इसके कपड़े उतार दीजिए हामिद भाई, और इसके बदन पर ठंडा पानी डालिए। ये लीजिए, ये इस लोटे में ठंडा पानी है, तब तक मैं थर्मामीटर लेकर आता हूँ।
2: अच्छा डॉक्टर साहब।
3: और विद्या बेटी, इस पंखे से तुम हवा करती रहो।
1: जी।
3: लो अब ये थर्मामीटर लगा देते हैं, बुखार चेक कर लेते हैं। अरे हामिद, इसकी टांगे जमीन से एक फुट ऊपर उठाकर रखो।
2: हाँ जी,
3: ऐसे। लो अब जरा बुखार देख लेते हैं। हाँ बुखार कम हो गया। भाई अब ठंडा पानी डालने की जरूरत नहीं है
2: जी।
3: इसके शरीर का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस यानी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट तक आ गया है
2: जी।
3: भाई अब घबराने की जरूरत नहीं है।
1: ये लू क्या होती है डॉक्टर साहब?
3: बेटा बहुत तेज गर्म हवा को लू कहते हैं। तेज गर्मी के मौसम में गर्म हवा के प्रभाव से शरीर की ताप नियंत्रण व्यवस्था काम करना बंद कर देती है
1: जी।
3: जिसके कारण शरीर का तापमान अचानक बाहरी तापमान के अनुसार बढ़ने लगता है।
1: इससे क्या होता है?
3: भाई तापमान बढ़ने से शरीर में पानी की कमी हो जाती है और पसीना आना बंद हो जाता है और मरीज बेहोशी की हालत में चला जाता है।
2: डॉक्टर साहब कैसे बच सकते हैं इससे?
3: भाई सावधानी ही असली बचाव है। ज्यादा तेज धूप और गर्मी में बाहर नहीं निकलना चाहिए, और अगर निकलना बहुत जरूरी हो तो छतरी या सर पर कपड़ा रखकर निकलना चाहिए। लगातार पानी वगैरह पीते रहना चाहिए।
2: डॉक्टर साहब, नींबू पानी, गन्ने का रस और कच्चे आम को उबालकर बनाया गया पन्ना भी तो फायदेमंद होता है।
3: हाँ हाँ हामिद भाई, खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूजा वगैरह मौसमी फल भी खूब खाने चाहिए। और साधारण दिनों से पानी 3 गुना ज्यादा पीना चाहिए।
2: जी।
0: और अगर लू लग जाए तो?
2: प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए?
3: भाई, लू लगे व्यक्ति के शरीर के तापमान को जल्दी ही नीचे लाने का प्रयास करना चाहिए। ठंडा पानी या बर्फ आदि से शरीर को पोंछ कर तापमान को 38 डिग्री सेल्सियस तक लाने का प्रयास करना चाहिए।
0: जी।
3: और डॉक्टर की सलाह भी तुरंत लेनी चाहिए।
0: मोहन को होश आ गया डॉक्टर साहब, मोहन को होश आ गया।
3: अभी लेटे रहो मोहन बेटे, अभी तुम्हें आराम की जरूरत है।
2: डॉक्टर साहब की बताई बातें याद रहेंगी कि नहीं?
0: जी।
2: अब तो नहीं घूमोगे कड़ी धूप और गर्मी में?
0: नहीं काका, मुझे सब याद है जो डॉक्टर साहब ने बताया।
3: कोई बात नहीं, चलो एक बात फिर बता देता हूँ। गर्मी के दिन घर में बिताओ, खीरा ककड़ी तरबूज खाओ, नींबू पानी लस्सी पियो, 3 गुना पानी पियो, गन्ने का रस आम का पन्ना गर्मी में मत करो मना, तेज धूप में कभी न खेलो, गर्मी के दिन घर में बिताओ, गर्म हवा से रहे हम दूर, ठंडक में खेले भरपूर।
2: गर्म हवा से रहे हम दूर,
4: ठंडक में खेले भरपूर।
2: ठंडक
4: में खेले भरपूर।
3: आग बरसाती धूप।
5: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आग बरसाती धूप, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम लांस नायक अल्बर्ट एक का।
6: इस कार्यक्रम में भारतीय सेना के वीर योद्धा लांस नायक अल्बर्ट एक का के जीवन और सन 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उनके पराक्रम और शौर्य की रोमांचक गाथा बताई गई है। अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए कृतज्ञ राष्ट्र ने उन्हें मरणोपरांत सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया।
7: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है प्रेरक गाथाओं की श्रृंखला
8: इन्हें हमारा सलाम।
7: तो आइए इस श्रृंखला में सुनते हैं कार्यक्रम परमवीर चक्र विजेता लांस नायक अल्बर्ट एक का। नमस्कार साथियों।
9: साथियों नमस्कार।
7: साथियों, भारत रणबांकुरों और वीरांगनाओं की भूमि है। यहाँ की माटी ने ऐसे ऐसे वीरों को जन्म दिया है जिन पर सिर्फ देश ही नहीं विश्व इतिहास भी हमेशा गौरव का अनुभव करेगा।
9: जी हाँ, इन वीरों ने समरांगन में अपने रक्त से जिस वीरता की गरिमामय गाथा लिखी वो कभी भी भुलाई नहीं जा सकती। सच तो ये है कि इन वीरों की गाथाएं पीढ़ी दर पीढ़ी विश्व के इतिहास पटल पर गुंजायमान रहती हैं।
7: तो आज हम एक ऐसे ही वीर की गाथा प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसका पराक्रम याद किया जाता रहेगा। भारत माता के वह वीर सपूत थे लांस नायक अल्बर्ट एक का।
9: लांस नायक सुनकर ही आप समझ गए होंगे कि अल्बर्ट एक का भारतीय स्थल सेना से संबंध रखते थे।
7: जी हाँ साथियों, लांस नायक एक सैनिक पदवी है। लांस नायक अल्बर्ट एक्का ने सन 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में पूर्वी मोर्चे पर ऐसे असीम शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया जो अतुलनीय है।
9: उनकी बहादुरी ने दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए और दुश्मन को भारी पराजय का सामना करना पड़ा,
7: और इस वीरता के कारण उन्हें सैनिक सम्मान परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया।
9: उनके शौर्य को देख कर एक यूनिट कमांडर ने कहा था, ऐसा लगता था जैसे स्वयं महाकाल शत्रुओं के विध्वंस के लिए प्रकट हो गए हैं।
7: इतना ही नहीं साथियों, शत्रुओं के खेमे में भी उनकी बहादुरी की चर्चा बड़े सम्मान से की जाती थी। तो आइए सुनते हैं अल्बर्ट एक्का की कहानी।
9: साथियों, भारत संघ का एक सुंदर पूर्वी राज्य है झारखंड। यहाँ के पर्वतीय स्थल, सदाबहार जंगल, कलकल करती पहाड़ी नदियाँ और सीधे सादे आदिवासी और उनका कर्णप्रिय आदिवासी संगीत अनायास ही लोगों का मन मोह लेता है।

0: नाम से ही विदित होता है साथियों, जैसा अभी कहा गया झारखंड, झार यानी झाड़ या पेड़। तो झारखंड का अर्थ हुआ ऐसा भूखंड जो वृक्षों या जंगलों से भरा हुआ हो। झारखंड राज्य एक पठार पर बसा है जिसे छोटा नागपुर का पठार कहते हैं।
1: इस राज्य में वन और खनिज संपदाओं की भरमार है।
0: इसी झारखंड राज्य का एक जिला है गुमला, और इस जिले में एक प्रखंड या ब्लॉक है डुमरी। इसी डुमरी ब्लॉक के जरी नामक गांव में 27 दिसंबर 1942 को एक आदिवासी परिवार में अल्बर्ट एक्का का जन्म हुआ था।
1: इनके पिता का नाम जूलियस एक्का था और माँ का नाम मरियम एक्का। माता पिता शुरू से ही पढ़ाई लिखाई के विषय में बहुत जागरूक थे, इसलिए ठीक समय पर उन्होंने बेटे अल्बर्ट को पढ़ाई के लिए स्कूल भेजा।
0: उनकी प्रारंभिक शिक्षा उसी जिले के एक स्कूल में हुई। आदिवासी होने के कारण तीर धनुष चलाने और शिकार खेलने में उनकी विशेष रुचि थी। संभवतः इसी रुचि ने उन्हें आगे चलकर बेहतर सैनिक बनने में उनकी सहायता की।
1: उन दिनों भारत में हॉकी का खेल बहुत ही लोकप्रिय था। अल्बर्ट एक्का हॉकी के भी अच्छे खिलाड़ी थे। अपने स्कूली दिनों में वे खेल के मैदान में घंटों अभ्यास करते थे और पसीना बहाते थे। उनके नेतृत्व में स्कूल ने कई टूर्नामेंट जीते।
0: झारखंड आदिवासी बहुल राज्य है और सेना में जाने का प्रचलन वहां के युवाओं में आम बात है। अल्बर्ट भी आसपास के गांव में जवानों को सेना में भर्ती होते देखते थे। जब वे जवान छुट्टियों में गांव आते थे तो अल्बर्ट अक्सर उनसे बातें करते। उन्हें सेना का जीवन बहुत भाने लगा था, और फिर ऐसा हुआ कि धीरे धीरे उन्होंने सेना में जाने का मन बना लिया।
1: और ठीक अपने जन्मदिन पर 27 दिसंबर 1962 को यानी 20 वर्ष की आयु में वे भारतीय सेना में भर्ती भी हो गए।
0: उन्होंने फौज में बिहार रेजिमेंट से अपना कार्य शुरू किया। बाद में जब 14th गार्ड्स का गठन हुआ तब अल्बर्ट अपने कुछ साथियों के साथ वहां स्थानांतरित कर दिए गए। उन दिनों उनकी यूनिट बिहार रेजिमेंट में थी।
1: अनुशासन, श्रेष्ठ कर्तव्य निर्वहन और निष्ठा के कारण वे धीरे धीरे सिपाही से लांस नायक की पदवी तक पहुंच गए।
0: और फिर आया सन 1971 का साल। भारत के पूर्वी हिस्से में युद्ध के बादल मंडराने लगे। 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ तो बंगाल का एक बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में चला गया था, जिसे पूर्वी पाकिस्तान कहते थे और ये अब बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है।
1: जब यहाँ की स्थितियाँ बिगड़ने लगी तो भारत को मानवीय आधार पर युद्ध में उतरना पड़ा।
0: 3 दिसंबर 1971 का दिन, भारतीय और पाकिस्तानी सेनाओं के बीच भीषण युद्ध शुरू हो चुका था।
1: उनकी यूनिट को गंगा सागर के पाकिस्तानी गढ़ पर कब्जा करने का आदेश दिया गया। इसे जीतना भारत के लिए सामरिक तौर पर बहुत जरूरी था।
0: इसे जीतना इसलिए जरूरी था कि इसके बिना भारतीय फौज ढाका तक नहीं पहुंच सकती थी।
1: दुश्मन अपनी पूरी तैयारी के साथ बैठा था। यहाँ एक जगह है अखौरा, पाकिस्तानी सेना ने यहाँ अपना पूरा जमावड़ा लगा दिया था।
0: सेना दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ी, जिनमें से एक यूनिट की कमान थी लांस नायक अल्बर्ट एक्का के पास।
1: शत्रुओं द्वारा टैंक विरोधी मिसाइलों को तैनात कर दिया गया था ताकि भारतीय सेना की बढ़त को रोका जा सके। सामरिक दृष्टि से पाकिस्तानी सेना बहुत बेहतर स्थिति में थी।
0: और तो और, वहाँ पाकिस्तानी सेना के जवान भी बहुत भारी संख्या में तैनात थे। कुल मिलाकर गंगा सागर गढ़ पर कब्जा करना एक दुस्साहस और मौत को गले लगाने के अलावा कुछ नहीं था।
1: लेकिन लांस नायक अल्बर्ट एक्का के नेतृत्व में यूनिट आगे बढ़ती रही। उन्होंने तय कर लिया कि वे अपना मिशन पूरा करके ही रहेंगे। वे आगे बढ़े ही थे कि दूसरी ओर से गोलियों की भयंकर बौछारें आने लगी।
0: वो जगह माइंस से पटी हुई थी, इस कारण भी बहुत से भारतीय सैनिक हताहत होने लगे। दुश्मनों की मशीन गनें बंकरों से लगातार गोलियां बरसा रही थी। भारतीय सैनिक रेंगते हुए इंच इंच करके आगे बढ़ रहे थे।
1: लांस नायक एल्बर्ट इक्का को समझ में आ गया था कि जब तक पाकिस्तानी मशीन गनों को शांत नहीं किया जाएगा, भारतीय सैनिक बहुत बड़ी संख्या में हताहत होते रहेंगे।
0: और इसके लिए उन्होंने सबसे पहले हथगोलों से पाकिस्तानी बंकरों को निशाना बनाया। इसमें उन्हें थोड़ी सफलता भी मिली, लेकिन यह काफी नहीं था। एक पाकिस्तानी बंकर से अभी भी लगातार गोलियों की बौछार आ रही थी।
1: और अब समय था इतिहास रचने का। अल्बर्ट एक्का लगातार आगे बढ़ते गए। उनके पास हथगोले थे। गोलियों की बौछारों से बचते बचाते वे किसी तरह उस बंकर के पास पहुंच गए और उस बंकर में बने एक छेद से अंदर हथगोला फेंक दिया।
0: जब वहां पर हथगोला फटा और कई पाकिस्तानी सैनिक उसी समय काल कलवित हो गए, लेकिन अभी भी कुछ सैनिक बचे थे जो बंकर के अंदर से लाइट मशीन गनों से गोलियों की लगातार बौछार कर रहे थे।
1: फिर क्या था, लांस नायक एल्बर्ट इक्का अकेले ही उस बंकर में कूद गए
0: और फिर शुरू हुआ आमने सामने का युद्ध। एल्बर्ट इक्का काल बनकर दुश्मनों पर टूट पड़े। अपने बंदूक की संगीन और बट से उन्होंने दुश्मनों पर प्राण घातक हमला किया और उन सैनिकों को भी मौत के घाट उतार दिया। उस बंकर में दुश्मन के सारे सैनिक एल्बर्ट इक्का की बहादुरी के कारण मारे जा चुके थे।
1: लेकिन इस युद्ध में एल्बर्ट इक्का को गंभीर चोटें भी आईं और वे देश के लिए वहीं शहीद हो गए। उनकी आंखें बंद हो चुकी थीं, लेकिन उनकी इसी वीरता ने भारत के लिए ढाका पहुंचना आसान कर दिया और भारत की जीत सुनिश्चित कर दी।
0: इसी युद्ध के परिणाम स्वरूप दुनिया के मानचित्र पर एक नया देश उभरा, जिसे आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं।
1: इस कल्पनातीत शौर्य, पराक्रम और बहादुरी के लिए लांस नायक अल्बर्ट इक्का को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: इतना ही नहीं, बांग्लादेश ने भी इस महापराक्रमी योद्धा को फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर ऑनर से नवाजा।
1: भारत के सैन्य इतिहास में संभवतः लांस नायक अल्बर्ट एक का अकेले वह युद्ध नायक हैं जिन्हें दो राष्ट्रों ने दो अलग अलग सम्मानों से अलंकृत किया। एक और बात जो अल्बर्ट एक्का के बारे में और भी अनूठी है,
0: और वो ये कि वे भारत के आदिवासियों में परम वीर चक्र से सम्मानित किए जाने वाले शायद पहले व्यक्ति हैं।
1: जी हाँ, लांस नायक अल्बर्ट एक्का भारत और बांग्लादेश के सैन्य इतिहास में एक बड़े सितारे बन चुके हैं
0: जिनकी आभा कभी भी धूमिल नहीं होगी। इस समर नायक को हमारा सलाम।
2: परमवीर चक्र विजेता लांस नायक अल्बर्ट एक्का, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम।
3: अकादमिक परामर्श राजेश कुमार निमेश, वाचन अजीत होरो और वंदना अरिमर्दन, तकनीकी निर्देशन बटिलैंग लिंगडो, ध्वनियांकन मयंक कुमार, निर्माण सहयोग सौम्या मलिक, आवरण सज्जा अमित कुमार और कुसुमलता, आलेख अजीत होरो, निर्माण परामर्श वंदना अरिमर्दन और विमलेश चौधरी, ध्वनि संपादन निर्देशन एवं निर्माण तनु गुप्ता,
2: तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत। लांस नायक अल्बर्ट एक्का, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। और अब इसी के साथ हम अपने आज के उमंग प्रसारण को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे। तो तब तक के लिए अजीत
4: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
5: उमंग उमंग उमंग उमंग।
6: ये था NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय दिन के ठीक 3:30 हो रहे हैं और अब प्रस्तुत है उपशास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं पंडित सियाराम तिवारी से गया ठुमरी।

उपशास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंडित सियाराम तिवारी से ठुमरी, और इसी के साथ उपशास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ।

आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 MHz पर। दिन के 3:45 हुए हैं। लोकगीतों का कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

0: कार्यक्रम लोकगीत के साथ आपका दोस्त संजीव हाजिर है। दोस्तों आइए आज इस कार्यक्रम में सुनते हैं कुछ भोजपुरी लोकगीत। कलाकार हैं स्वीटी कुमारी, लीजिए सुनिए इनकी पहली प्रस्तुति।
1: हम के

कार्यक्रम लोकगीत में आप सुन रहे थे आज कुछ भोजपुरी लोकगीत। कलाकार थी स्वीटी कुमारी। इसके साथ ही यह कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम फिर मिलेंगे अपने अगले कार्यक्रम में। सभी श्रोता मित्रों को रेडियो दोस्त संजीव का नमस्कार।

इस समय शाम के ठीक 4 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में अगला प्रसारण आकाशवाणी के रांची केंद्र से होगा। आप सुनेंगे समाचार मुख्यांश। कृपया कीजिए थोड़ी सी प्रतीक्षा।

अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द कर दी है। पेपर लीक के आरोपों की जांच अब केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई करेगी। विद्यार्थियों को दोबारा परीक्षा के लिए नया पंजीकरण या अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। परीक्षा की नई तारीख जल्द ही अलग से घोषित की जाएगी। राजधानी रांची समेत राज्यभर में बिजली पानी संकट को लेकर भाजपा ने आज विरोध प्रदर्शन किया। रांची में आयोजित विरोध प्रदर्शन में मुख्य रूप से रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ शामिल हुए। उन्होंने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि चिलचिलाती गर्मी में जनता बूंद बूंद पानी और बिजली के लिए त्रस्त है, लेकिन सरकार पूरी तरह संवेदनहीन बनी हुई है। भाजपा जिला कमेटी के आह्वान पर पाकुड़ में भी आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया गया। जिला अध्यक्ष सरिता मुर्मू के नेतृत्व में महिला कार्यकर्ताओं ने रेलवे स्टेशन से सिद्धो कान्हो मुर्मू पार्क तक खाली घड़ा लेकर मार्च किया। नेताओं ने हेमंत सरकार पर संवेदनहीनता का आरोप लगाते हुए उपायुक्त के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। हजारीबाग सिविल सर्जन कार्यालय में आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट को लेकर कार्यशाला आयोजित की गई। इसका मुख्य उद्देश्य हर नागरिक का डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड बनाना है, जिससे देश में कहीं भी इलाज आसान हो सके। लोहरदगा जिला समाहरणालय परिसर से उपायुक्त संदीप कुमार मीणा ने जनगणना जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रथ विभिन्न गांवों में जाकर लोगों को जनगणना का महत्व समझाएगा। उपायुक्त ने कहा कि सटीक आंकड़ों से ही विकास योजनाएं बनती हैं, इसलिए सभी नागरिक सही जानकारी देकर सहयोग करें। और राजधानी रांची और आसपास के इलाकों में आज दोपहर मौसम का मिजाज बदला और झमाझम बारिश शुरू हुई। इस बारिश से पिछले कई दिनों से जारी गर्मी से लोगों को राहत मिली है। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

आकाशवाणी रांची से प्रसारित समाचार मुख्यांश अभी आपने सुनी। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। और अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत। स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा नमस्कार।

लता मंगेशकर की आवाज़ में आनंद बख्शी का लिखा और कल्याण जी आनंद जी का संगीतबद्ध किया गीत अभी आपने सुना। फिल्म का नाम था जब जब फूल खिले। और अब अगला गाना कटी पतंग फिल्म से हम आपको सुनवा रहे हैं। किशोर कुमार की आवाज़ है, आनंद बख्शी है गीतकार और संगीतकार हैं आर डी बर्मन।

सनम तेरी कसम इस फिल्म का टाइटल ट्रैक अभी आपने सुना। किशोर कुमार की आवाज़ में गुलशन बावरा ने गीत लिखा था और धुन बनाई थी आर डी बर्मन ने। और अब कार्यक्रम का अगला गाना हम किसी से कम नहीं फिल्म से हम आपको सुनवा रहे हैं। मोहम्मद रफ़ी और सुषमा श्रेष्ठ की आवाज़ें हैं। मजरू हैं गीतकार और संगीतकार हैं आर डी बर्मन।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में जंगली फिल्म का ये गाना आप सुन रहे थे श्रोता। हसरत जयपुरी के बोल थे, संगीत था शंकर जयकिशन का।

ये गीत आप सुन रहे थे श्रोताओं आशा भोंसले की आवाज में। गुलशन बावड़ा ने लिखा था इस गाने को और संगीत था कल्याण जी आनंद जी का। फिल्म थी जंजीर। आकाशवाणी जमशेदपुर से श्रोताओं आप सुन रहे हैं फिल्मी गाने।

तराना फिल्म का ये गाना आप सुन रहे थे श्रोताओं उषा मंगेशकर और साथियों की आवाजों में, बोल थे रविंद्र रावल के और संगीत था राम लक्ष्मण का।

0: जमाने को दिखाना है फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे श्रोताओं शैलेंद्र सिंह की आवाज में। बोल थे मजरूह सुल्तानपुरी के संगीत आरटी बर्मन का था।
1: हेलो डॉक्टर,
2: आकाशवाणी जमशेदपुर का लाइव फोन इन कार्यक्रम।
1: हेलो डॉक्टर,
2: सुनिए हर माह के आखिरी बुधवार को रात 8 बजे से FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर विशेषज्ञों से कीजिए बातें लाइव कार्यक्रम के दौरान और पाइए अपनी समस्याओं से निदान। तो कॉल कीजिए साथियों 0657-2960-445 पर। नंबर एक बार पुनः सुनिए 0657-2960-445 और बातें कीजिए लाइव डॉक्टर के साथ।
1: हेलो डॉक्टर,
0: FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर श्रोता सुन रहे हैं फिल्मी गाने।

लिया। बिन पूछे ये काम

0: बोल थे आनंद बख्शी के, संगीत था शिव हरी का, फिल्म थी चांदनी और आवाजें थी श्रीदेवी और जॉली मुखर्जी की।
1: अरे

किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में सीता और गीता फिल्म का ये गाना आप सुन रहे थे श्रोताओं। गीतकार थे आनंद बख्शी, संगीत था आर डी बर्मन का।

रेमो फर्नांडिस और साथियों की आवाज़ों में महबूब का लिखा ये गाना आपने सुना। म्यूजिक था ए आर रहमान का, फिल्म थी बॉम्बे। और श्रोताओं, इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत का आज का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। इजाजत दीजिए, नमस्कार।

फिल्म संगीत अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी जमशेदपुर है FM 102.4 MHz पर। शाम के 5 बजने ही वाले हैं। कुछ ही क्षणों में समाचार मुख्यांश का प्रसारण होगा रांची केंद्र से।

0: मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम करकेटा। एनटीए ने 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द कर दी है। पेपर लीक के आरोपों की जांच अब सीबीआई करेगी। विद्यार्थियों को दोबारा परीक्षा के लिए नया पंजीकरण या अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। परीक्षा की नई तारीख जल्द ही अलग से घोषित की जाएगी। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए हैं। श्री मरांडी ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान से पंजाब के रास्ते झारखंड में अवैध हथियारों की खेप पहुंच रही है, जो बेहद चिंताजनक है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार और खुफिया तंत्र इस गंभीर खतरे को रोकने में पूरी तरह विफल साबित हो रहे हैं। बिजली, पानी और साफ सफाई जैसे बुनियादी समस्याओं को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने आज जामताड़ा उपायुक्त कार्यालय के समक्ष राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। मौके पर मौजूद धनबाद के भाजपा विधायक राज सिन्हा ने सरकार पर जन समस्याओं की अनदेखी का आरोप लगाया। रामगढ़ के उपायुक्त ऋतुराज ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिला स्तरीय वाटर टास्क फोर्स की बैठक की। इसका उद्देश्य भीषण गर्मी और शहरी क्षेत्रों में निर्बाध जलापूर्ति सुनिश्चित करना है। उपायुक्त ने 2 से 15 मई तक चलाए जा रहे विशेष जलापूर्ति शिविरों की प्रगति की समीक्षा की। जामताड़ा के नारायणपुर थाना क्षेत्र के पबिया गांव के पास आज बालू लदे एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में बाइक सवार एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई, जबकि दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है। और जमशेदपुर में पहाड़ों और नदियों के संरक्षण को लेकर 22 और 23 मई को राष्ट्रीय स्तर की 2 दिवसीय संगोष्ठी आयोजित होगी। जलपुरुष राजेंद्र सिंह और विधायक सरयू राय के संरक्षण में होने वाले इस विमर्श का मुख्य उद्देश्य नदियों और पर्वतों के संवर्धन के लिए सशक्त कानून बनाने की ठोस पहल करना है। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: समाचार मुख्यांश का प्रसारण हुआ आकाशवाणी के रांची केंद्र से। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 5:02 हुए हैं श्रोताओं। प्रस्तुत है युवाओं को संबोधित कार्यक्रम युववाणी।

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं 102.4 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी जमशेदपुर। युवाणी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त प्रतीक झा। आज हम चर्चा करेंगे युवाओं के लिए सरकारी योजना खेलो इंडिया स्कीम के विषय में, सड़क सुरक्षा और ट्रैफिक रूल्स के बारे में बात करेंगे, खेलों में रोजगार के अवसर और समसामयिक गतिविधियां। खेलो इंडिया का गूंजे नारा, हर युवा बने देश का सितारा, मैदानों में सपनों की उड़ान, खेलों से बढ़े भारत की शान, मेहनत साहस और अनुशासन साथ युवा शक्ति बढ़े सफलता के पथ, स्वस्थ तन और उज्जवल भविष्य का द्वार, खेलो इंडिया बनेगा राष्ट्र का आधार। खेलो इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत अक्टूबर 2017 में हुई थी और 31 जनवरी 2018 को पहला खेलो इंडिया स्कूल गेम्स, जो इस पहल के अंतर्गत पहला प्रमुख कार्यक्रम था, का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा नई दिल्ली में किया गया। खेलो इंडिया, जिसे राष्ट्रीय खेल विकास कार्यक्रम के नाम से भी जाना जाता है, का उद्देश्य संगठित प्रतिभा पहचान, संरचित खेल प्रतियोगिताओं और अवसंरचना विकास के माध्यम से जमीनी स्तर पर भारत की खेल संस्कृति को बेहतर बनाना है। आइए हॉकी इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष दिलीप तिर्की से खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स को लेकर राय सुने।
1: खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स, स्पेशल ट्राइबल बच्चों के लिए, ट्राइबल खिलाड़ियों के, काफ़ी इम्पोर्टेंट गेम्स हैं। और पहले स्टेट की टीम बनती थी, मेरे ख्याल से उसमें कितने ट्राइबल बच्चों का सिलेक्शन होता था, नहीं होता था, लेकिन इस गेम में मेरे ख्याल से एक स्टेट पार्टिसिपेट करे तो मेरे ख्याल सभी ट्राइबल्स प्लेयर्स होंगे। और भारत सरकार का एक बहुत अच्छा स्टेप रहा है कि मैं भी मानता हूँ ट्राइबल बच्चों के पास हुनर है, नेचुरल फिटनेस उनके पास रहता है, और बस खेलो इंडिया ट्राइबल गेम से जरूर हमें फ्यूचर में अच्छे प्लेयर्स निकलेंगे।
2: सर, जो नए बच्चे हैं जो हॉकी से जुड़ना चाहते हैं या कभी उनके मन में ये बात आई कि वो देश के लिए खेलना चाहते हैं, तो हॉकी इंडिया कैसे मदद कर सकता है या क्या उनको जानना ज़रूरी है?
1: देखिए, हमारा काम है कि हम नेशनल लेवल में हम काम करें, हम इंडियन टीम सिलेक्शन करके इंडियन टीम बनाएं, क्योंकि गवर्नमेंट का रिकॉग्नाइज बॉडी है, इंटरनेशनल फेडरेशन का रिकॉग्नाइज बॉडी है, ताकि इंटरनेशनल टूर्नामेंट भेज सकें और नेशनल टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करें, सिलेक्शन करें और उनको बेस्ट कोचिंग प्रोग्राम में लाएं। और हाँ, जहाँ पे ज़रूरत पड़ता है तो हम स्टेट गवर्नमेंट से बात करके वहाँ पे उनका कोचिंग सिस्टम, वहाँ पे हम को हम हेल्प करें।
0: खेलो इंडिया भारत सरकार का एक ऐसा कार्यक्रम है जो विभिन्न युवा वर्ग को अपने प्रतिभा का प्रदर्शन करने का अवसर देता है। इसे खेल मंत्री विजय गोयल और राजवर्धन सिंह राठौर के कार्यकाल में शुरू किया गया था। खेलो इंडिया आयोजनों में पारंपरिक भारतीय खेलों को शामिल करने पर भी जोर दिया गया है, ताकि उनकी लोकप्रियता को पुनर्जीवित किया जा सके। खेलो इंडिया स्कीम विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित करवाता है विभिन्न आयु वर्ग के लिए। खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया विंटर गेम्स, खेलो इंडिया पैरा गेम्स दिव्यांगजन के लिए, खेलो इंडिया बीच गेम्स, खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स जनजातियों के लिए विशेषकर। आइए एक संगीत सुनते हैं जिसके बोल हैं, खेलो इंडिया जी भर के खेलो, अपने हुनर को आज दिखला भी दो।

0: अभी आप सुन रहे थे संगीत जिसे आवाज दी है जुबीन गर्ग ने, संगीतकार हरीश और गीतकार शशांका समीर।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
0: खेलो इंडिया सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस भारत भर में मौजूदा सुविधाओं पर निर्मित खेल सुविधाएं हैं, जिनका उद्देश्य प्रतिभाशाली खिलाड़ी को बुनियादी सुविधा प्रदान करना है। युवा मामले एवं खेल मंत्रालय ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों के लिए TOPS टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के तहत ओलंपिक में भाग लेने की क्षमता रखने वाले खिलाड़ियों को विशेष सहायता प्रदान कर रहा है। सरकार तो सहायता प्रदान कर ही रही है, खिलाड़ी भी अपने दैनिक जीवन में लगातार परिश्रम कर रहे हैं। खिलाड़ियों के जीवन में अनुशासन सफलता की नींव है, जो निरंतर प्रशिक्षण, शारीरिक फिटनेस, मानसिक मजबूती और सही खान पान के माध्यम से खेल में प्रदर्शन को सर्वोच्च स्तर तक ले जाता है। जिस प्रकार अनुशासन खिलाड़ियों के जीवन का अभिन्न अंग है, उसी प्रकार सड़क सुरक्षा के लिए भी अनुशासन का पालन अत्यंत आवश्यक है। तो आइए बात करते हैं सड़क सुरक्षा और ट्रैफिक रूल्स। युवा ट्रैफिक रूल्स को जरा भी नजरअंदाज न करें। आज की तेज रफ्तार वाली दुनिया में सबको अपने काम के प्रति जल्दी है, इसमें विशेषकर युवा वर्ग समय बचाने के लिए रेड लाइट जंप कर जाती है। यह करना भारत में न केवल एक गंभीर यातायात अपराध है, बल्कि यह आपकी और दूसरों की जान को भी खतरे में डालता है। मोटर वाहन अधिनियम 2019 के तहत इसके लिए 1000 रुपए जुर्माने का प्रावधान है और ड्राइविंग लाइसेंस को 3 महीने तक की अवधि के लिए निलंबित किया जा सकता है। यदि रेड लाइट जंपिंग के कारण खतरनाक ड्राइविंग धारा 184 का मामला बनता है तो 6 महीने की जेल हो सकती है। आइए रोड सेफ्टी ऑफिसर नागपुर ट्रैफिक पुलिस अतुल अगरकर से सुनते हैं सड़क सुरक्षा का महत्व।
4: जब भी आप सड़क पर चल रहे हो और पेवमेंट या साइडवॉक नहीं हो तो हमेशा रोड की राइट साइड पर वॉक करें। कुछ ध्यान में रखने योग्य बातें हैं। यातायात सुरक्षा केवल पुलिस की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हर नागरिक का कर्तव्य है। सड़क पर धैर्य, अनुशासन, सही लेन का उपयोग, मोबाइल फोन से दूरी और निर्धारित गति सीमा का पालन जीवन बचा सकता है। सरकार का एक बहुत ही नॉवल प्रयास है आई रास्ते। यह बहुत ही स्मार्ट तरीके से ट्रैफिक प्रबंधन जागरूकता अभियान चलाता है और हेलमेट एवं सीट बेल्ट की अनिवार्यता को ये लागू कराता है। स्कूल कॉलेजों में रोड सेफ्टी प्रशिक्षण और दुर्घटना प्रवण क्षेत्रों की पहचान जैसे कार्य लगातार सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। आइए हम सब मिलकर अपने शहर को एक आदर्श ट्रैफिक सुरक्षित शहर बनाएं।
0: अब महानगरों में प्रमुख चौराहों पर AI आधारित कैमरे लगे हैं, जो हर उल्लंघन को रिकॉर्ड करते हैं। फोटो के साथ चालान आपके रजिस्टर्ड पते पर भेज दिया जाता है। यह डिजिटल सर्विलेंस के अंतर्गत सरकार का एक सराहनीय प्रयास है। क्या आप जानते हैं, हर साल हजारों युवा सिर्फ इसलिए अपनी जान गंवा देते हैं

क्योंकि उन्हें हेलमेट बोझ लगता है या सीट बेल्ट कैद। यह लाल बत्ती आपको रोकने के लिए नहीं, सुरक्षित घर पहुंचाने के लिए है। साथियों, ट्रैफिक रूल्स कोई पाबंदी नहीं बल्कि जीवन का बीमा है। याद रखिए, हेलमेट यह सिर का बोझ नहीं, आपके परिवार की उम्मीद है, उम्मीदों का कवच है। सड़क रेसिंग ट्रैक नहीं है, फास्ट होने से बेहतर है सेफ होना। युवा वर्ग तकनीक प्रेमी है, वे नेविगेशन और हैंड्स फ्री गैजेट्स का जिम्मेदारी से उपयोग कर दूसरों के लिए उदाहरण पेश कर सकते हैं। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा का मंत्र तभी सार्थक होगा जब देश का युवा सड़क पर जोश के साथ होश का परिचय देगा। यदि युवा ठान ले कि वे यातायात नियमों का उल्लंघन नहीं करेंगे तो सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़ों में भारी कमी लाई जा सकती है। गोल्डन आवर के अंतर्गत यदि कोई इंसान किसी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की जान बचाकर उसे अस्पताल में एडमिट कराता है तो राहवीर योजना के तहत 25,000 नकद पुरस्कार मिलने का प्रावधान है। 10 उत्कृष्ट राहवीरों को प्रति वर्ष 1,00,000 के विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 और उसके बाद के दिशा निर्देश बचावकर्ताओं को कानूनी उत्पीड़न से बचाते हैं। यदि कोई प्रत्यक्षदर्शी अपनी पहचान उजागर करता है तो पुलिस उससे केवल एक बार और वह भी सम्मानजनक तरीके से पूछताछ कर सकती है। भारत सरकार की सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय लगातार प्रयास कर रही है और सड़क परिवहन प्रणाली की गतिशीलता और दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से सड़क परिवहन को सशक्त कर रही है। IRAD इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस 2020 से भारत में सक्रिय है और असुरक्षित क्षेत्रों की पहचान कर भविष्य में होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने का प्रयास करता है। सशक्त युवा विकसित भारत 2047 तक भारत को एक उन्नत राष्ट्र बनाने का मूल मंत्र है। तो आइए बात करते हैं युवाओं के लिए खेल जगत में रोजगार के अवसर। जब भी हम खेल में रोजगार सोचते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले खिलाड़ी का ही विकल्प आता है, पर आज समय बदल गया है और नए आयाम खुल गए हैं जिसमें युवा अपनी काबिलियत के अनुसार करियर बना सकते हैं। खेल उद्योग युवाओं के लिए अनेक अवसर प्रदान कर रहा है, जैसे स्पोर्ट्स लॉ, कोचिंग, खेल प्रबंधन, फिजियोथेरेपी, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, खेलो इंडिया जैसी सरकारी योजनाओं के तहत सरकारी नौकरी मिलना प्रमुख है। ग्रामीण युवाओं के लिए भी खेल अब तक स्थिर आजीविका बन गया है, जहां लोग कोचिंग या अकादमी के माध्यम से करियर बना सकते हैं। युवा पेशेवर खिलाड़ी के रूप में या स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से डिप्लोमा प्राप्त कर कोच, फिटनेस ट्रेनर या स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग विशेषज्ञ के रूप में करियर बना सकते हैं। खेल प्रबंधन, खेल आयोजनों के प्रबंधन, स्पोर्ट्स मार्केटिंग और क्लब लीग संचालन में करियर के शानदार अवसर हैं। अगर हम बात करें मेडिकल और फिटनेस की तो स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट और खेल मनोवैज्ञानिक बेहतर विकल्प है। आइए मन को प्रेरणा प्रदान करने वाला संगीत सुने जिसके बोल हैं, हर हाल में पाना हमें है लक्ष्य को। गायक सिद्धार्थ स्लाथिया।

0: अभी आपने सुना संगीत हिम्मत के पंख, जिसे आवाज दी है सिद्धार्थ सलाथिया ने, संगीतकार शुभदीप सिंह, गीतकार उबैद अतीक।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

खेल की सबसे खास बात यह है कि आज के दौर में खेल केवल मनोरंजन या फिटनेस का साधन नहीं रह गया है, बल्कि यह एक उभरता हुआ और आकर्षक करियर क्षेत्र बन चुका है। भारत में जहां इंडियन प्रीमियर लीग, ISL, इंडियन सुपर लीग, प्रो कबड्डी लीग का विस्तार हुआ है, युवाओं के लिए मैदान के भीतर और बाहर अवसरों की भरमार है। स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट का क्षेत्र विज्ञान और खेल के प्रति रुचि रखने वाले छात्रों के लिए आदर्श है। अगर आपकी संचार कौशल अच्छी है तो आप स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, कमेंटेटर या डिजिटल कंटेंट क्रिएटर बन सकते हैं। इसके अतिरिक्त स्पोर्ट्स फोटोग्राफी और ब्रॉडकास्टिंग में भी करियर के बेहतरीन मौके हैं। आइए फिल्म चक दे इंडिया 2007 की फिल्म का प्रसिद्ध प्रेरक गीत सुने, जिसके बोल हैं, कुछ करिए नस नस मेरी खोले।

आप सुन रहे थे गीत चक दे इंडिया से, गायक सुखविंदर सिंह, सलीम मर्चेंट और मरियन डी क्रूज, सलीम सुलेमान द्वारा संगीतबद्ध और गीतकार जयदीप साहनी। जैसा कि हम सभी निरीक्षण कर रहे हैं, आधुनिक खेल अब डेटा पर आधारित है। स्पोर्ट्स एनालिस्ट खिलाड़ियों के प्रदर्शन का डेटा विश्लेषण कर रणनीति बनाने में मदद करते हैं। यह तकनीकी कौशल रखने वाले युवाओं के लिए एक नया और उच्च वेतन वाला क्षेत्र है। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद ने कहा था, मुझे आगे बढ़ाना मेरे देश का कर्तव्य नहीं है, अपने देश को आगे बढ़ाना मेरा कर्तव्य है। आइए नजर डालते हैं समसामयिक गतिविधियों पर। इंटरनेशनल नर्स डे 2026, आज 12 मई को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जा रहा है, जो फ्लोरेंस नाइटेंगल की जयंती और विश्व भर में नर्सों के महत्वपूर्ण योगदान को सम्मानित करता है। 2026 का थीम है हमारी नर्से हमारा भविष्य, सशक्त नर्से जीवन बचाती हैं। पूरे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में विकसित भारत जीराम जी अधिनियम का 1 जुलाई 2026 से ऐतिहासिक शुभारंभ होने जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए केंद्र सरकार ने 95,692 करोड़ का बजटीय आवंटन किया है। प्रधानमंत्री ने गुजरात के वडोदरा में सरदार धाम छात्रावास का उद्घाटन किया। श्रीलंका के महिला सांसद कॉकस ने संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष से भेंट की। भारतीय तटरक्षक बल ने गोवा में स्वदेशी एयर कुशन व्हीकल का गर्डर लेइंग समारोह आयोजित किया। खेल जगत में टाटा आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को 3 विकेट से हराया। आईएसएल में ईस्ट बंगाल और पंजाब एफसी में मुकाबला टाई हो गया। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में सेहत मिशन लॉन्च, खेती से स्वास्थ्य तक भारत की नई बड़ी पहल। जमशेदपुर में नीति आयोग के प्रमुख सदस्य वीके सारस्वत ने एनआईटी जमशेदपुर में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर किया संबोधन। मौसम की बात करें तो शहर में गर्म और उमस भरा मौसम है, बादल छाए रहेंगे और कुछ स्थानों में गरज के साथ बारिश हो सकती है। आइए 2001 की फिल्म लगान से प्रोत्साहन परक गीत चले चलो सुने।

आपने सुना चले चलो, संगीत फिल्म लगान से गायक श्रीनिवास व ए आर रहमान, संगीतकार ए आर रहमान, गीतकार जावेद अख्तर। तो आज हमने जाना खेलो इंडिया स्कीम जैसी दूरदर्शी योजना ने न केवल जमीनी स्तर पर प्रतिभाओं को निखारने का कार्य किया है, बल्कि खेल जगत में करियर के नए और विविध अवसर भी पैदा किए हैं। सड़क सुरक्षा और ट्रैफिक नियमों का पालन करना केवल कानूनी अनिवार्यता नहीं, बल्कि एक नागरिक की नैतिक जिम्मेदारी भी है। जब हमारे युवा नए रोजगार के अवसरों से लाभान्वित होंगे और जीवन में अनुशासन अपनाएंगे, तभी भारत वैश्विक पटल पर एक सशक्त और सुरक्षित राष्ट्र के रूप में उभर पाएगा। समसामयिक गतिविधियों को देखते हुए यह स्पष्ट है कि सामाजिक जिम्मेदारी का समन्वय ही एक विकसित भारत का निर्माण करेगा। आज के लिए इतना ही, आपसे आज्ञा चाहूंगा। युववाणी कार्यक्रम सुनते रहें,

ये थी आज की युववाणी FM 102.4 MHz पर। श्रोताओं, आप हैं आकाशवाणी जमशेदपुर के साथ। शाम के ठीक 5:30 हो रहे हैं। आइए अब सुनते हैं श्रमिक बंधुओं का कार्यक्रम कल कारखाने।

0: श्रमिक श्रोताओं, मौसम की बारिश फिजाओं को सुहाना कर देती है और सफलता की बारिश जिंदगी को हसीन बना देती है। वैसे मौसम की बारिश तो समय पर प्रकृति पर निर्भर करती है, लेकिन सफलता की बारिश निर्भर करती है हमारी मेहनत पर। इसलिए अगर जोड़ेंगे मेहनत से वास्ता तो आएगी जीवन में खुशियों की बहार। बहरहाल जुड़ चुका है हमारा और आप सभी श्रमिक श्रोताओं का दोस्ती का वास्ता, जिसके लिए हम हर रोज लेकर हाजिर होते हैं शाम 5:30 बजे FM के 102.4 MHz पर कार्यक्रम कल कारखाने। तहे दिल से स्वागत आप सबका कार्यक्रम में और मंजू का प्यार भरा नमस्कार।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
0: श्रोताओं, गर्मियों के मौसम में अगर थोड़ी देर के लिए भी बिजली गुल हो जाती है तो हमारा गुस्सा सातवें आसमान पर होता है। जाने किन किन चीजों को फिर हम कोसने लग जाते हैं, हमारा कितना सारा काम रुक जाता है। कई इलाकों में तो बिजली बार बार कट होने की वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ जाती है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है? हम इंसान ही तो है, क्योंकि जो चीजें हमें हमारी सुविधा के लिए मिली है उसका हम यूं लापरवाही से इस्तेमाल करने लग जाते हैं कि दिक्कतों से जूझना हमें ही पड़ता है। जरा सोचिए कि पावर कट गर्मियों के मौसम में क्यों ज्यादा होता है, क्योंकि खपत बढ़ जाती है इस मौसम में बिजली की, जिससे बोझ बढ़ने लगता है और बिजली जाती रहती है। आजकल तो हर घर में कई कई पंखे, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, लाइट्स, एसी समेत कई बिजली के उपकरण होते हैं जिनका इस्तेमाल होता ही रहता है। कई घरों, ऑफिसों में तो बिना काम के भी बिजली के उपकरण चलते रहते हैं। तो अगर हम बिजली कटौती से परेशान होते हैं तो ये तो हमारी ही गलतियों का खामियाजा है ना? ऐसे में जरूरत है बिजली की बचत कर ऊर्जा संरक्षण की।

श्रोताओं, बिजली की बढ़ती मांग की वजह से ऊर्जा संरक्षण और भी जरूरी हो गया है। हम अपने घर को इंसुलेट कर अपने हर दिन के व्यवहार में बदलाव लाकर बहुत हद तक बिजली की बचत कर सकते हैं। इसके लिए हम स्मार्ट पावर स्ट्रिप्स यानी वैसे उपकरणों का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे बिजली की कम खपत हो। जरूरत ना होने पर लाइट और पंखे बंद कर दें। बल्ब की जगह ट्यूब लाइट और CFL लगाएं। दिन के वक्त लाइट का इस्तेमाल करें। आपके कमरे में दिन की रोशनी आ सके इसकी व्यवस्था करें। सूरज की रोशनी को अंदर आने दें। नेचुरल लाइट का ही इस्तेमाल करें। गर्मी में बिजली संकट की सबसे बड़ी वजह AC होते हैं। हर बार AC चालू करने पर और तापमान 1 डिग्री और कम करने पर पूरी प्रणाली पर बहुत ज्यादा बिजली का भार पड़ता है। इसलिए एयर कंडीशनर को एक ही टेम्परेचर पर चलाकर घर को ठंडा रखने की कोशिश करें। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम बिजली से चलने वाले उपकरण को रिमोट से ऑफ करते हैं और प्लग ऑन ही रहता है। ऐसे में स्टैंड बाई मोड में भी बिजली की खपत होती है, और पता है आपको, ये कोई मामूली मात्रा नहीं है। शहर में बिजली की खपत का अविश्वसनीय रूप से लगभग 5% हिस्सा इन मामूली सी बर्बादियों की भेंट चढ़ जाता है।

श्रोताओं, हम अच्छी तरह जानते हैं कि बिजली हमारे लिए कितनी जरूरी है। जब बिजली नहीं होती है तो हमारा बुरा हाल होता है। तो क्या बिना बिजली के हम जीवन की कल्पना कर सकते हैं? नहीं ना। आज बिजली की खपत कई गुना बढ़ गई है, जिसकी आपूर्ति मुश्किल हो रही है। ऐसे में इसकी बचत करना हम सबकी जिम्मेदारी है। हमें करना बस इतना है कि बस छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखना है। अपनी आदतों को बदल कर हम बिजली की कटौती को टाल सकते हैं। बिजली संरक्षण के उपायों को अपना कर हम कई यूनिट बिजली की बचत कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमने बिजली की बचत की आदत डाल ली तो बिजली की समस्या से ही हमें निजात मिल जाएगी। और इस समस्या को दूर हम ही कर सकते हैं, क्योंकि बिजली की बर्बादी के लिए जिम्मेदार हम ही हैं। तो इसे बचाकर इस समस्या का समाधान बिल्कुल हम कर सकते हैं। और श्रोताओं, बहरहाल कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं एक बहुत ही प्यारे से गाने के साथ। तो लीजिए सुनिए FM के 102.4 MHz पर ये गाना।

0: मनोज मुंतशिर की शब्द रचना विशाल मिश्रा और तुलसी कुमार के आवाजों में फिल्म बॉर्डर टू से अभी आप सुन रहे थे। संगीत निर्देशन था विशाल मिश्रा का। FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर श्रमिक श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम कल कारखाने। श्रोताओं कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे कुछ और खास जानकारियों के साथ, लेकिन उससे पहले सुनते हैं ये संदेश।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

और बिक्री प्रोत्साहन को समन्वित करता है। पारंपरिक विपणन संचार मॉडल में सामग्री, आवृत्ति, समय, संगठन द्वारा संचार माध्यम, एक बाहरी एजेंट यानी विज्ञापन एजेंसियां, विपणन अनुसंधान फर्म और जनसंपर्क फर्म के सहयोग के साथ है। तथापि सामाजिक मीडिया के विकास ने ग्राहकों के साथ संगठनों की संप्रेषक पद्धति को प्रभावित किया है। सामाजिक मीडिया मार्केटिंग कार्यक्रम आमतौर पर ऐसी सामग्री तैयार करने के प्रयासों पर केंद्रित होते हैं जो ध्यान आकर्षित करे, ऑनलाइन संवाद जनित करे और पाठकों को अपने सामाजिक नेटवर्क के साथ उन्हें साझा करने के लिए प्रोत्साहित करे। संदेश उपयोगकर्ता से उपयोगकर्ता के बीच फैलता है और संभवतः प्रतिध्वनित होता है, चूंकि यह ब्रांड या कंपनी के बजाय एक विश्वसनीय स्रोत से आ रहा है। सामाजिक मीडिया एक ऐसा मंच बन गया है जो आसानी से इंटरनेट तक पहुंच रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए सुलभ है, जो संगठनों को अपने ब्रांड के प्रति जागरूकता बढ़ाने के अवसर देते हुए ग्राहकों के साथ बातचीत की सुविधा प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त सामाजिक मीडिया संगठनों को अपने मार्केटिंग अभियान को कार्यान्वित करने के लिए एक अपेक्षाकृत सस्ते मंच के रूप में कार्य करता है। संगठन अपने ग्राहकों और लक्षित बाजारों से सीधे प्रक्रिया प्राप्त कर सकते हैं। सामाजिक मीडिया मार्केटिंग ग्राहक की मदद के लिए अतिरिक्त माध्यम, ग्राहक और प्रतिस्पर्धा अंतर्दृष्टि पाने का साधन और ऑनलाइन उनकी प्रतिष्ठा के प्रबंधन की विधि उपलब्ध कराते हुए संगठन और व्यक्तियों को लाभ पहुंचाता है। उनकी सफलता को सुनिश्चित करने वाले महत्वपूर्ण कारक हैं अपने ग्राहक के लिए प्रासंगिक होना, उनको वह मूल्य प्रदान करना और उस नींव की मजबूती जिस पर वह निर्मित है। एक मजबूत नींव एक आधार या मंच का कार्य करता है जिस पर संगठन अपनी सूचना को केंद्रीकृत कर सके और लेख तथा प्रेस विज्ञप्तों के प्रकाशन जैसे अन्य सामाजिक मीडिया प्रणालियों के माध्यम से अपने हाल के विकास की ओर ग्राहकों को निर्देशित कर सके। एक मजबूत नींव का लक्ष्य एक ऐसे मंच का निर्माण है जो अपने ग्राहकों को संगठन के साथ संप्रेषक का मौका देते हैं, उन्हें आकर्षित करता है और समर्थ बनाता है। यह मंच इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह संगठन को अपने ग्राहकों पर संगठन के प्रभाव को मापने और उन पर निगरानी रखने का भी अवसर देता है। सभी मंच हर संगठन के प्रयासों के लिए अनुकूल बनाए गए हैं। जहां मंच द्वारा प्रस्तुत महत्वपूर्ण अवसरों और चुनौतियों जैसे कारकों को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक जनसांख्यिकी को लक्षित किया जा रहा है और अपने ग्राहकों से प्राप्त सूचना के आकलन के लिए मैट्रिक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। कुछ मंचों द्वारा प्रस्तुत उपकरण उनके ग्राहकों द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में दूसरों की तुलना अधिक उपयुक्त है। संगठनों द्वारा विपणन के लिए अधिक प्रभावी रूप में सामाजिक मीडिया का उपयोग करने के लिए उन्हें यह समझना और स्वीकार करना होगा कि उभरते मंच वर्तमान मार्केटिंग पहल के प्रतिस्थापन के बजाय उनके समग्र मार्केटिंग साधनों के अनुपूरक और विस्तार हैं। वे लक्ष्य जिनके लिए सामाजिक मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है, ग्राहक सेवा, ग्राहकों की शिकायतों पर सीधी प्रक्रिया, प्रसारण अद्यतनीकरण, घोषणाएं, समाचार, अतिरिक्त जनसंपर्क संसाधन, संगठन पर पर्दे के पीछे एक नज़र और विज्ञापन। संगठनों को सफलता के लिए सामाजिक मीडिया हेतु अपने लक्ष्यों को परिभाषित करने की जरूरत है। मंचों के बीच लक्ष्य विभिन्न हो सकते हैं। YouTube संगठन के पर्दे के पीछे का नज़ारा दिखा सकता है। सफलता कारक लक्ष्यों पर निर्भर करता है। एक लक्ष्य हो सकता है प्रचार के परिणाम स्वरूप नए ग्राहकों की एक विशिष्ट संख्या। एक और लक्ष्य हो सकता है किसी ग्राहक सेवा स्थिति में एक निर्दिष्ट समय के अंदर सभी ग्राहकों की शिकायतों का जवाब। चूंकि सामाजिक मीडिया तेज गति से उभर रहा है और समग्रता अभी हाल ही का है, संगठन अक्सर सामरिक के बजाय स्वभावगत उपस्थिति स्थापित करते हैं। ज़्यादातर मामलों में यह विकास उस हद तक उपयुक्त है जहाँ संगठन को अपने सामाजिक मीडिया के उपयोग और समग्र विपणन योजना में एकीकरण के लिए रणनीति विकसित करने की आवश्यकता है। सामाजिक मीडिया आबादी के क्रांतिक जनसमूह द्वारा अपनाया गया है। इसका मतलब है कि

0: सामाजिक मीडिया में उपस्थिति संगठनों के लिए महत्वपूर्ण है। आमतौर पर बिल्कुल नहीं कि जगह थोड़ी बहुत आधिकारिक उपस्थिति बेहतर है। भले ही एक विशेष रणनीति परिभाषित नहीं की गई हो, रणनीति और योजना के साथ या उनके बगैर अन्य मार्केटिंग पहल के समान ही सामाजिक मीडिया के प्रकाश सफल या असफल हो सकते हैं। अधिकांश संगठनों के पास उनके मार्केटिंग प्रयासों के लिए कर्मचारी मौजूद हैं। जनसंपर्क, विज्ञापन, वेब और मुद्रित संचार ऐसे क्षेत्र हैं जिनके प्रति कार्मिक और संसाधन समर्पित हैं। हालांकि सामाजिक मीडिया मार्केटिंग रणनीतियों में हाल ही एक ऐसा क्षेत्र है, तथापि अधिक सफल संगठनों ने सामाजिक मीडिया के समन्वय स्थापित करने और उनके उपयोग में मदद के लिए समर्पित कर्मचारियों को रखा है। इन व्यक्तियों को संप्रति लोकप्रिय उपकरणों का इस्तेमाल करना होगा, लेकिन जब भी नए साधक आए और विकसित हों, उन नए उभरते साधनों के साथ प्रयोग करने की उन्हें छूट रहेगी। कुछ संगठन ग्राहकों और सामान्य लोगों के मन में ब्रांड को ताज़ा रखने के लिए अपनी मार्केटिंग योजना में सामाजिक मीडिया का सक्रिय रूप से उपयोग करते हैं। एक सामाजिक मीडिया साइट पर संगठन के साथ जुड़ने से संगठन को ऐसे व्यक्तियों के साथ जुड़े रहने का मौका मिलता है जो उनके ग्राहक भी हो सकते हैं या नहीं भी, बजाय इनके कि जब उन्हें अतिरिक्त सूचना की तलाश हो तभी उनके संपर्क उस पर निर्भर हो। सामाजिक मीडिया एक विशाल विज्ञापन मंच है। संगठन सामाजिक मीडिया पर साझा विशिष्ट दिलचस्पियों के आधार पर व्यक्ति को लक्षित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि एक व्यक्ति जॉगिंग के बारे में यूट्यूब वीडियो देखता है, एक जूता कंपनी के विज्ञापन दे सकती है या कॉफ़ी कंपनी ऐसे व्यक्तियों को लक्षित करते हुए विज्ञापन दे सकती है जो सामाजिक मीडिया साइटों पर पोस्ट करते हैं वे थके हैं। सामाजिक मीडिया ने विज्ञापन दाताओं को अत्यंत संकीर्ण रूप से विज्ञापन जाल परिष्कृत करने का मौका दिया है। दूसरे मित्रों को ऑनलाइन छोटे उपहार, मुफ्त ई तोहफे देना एक लोकप्रिय बात हो गई। विज्ञापन दाता अब मुफ्त ई उपहार बना सकते हैं जो उपयोगकर्ता अपने दोस्तों को दे सकते हैं। अंत में उपयोगकर्ता अपने पसंदीदा उत्पाद और संगठनों के मित्र बन जाते हैं। यह उन्हें दुनिया भर में ऐसे लोगों के समूह में डालता है जो इस तरह के उत्पादों का आनंद उठाते हैं। विभिन्न सोशल मीडिया के मंच, मोबाइल पर के ऐप्स तथा अन्य इंटरनेट संबंधित तकनीकी औद्योगिक मार्केटिंग यानी कंपनियों एवं संगठनों द्वारा की जाने वाली मार्केटिंग स्ट्रेटजी का अहम हिस्सा बन चुका है। यह तीव्र एवं इंटरएक्टिव पद्धति सुविधाजनक तो है ही, साथ ही सहभागिता को भी बढ़ावा देती है।
1: सोशल मीडिया मार्केटिंग नवीन प्रयोग, इस विषय पर हमारे साथ जानकारी साझा कर रहे थे राजेश कुमार सिंह। बता दें कि इस जानकारी का पुनः प्रसारण अभी आप सुन रहे थे।

क्या आप सड़क किनारे अपनी छोटी सी दुकान चलाते हैं? क्या आप अपने काम को और बड़ा बनाना चाहते हैं, लेकिन पैसों की कमी आड़े आ रही है? तो अब चिंता छोड़िए, केंद्र सरकार की पीएम स्वनिधि योजना अब और भी बड़े फायदों के साथ 2030 तक बढ़ा दी गई है। ये योजना फल सब्जी बेचने वालों, मोची और चाय वालों जैसे हमारे मेहनती भाइयों बहनों के लिए है। खास बात यहाँ ये है कि इसमें बिना किसी गारंटी के लोन मिलता है। पहली बार 10,000 से 15,000 का लोन, पहला लोन चुकाने पर 25,000 तक का लोन, वहीं 50,000 तक की बड़ी मदद भी मिलती है। अब तो कुछ मामलों में आप 90,000 तक की क्रेडिट लिमिट पा सकते हैं। अब सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि इस साल यानी साल 2026 में सरकार ने लॉन्च किया है स्वनिधि क्रेडिट कार्ड। ये एक रुपए कार्ड है जो सीधे आपके UPI से जुड़ जाएगा। इसकी लिमिट 15,000 से 30,000 रुपए तक होगी, जिससे आप रोजमर्रा का सामान खरीद सकेंगे और डिजिटल पेमेंट पर रिकॉर्ड पॉइंट्स भी पाएंगे।

श्रोताओं, इस योजना के फायदे यहीं खत्म नहीं होते। समय पर किश्त चुकाने पर ब्याज में बड़ी छूट सीधे आपके बैंक खाते में मिलते हैं। डिजिटल पेमेंट करने पर हर महीने कैशबैक भी। अब आप ये सोच रहे हैं कि इस योजना के लिए आप आवेदन कैसे कर सकते हैं, तो ये भी बहुत आसान है। बस अपना आधार कार्ड, बैंक पासबुक और वेंडिंग सर्टिफिकेट लें और पास के किसी सरकारी बैंक या CSC सेंटर जाएं या फिर निगम कार्यालय से संपर्क करें। श्रोताओं, आत्मनिर्भर बनने का ये मौका अपने हाथ से न जाने दें। आज ही PM स्वनिधि से जुड़े और अपने व्यवसाय को ऊंचाइयों पर ले जाएं। और श्रोताओं, इस जानकारी के बाद आइए सुनते हैं कार्यक्रम में एक बहुत ही प्यारा सा गाना। FM के 102.4 MHz पर ये प्यारा सा गीत आप सबके लिए कार्यक्रम कल कारखाने में।

फहीम अब्दुल्ला की आवाज में फिल्म सैयारा का गीत अभी आप सुन रहे थे। गीतकार थे इरशाद कामिल और संगीत निर्देशन था तनिष्क बागची का। और श्रमिक श्रोताओं, इसी गाने के साथ अब वक्त हो चला है कार्यक्रम कल कारखाने के आज के अंक

0: कल कारखाने, ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी जमशेदपुर है FM 102.4 MHz पर। शाम के 6 बजने ही वाले हैं श्रोताओं। कुछ ही क्षणों में हिंदी और अंग्रेजी में समाचार प्रसारित किए जाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में बताया कि ब्रिक्स के सदस्य सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख बैठक में शामिल होंगे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री नीदरलैंड्स के नरेश विलेम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से भी मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी।
2: संयुक्त अरब अमीरात दौरे के दौरान भी ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत होगी। जिस प्रकार का हमारी उनसे साझेदारी चल रही है, कैसे इसको और व्यापक किया जाए ताकि हम अपने जो ऊर्जा सुरक्षा हमारी है उसको हम मजबूत कर सके। इसके अलावा जो 4 अन्य देश हैं, नॉर्डिक समिट होने वाला है, नॉर्वे की यात्रा है, स्वीडन की यात्रा है, इटली की यात्रा है, नेदरलैंड्स की यात्रा है, यहाँ पर भी ये देश में से नवाचार के बहुत बड़ा केंद्र है। इनोवेशन इकोसिस्टम में भारत में बहुत काम हो रहा है और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में ये लोग और ग्रीन ट्रांजिशन में काफी आगे हैं। तो इन सभी मुद्दे पर हमारी बातचीत होगी और वो सब साझेदारी जो विकसित भारत की तरफ हमको ले आता है उसे कैसे मजबूत किया जाएगा।
1: भारत और नेपाल संबंधों पर श्री जायसवाल ने कहा कि दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंध हैं। श्री जायसवाल ने कहा कि ये भारत और नेपाल की अटूट मित्रता तथा पारंपरिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि दोनों देश साझेदारी को सुदृढ़ करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार साइबर सुरक्षित भारत के निर्माण की दिशा में अथक प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने में अवैध खातों की समस्या बड़ी चुनौती बनी हुई है। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने आज रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के साथ एक समझौता किया है। इसका उद्देश्य बैंकिंग और डिजिटल भुगतान प्रणाली में साइबर आधारित वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने और अवैध खातों को कम करने में सहयोग को मजबूत करना है। सरकार ने कहा है कि नीट यूजी पेपर लीक मामले में शामिल लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा ताकि विद्यार्थियों के भविष्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। नीट परीक्षा रद्द करने के संबंध में एक सम्मेलन में राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी। उन्होंने कहा कि परीक्षा दोबारा आयोजित की जाएगी जो निष्पक्ष तरीके से होगी और इसके लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। इस बीच सरकार ने पेपर लीक के आरोपों की पूरी जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI को सौंप दी है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से सरकार मातृभाषा, भारतीय ज्ञान परंपराओं और AI संचालित शिक्षा पर आधारित अनुसंधान और नवाचार को निरंतर बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल साउथ के देश विश्वास, समाधान और नेतृत्व की अपेक्षाओं के साथ भारत की ओर देख रहे हैं। भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के स्थापना दिवस पर उन्होंने कहा कि यह संगठन भारतीय परिप्रेक्ष्य में सामाजिक विज्ञान अनुसंधान को नई दिशा देने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर के न्यायालयों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। इसके लिए सरकार से 40 से 50 हजार करोड़ रुपए का आवंटन सुनिश्चित करने को कहा गया है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रोड की हत्या की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने अपने हाथ में ले ली है। राज्य पुलिस की सिफारिश के बाद ये जांच केंद्रीय एजेंसी को सौंपी गई है। सूत्रों के अनुसार मामले की जांच के लिए पुलिस महानिदेशक पंकज सिंह की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया गया है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। हैदराबाद अंक तालिका में दूसरे और गुजरात तीसरे नंबर पर है। आज के मैच का विजेता तालिका में शीर्ष पर पहुंच जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: प्रिय जिलावासियों, जोहार। मैं नीतीश कुमार सिंह, उपायुक्त सरायकेला खरसावां, समस्त जिलेवासियों से अनुरोध करता हूं कि वर्तमान में चल रही भारत की जनगणना 2027 के अंतर्गत अब आप स्वगणना सेल्फ इनुमरेशन के माध्यम से अपनी जानकारी स्वयं दर्ज कर सकते हैं। आपके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर ही भविष्य में स्कूल, अस्पताल, सड़कें और सरकारी योजनाओं का लाभ आपके क्षेत्र तक पहुंचाया जाएगा। आप अपने मोबाइल से sc.census.gov.in पोर्टल पर अपनी और अपने परिवार की जानकारी स्वयं भरें। यह पोर्टल झारखंड में 15 मई 2026 तक स्वगणना हेतु खुली रहेगी। आपकी गोपनीयता हमारी प्राथमिकता है। हमारे जिले के सुनहरे भविष्य और सटीक योजना निर्माण के लिए हमने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। अब आपकी बारी। धन्यवाद।
1: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम झारखंड के लोकगीत, और इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं मुंडारी लोकगीत। कलाकार हैं भोला शंकर सामद। लीजिए, सुनिए उनकी अगली।

गणना 2027 के अंतर्गत अब आप स्वगणना सेल्फ इनुमरेशन के माध्यम से अपनी जानकारी स्वयं दर्ज कर सकते हैं। आपके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर ही भविष्य में स्कूल, अस्पताल, सड़कें और सरकारी योजनाओं का लाभ आपके क्षेत्र तक पहुंचाया जाएगा। आप अपने मोबाइल से sc.census.gov.in पोर्टल पर अपनी और अपने परिवार की जानकारी स्वयं भरें। यह पोर्टल झारखंड में 15 मई 2026 तक स्वगणना हेतु खुली रहेगी। आपकी गोपनीयता हमारी प्राथमिकता है। हमारे जिले के सुनहरे भविष्य और सटीक योजना निर्माण के लिए

0: इसके साथ ही कार्यक्रम झारखंड के लोकगीत अब यहीं संपन्न होता है। हम फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में। सभी श्रोता मित्रों को रेडियो दोस्त संजीव का जोहार।
1: झारखंड के लोकगीत, ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, FM 102.4 MHz पर। शाम के 6:20 होने ही वाले हैं श्रोताओं। कुछ ही क्षणों में संस्कृत में समाचार प्रसारित किए जाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका वन्दना कश्यपः। आदौ मुख्य वार्ताः। राष्ट्रिय परीक्षा संस्थया अस्मिन् मासस्य तृतीये दिनांके आयोजिता नीट परीक्षा निरस्ता भविष्यतीति निर्णयः गृहीतः। भारतीय जनता दलस्य वरिष्ठ नेता डॉक्टर हिमंत बिस्वा सरमा अनवरतम द्वितीयवारं असम राज्यस्य मुख्यमंत्रित्वेन शपथं गृहीतवान्। अस्मिन् मासे 14-15 दिनांकयोः ब्रिक्स विदेश मंत्रिणा सम्मेलनस्य आतिथ्यं भारतं करिष्यति। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः राष्ट्रपति भवने आयोजिते कार्यक्रमे 15 परिचर्या वृत्तिकर्तृभ्यः राष्ट्रिय फ्लोरेंस नाइटिंगल पुरस्कारान् प्रदत्तवती। अपि च इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट स्पर्धा मालिकायां अद्य सायंकाले अहमदाबाद नगरे गुजरात टाइटंस अथ च सनराइजर्स हैदराबाद इत्यनयोः दलयोः मध्ये स्पर्धा भविष्यति। अथ वार्ताः विस्तरेण। राष्ट्रिय परीक्षा संस्थया अस्मिन् मासस्य तृतीये दिनांके आयोजिता नीट परीक्षा निरस्ता भविष्यतीति निर्णयः गृहीतः। सामाजिक माध्यमेषु प्रकाशिते सन्देशे संस्थया सूचितं यत् छात्रहितं राष्ट्रिय परीक्षा प्रणाल्याः विश्वसनीयता च रक्षितं एषः निर्णयः स्वीकृतः। संस्थया स्पष्टीकृतं यत् प्रश्नपत्र सम्बद्धानां आक्षेपाणां विस्तृत अन्वेषणार्थम् एषः विषयः केन्द्रीय अन्वेषण अभिकरणाय प्रेषितः। एतदर्थं संस्था पूर्ण सहयोगं प्रदास्यति तथा अन्वेषणाय आवश्यकानि साहित्यानि अभिलेखानि साहाय्यं च उपलब्धं करिष्यति। केन्द्रीय संस्थाभिः आरक्षकबलैः च सह समन्वयनान्तरं प्राप्त सूचनानां आधारेण एषः निर्णयः कृतः। भारतीय जनता दलस्य वरिष्ठ नेता डॉ हिमंत बिस्वा सरमा अनवरतं द्वितीयवारं असम राज्यस्य मुख्यमंत्रित्वेन शपथं गृहीतवान्। गुवाहाटी नगरस्य खानापाड़ा स्थिते पशु चिकित्सा महाविद्यालयस्य प्रांगणे आयोजिते समारोहे राज्यपालः लक्ष्मण प्रसाद आचार्यः तस्मै पदस्य गोपनीयतायाः च शपथं प्रादापयत्।
1: মই শ্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ঈশ্বৰৰ নামত শপথ লওঁ যে বিধিৰ দ্বাৰা স্থাপিত ভাৰতৰ সংবিধানৰ প্ৰতি মই প্ৰকৃত বিশ্বাস আৰু আনুগত্য পোষণ কৰিম।
0: ডক্টৰ শর্মা মহোদয়েন সহ অন্যে চত্বৰহ অপি মন্ত্ৰীমণ্ডলহ মন্ত্ৰিত্বেন শপথম স্বীকৃতৱন্তহ। তেষু ভাজপা দলস্য পক্ষতঃ রামেশ্বর তেলী अजंता नियोग च असम गण परिषद पक्षतः अतुल बोरा तथा बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट पक्षतः चरण बोरो च सम्मिलिताः सन्ति। अस्मिन् समारोहे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाहः रक्षा मंत्री राजनाथ सिंहः अनेके केन्द्रीय मंत्रिणः तथा एनडीए शासित राज्यानां मुख्यमंत्रिणः अपि उपस्थिता आसन्। अनेन सह डॉ शर्मा असम राज्यस्य प्रथमः कांग्रेस रहितः नेता अभवत् यः अनवरतं द्वितीयवारं मुख्यमंत्री पदं अलंकृतवान्। अस्मिन् मासे 14-15 दिनांकयोः ब्रिक्स विदेश मंत्रिणां सम्मेलनस्य आतिथ्यं भारतं करिष्यति। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकरः अस्य सम्मेलनस्य अध्यक्षतां करिष्यति। अद्य नवदिल्ल्यां प्रसार माध्यमान् संबोधयन् विदेश मन्त्रालयस्य प्रवक्ता रणधीर जायसवालः अवदत् यत् अस्मिन् सम्मेलने ब्रिक्स सदस्य राष्ट्राणां सहभागी राष्ट्राणां च विदेश मन्त्रिणः प्रतिनिधिमण्डल प्रमुखाः च उपस्थिताः भविष्यन्ति। सः अपि उक्तवान् यत् ते प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना सह अपि मेलनं करिष्यति। श्री जायसवालः अवदत् यत् अस्मिन् सम्मेलने ब्रिक्स सदस्य राष्ट्राणां विदेश मन्त्रिणः परस्पर हितस्य वैश्विक क्षेत्रीय विषयेषु स्वविचाराणां आदान प्रदानं करिष्यन्ति।
2: 14 और 15 तारीख को ब्रिक्स विदेश मंत्री की बैठक हो रही है जिसकी अध्यक्षता हम लोग कर रहे हैं। जहां तक देशों का आपने जिक्र किया उनकी तरफ से कौन आएगा ये तो खैर उनको तय करना है, लेकिन जैसे जैसे लोग आएंगे आपको पता चल जाए कौन उनके नेतृत्व कर रहा है कौन लोग उसमें भाग ले रहे हैं।
0: अद्य अन्ताराष्ट्रिय परिचारिका दिवसः आचर्यते। अयं दिवसः आधुनिक परिचारिका व्यवस्थायाः संस्थापिकायाः फ्लोरेन्स नाइटिंगल इत्यस्याः जन्मवार्षिक्याः उपलक्ष्ये प्रतिवर्षम् आचर्यते। रोगी परिचर्यायां सामुदायिक स्वास्थ्ये आर्थिक विकासे च परिचारिकाणां महत्वपूर्णां भूमिकां स्वीकृत्य अयं दिवसः आचर्यते। अस्मिन् वर्षे अन्ताराष्ट्रिय परिचारिका दिवसस्य विषयः अस्माकं परिचारिकाः अस्माकं भविष्यम् इति। सशक्ताः परिचारिकाः जीवनानि रक्षन्ति इति उपविषयः अपि निर्धारितः अस्ति। एतत् वैश्विकस्तरे परिचर्या व्यवसायिकानां कृते उत्तमसहयोगस्य संरक्षणस्य संसाधनानां च आवश्यकतां प्रकाशयति। अस्मिन् अवसरे राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः राष्ट्रपतिभवने आयोजिते कार्यक्रमे पञ्चदशभ्यः परिचर्या वृत्तिकर्तृभ्यः राष्ट्रिय फ्लोरेन्स नाइटिंगेल पुरस्कारान् प्रदत्तवती। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पश्चिम बंगाल राज्यस्य नूतन निर्वाचित मुख्यमन्त्रिणः शुभेन्दु अधिकारिणः नेतृत्वे प्रथम मन्त्रिमण्डल गोष्ठ्याः निर्णयानां भूरि प्रशंसां कृतवान्। सामाजिक माध्यमेन प्रधानमन्त्री प्रोक्तवान् यत् पश्चिम बंगाल राज्यस्य जनानां कल्याणमेव सर्वोपरि प्राथमिकता वर्तते। श्रीमोदी हर्षं प्रकटितवान् यत् अधुना राज्यस्य नागरिकाः विश्वस्य बृहत्तम स्वास्थ्य योजनायाः आयुष्मान भारत इत्यस्य लाभं प्राप्तुं शक्ष्यन्ति, या उच्चस्तरीय सुलभ चिकित्सा संविध्य सुनिश्चितोति। प्रधानमन्त्री सबलं प्रोक्तवान् यत् एषः द्विचक्रीय सर्वकारः राज्ये प्रमुखः केन्द्रीय योजनानां निर्बाध वितरणं सुदृढीकरिष्यन्ति। उल्लेखनीयं वर्तते यत् ह्यः जातायां प्रथम मन्त्रिमण्डल गोष्ठ्यां बांग्लादेश स्मीनः कंटक तार वेष्टनार्थं पञ्चचत्वारिंशत् दिनाभ्यन्तरे सीमा सुरक्षा बलाय भू हस्तांतरणस्य ऐतिहासिक निर्णयः अपि स्वीकृतः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी शुक्रवासरात् आरभ्य संयुक्त अरब अमीरात नीदरलैंड्स स्वीडन नॉर्वे इटली पञ्चदेशानां यात्रायां भविष्यति। प्रधानमन्त्री श्रीमोदी शुक्रवासरे संयुक्त अरब अमीरात देशस्य राष्ट्रपतिना शेख मोहम्मद बिन जायद अल नह्यान इत्यनेन सह मेलनं करिष्यति। उभौ नेतारौ द्विपाक्षिक विषयेषु विशेषतः ऊर्जा सहकारे परस्पर हितानां क्षेत्रीय अन्ताराष्ट्रिय विषयेषु च विचार विनिमयं करिष्यतः। गुजरात राज्ये जनगणनायाः प्रथमः चरणः जून मासस्य प्रथम दिनांकात् आरभ्यते। जून गुजरातस्य गांधीनगरे वार्ताहरान् संबोधयन् जनगणना परिचालन निर्देशकः सुजल जे मायात्रा इत्येषः अवदत् यत् राज्ये जनगणना परिचालन निदेशालय जनगणना 27,000,000 कृते सज्जतां करोति। प्रथमवारं भारत सर्वकारेण आरब्धस्य सर्व स्वयं गणना पोर्टल इत्यस्य माध्यमेन जनगणनायां भागं ग्रहीतुं नागरिकेभ्यः अवसराः प्रदीयन्ते। मई मासस्य 17 दिनांकात् 31 दिनांक पर्यन्तं जनाः अस्मिन् पोर्टले स्वीयां स्वयं गणनां पूरयितुं शक्नुवन्ति। अस्य उपक्रमस्य अन्तर्गतं नागरिकाः स्वेच्छया स्वगृहाणां उपलब्ध सैविध्यानां सम्पत्तीनाम् अन्य विवरणानां च सूचनाः सरलतया सुरक्षितरूपेण सरलरीत्या च आन्लैन् इति आभासीय माध्यमेन पूरयितुं शक्नुवन्ति। क्रिकेट प्रीमियर लीग क्रिकेट स्पर्धा मालिकायाम् अद्य सायंकाले अहमदाबाद नगरे गुजरात टाइटन्स अथ च सनराइजर्स हैदराबाद इत्यनयोः दलयोः मध्ये स्पर्धा भविष्यति। एषा क्रीडा सायं 7:30 आरप्स्यते इति वार्ताः।
3: संस्कृत में समाचार अभी आप सुन रहे थे। प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हुआ। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, FM 102.4 MHz पर। कृषि जगत, ये कार्यक्रम श्रोताओं आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में।
4: प्रिय जिलावासियों जोहार, मैं नीतीश कुमार सिंह, उपायुक्त सरायकेला खरसावां, समस्त जिलेवासियों से अनुरोध करता हूँ कि वर्तमान में चल रही भारत की जनगणना 2027 के अंतर्गत अब आप स्वगणना सेल्फ इनुमरेशन के माध्यम से अपनी जानकारी स्वयं दर्ज कर सकते हैं। आपके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर ही भविष्य में स्कूल, अस्पताल, सड़कें और सरकारी योजनाओं का लाभ आपके क्षेत्र तक पहुंचाया जाएगा। आप अपने मोबाइल से sc.census.gov.in पोर्टल पर अपनी और अपने परिवार की जानकारी स्वयं भरें। यह पोर्टल झारखंड में 15 मई 2026 तक स्वगणना हेतु खुली रहेगी। आपकी गोपनीयता हमारी प्राथमिकता है। हमारे जिले के सुनहरे भविष्य और सटीक योजना निर्माण के लिए हमने अपनी जिम्मेदारी निभाई है, अब आपकी बारी। धन्यवाद।
3: आकाशवाणी जमशेदपुर से प्रस्तुत है किसान भाई बहनों का कार्यक्रम कृषि जगत।

कार्यक्रम कृषि जगत के सभी श्रोता मित्रों को रेडियो दोस्त संजीव का जोहार। मित्रों, हम उपस्थित हैं आप सबों के लिए लेकर आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम। रोज की ही भांति आज भी हम अपने कार्यक्रम में संजो कर लाए हैं ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम।

आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं चर्चा से। किसान भाइयों, झारखंड सरकार ने किसानों को सशक्त बनाने, सिंचाई सुविधा बढ़ाने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चला रखी हैं। इनमें मुख्य रूप से झारखंड कृषि ऋण माफी योजना, झारखंड किसान फसल राहत योजना और किसान समृद्धि योजना, इसके साथ 90% सब्सिडी पर सोलर पंप देने की योजनाएं भी इनमें शामिल हैं। किसान भाइयों, आपको बता दूं कि झारखंड सरकार के 2026-27 के बजट में कृषि के लिए 4,884 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान रखा गया है। इसके साथ ही महिला किसानों के लिए महिला किसान खुशहाली योजना की घोषणा भी अलग से की गई है। किसान भाइयों, आइए कुछ योजनाओं के बारे में विस्तार से जानते हैं। पहला है झारखंड राज्य फसल राहत योजना। ये योजना प्राकृतिक आपदाओं से फसल खराब होने पर छोटे और भूमिहीन किसानों को राहत देने के लिए लाया गया है। दूसरा है किसान समृद्धि योजना। ये योजना कृषि में सिंचाई के लिए 90% सब्सिडी पर सोलर पंप प्रदान करने की योजना है। इसका लाभ आप भी ले सकते हैं। तीसरा है झारखंड कृषि माफी ऋण योजना। इस योजना के तहत पात्र किसानों के कृषि ऋण माफ किए जा सकेंगे, ताकि वे ऋण के बोझ तले दबकर आत्महत्या जैसे कुत्सित कार्य न करें। चौथा है महिला किसान खुशहाली योजना। इस योजना के तहत राज्य की महिला किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई तरह के प्रयास किए जाने का प्रावधान है। तो किसान भाइयों, आप भी इन सारी किसान कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं और राज्य का एक समृद्ध किसान बन सकते हैं। और अब कुछ बातें अनाज भंडारण में ध्यान देने योग्य बातें की। किसान भाइयों, अनाज भंडारण करते समय इस बात का ध्यान रखें कि अनाज में 10-12% नमी अनिवार्य रूप से मौजूद हो। अनाज को अच्छी तरह सुखाना सुनिश्चित करें और भंडारण के स्थान को हमेशा साफ सुथरा रखें। इसके लिए अनाज भंडारण का स्थान हवादार रखें और भंडारण के साथ नीम की पत्तियां कीटनाशक के रूप में व्यवहार करना आप सुनिश्चित करें। भंडारण करते समय हमेशा अनाज की बोरियां को जमीन से ऊपर और दीवारों से दूर रखें, साथ ही नियमित रूप से निरीक्षण करते रहें। इन सारी बातों का ध्यान रखकर आप लंबे समय तक भंडारित अनाज की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। किसान भाइयों, भंडारण के पूर्व हमेशा अनाज को धूप में 3-4 दिनों तक सुखाना चाहिए। भंडारण के समय अनाज की बोरियों को एक दूसरे से कम 75 सेंटीमीटर की दूरी पर अलग अलग रखें। तो इन सारी बातों का ध्यान रखकर आप अपने अनाज का सफल भंडारण कर सकते हैं और उसे लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। और इस चर्चा के बाद आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं एक मैथिली लोकगीत शारदा सिन्हा से। लीजिए सुनिए उनकी गाई ये मधुर मैथिली गीत।

0: शारदा सिन्हा से आप सुन रहे थे मैथिली गीत, और कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: प्रिय जिलावासियों जोहार, मैं नीतीश कुमार सिंह, उपायुक्त सरायकेला खरसावां, समस्त जिलेवासियों से अनुरोध करता हूँ कि वर्तमान में चल रही भारत की जनगणना 2027 के अंतर्गत अब आप स्वगणना सेल्फ इनुमरेशन के माध्यम से अपनी जानकारी स्वयं दर्ज कर सकते हैं। आपके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर ही भविष्य में स्कूल, अस्पताल, सड़कें और सरकारी योजनाओं का लाभ आपके क्षेत्र तक पहुंचाया जाएगा। आप अपने मोबाइल से sc.census.gov.in पोर्टल पर अपनी और अपने परिवार की जानकारी स्वयं भरें। यह पोर्टल झारखंड में 15 मई 2026 तक स्वगणना हेतु खुली रहेगी। आपकी गोपनीयता हमारी प्राथमिकता है। हमारे जिले के सुनहरे भविष्य और सटीक योजना निर्माण के लिए हमने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। अब आपकी बारी। धन्यवाद।
0: और अब आइए सुनते हैं ये एक भेंट वार्ता। विषय है, इस समय नया बाग कैसे लगाएं। इस विषय में जानकारी देने के लिए हमारे बीच हैं डॉक्टर अंजलि मिश्रा। आइए इनसे बातें करते हैं। किसान भाइयों, कृषि विज्ञान केंद्र सरायकेला गम्हरिया होम साइंटिस्ट श्रीमती अंजलि मिश्रा जी, आज हम इनसे जानेंगे कि फलों का नया बाग हमारे किसान भाई कैसे लगाएं और किन किन बातों का वो ख्याल रखें। तो सबसे पहले
2: धन्यवाद, नमस्कार।
0: मिश्रा जी, आप खुद बताएं कि इस समय जो फलों का नया बाग लगेगा उसमें किन किन बातों का ध्यान रखा जाएगा और किस तरह हमारे किसान भाई नए बाग लगा सकते हैं।
2: जी हाँ, अभी जो है फलों का नया बाग कैसे लगाना है।
0: जी,
2: हम जान रहे हैं कि हमारे किसान भाई जनरल खेती करके, धान चावल ये सब करके बहुत उन्नत नहीं हो पा रहे हैं।
0: बिल्कुल।
2: तो इनको उन्नत करने के लिए, किसानों को उन्नत करने के लिए और प्लस स्वास्थ्य की दृष्टि से भी
0: जी,
2: हमें क्या करना है, इनका इनकम जनरेशन जब होगा तभी किसान हमारे खुशहाल होंगे।
0: बिल्कुल।
2: तो इसके इनकम को ज्यादा से ज्यादा कैसे बढ़ाया जाए
0: जी,
2: इसके लिए किसानों को नया बाग, फलों का नया बाग लगाने की

0: एक एकड़ लगाएंगे तो लगभग 100 112 पौधे इनके लग
1: लग
0: जाएंगे।
1: जाएंगे। और खेतों की मिट्टी इसके लिए कैसी हो और वो कैसे ज्यादा फल देने वाली मिट्टी का
0: हाँ
1: चयन
0: इस
1: करेंगे किसान
0: हाँ
1: भाई?
0: जी हाँ, इसके लिए जरूर ये है कि आप जो है इसको टाड़ जमीन पे लगा सकते हैं,
1: बिल्कुल
0: है ना,
1: हाँ
0: और उसकी मिट्टी जो है दोमट हो और बलवाई हो, मतलब कि जिसमें पानी लॉगिंग ना हो, पानी जहाँ जम
1: जल
0: जाएगा
1: जमाव
0: तो
1: ना हो,
0: पौधे के सड़न की संभावना ज्यादा हो
1: ज्यादा हो
0: जाती है
1: जाती है,
0: और फिर
1: बिल्कुल
0: बाग लगने में बहुत मुश्किल होता है।
1: जी
0: तो
1: जी
0: ये हमें ध्यान देना है कि पानी का निकासी उससे अच्छे से हो जाए,
1: जी जी
0: तो
1: जी
0: इस टाइप का जमीन हमें ऊंचे जमीन पे करना है।
1: अच्छा। और किस तरह का पेड़ का चयन करेंगे हमारे किसान भाई, जिसमें कि छोटे पौधे में भी ज्यादा से ज्यादा फल लगे
0: हाँ
1: और उससे ज्यादा आमदनी हो?
0: जी, अभी जो है हमको क्या करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा फल लगे और कम से कम दिन लगे,
1: कम से
0: है
1: कम दिन
0: ना,
1: लगे,
0: ताकि
1: बिल्कुल
0: बिल्कुल जो है आदमी को ज़्यादा आमदनी हो सके। तो इसके लिए अभी क्या है, जैसे आम ही हमको खाना है,
1: जी
0: आम का जो बाग लगाएंगे
1: जी
0: तो हमें एक वैरायटी का नहीं लगाना है,
1: बिल्कुल
0: हमको क्या करना है मैक्सिमम समय तक, ज़्यादा से ज़्यादा समय तक हमको उसका उत्पाद मिले।
1: मिले।
0: तो जैसे कि जब आम आना शुरू होता है वो वैरायटी लगाएंगे हम, उसमें 3 4 टाइप का वैरायटी लगाएंगे,
1: बिल्कुल
0: बहुत तरह की
1: बिल्कुल
0: वैरायटी डिफरेंट कर देंगे
1: जी
0: ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा समय तक अपने आम का खा सकें, बिक्री कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा हमको मार्केट वैल्यू में मुनाफा मिल सके।
1: जी
0: तो
1: जी
0: सबसे पहले जो कुछ कुछ वैरायटी हम आगात लगाएंगे,
1: जी
0: कुछ मध्यम समय में लगाएंगे,
1: जी
0: कुछ हल्का लेट जो होता है और
1: जी
0: जो बहुत लेट होता है,
1: बिल्कुल
0: तो ये 4 टाइप का हम लगाएंगे।
1: वाह,
0: तो पहला जो है प्रभेद होगा हमारा अगात प्रभेद,
1: आगात
0: जो
1: प्रभेद
0: मतलब अर्ली
1: अर्ली आ जाए
0: अर्ली
1: बाजार में।
0: फ्रूटिंग हो
1: जी
0: जिसकी,
1: जी
0: तो उसमें मतलब मई से जून
1: जी
0: इसमें हमको आ जाना चाहिए हमारा फल।
1: मई जून में पकने वाला।
0: हाँ, तो
1: जी
0: इसमें हमारा कौन कौन आता है, जैसे बॉम्बे ग्रीन, बम्बई आम बोलते हैं ना,
1: जी जी
0: वो आम चाहिए, जर्दालू चाहिए,
1: जी
0: फिर जो है हमें गुलाब खास,
1: अच्छा
0: गुलाब खास और अल्फांजो तो यहाँ की वैरायटी नहीं है,
1: नहीं है।
0: लेकिन अब तो सारे वैरायटी साइंटिस्ट बना रहे हैं और हर जगह यहाँ पे उपलब्ध हो जाता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: और दूसरा है कि मध्यम समय में आना है,
1: जी, जो बीच के
0: तो
1: समय में आना
0: हाँ
1: है।
0: जो बीच के समय में आता है, तो उसमें जैसे कि जो है जून में पकने वाला, जून में जो लेट पक रहा है उसमें सबसे ज़्यादा डिमांड है हमारा लंगड़ा,
1: लंगड़ा
0: जिसको मालदा भी हम लोग
1: जी
0: बोलते
1: जी
0: हैं,
1: जी
0: है
1: जी
0: ना,
1: हाँ बिल्कुल
0: यहाँ पे मालदा, दशहरी, कृष्णभोग, हिमसागर,
1: बिल्कुल
0: ये
1: बिल्कुल
0: सारे वैरायटीज आप बीज के लिए लगा सकते हैं और इनका स्वाद भी काफ़ी अच्छा होता
1: अच्छा।
0: है ना, इसका
1: जी
0: मार्केट डिमांड भी बहुत ज़्यादा
1: बहुत
0: है और
1: अच्छा है
0: यहाँ कर खास करके झारखंड बिहार
1: जी जी
0: इस सब में यही वैरायटी ज़्यादा चलती है,
1: बिल्कुल।
0: लंगड़ा जो है, दशहरी, ये ज़्यादा
1: कृष्णभोग,
0: चलता है,
1: हिमसागर,
0: कृष्णभोग भी चलता है।
1: ये सारे जो आम जिसका आप अभी नाम ले रही हैं
0: हाँ
1: ये बहुत स्वादिष्ट आम है और लोगों की ये पहली पसंद होती है।
0: हाँ बहुत पसंद। इसके बाद ये जब ये खत्म होने के टाइम आता है
1: जी
0: तो इसके बाद भी एक मल्लिका वैरायटी आती है
1: अच्छा
0: ना, वो
1: जी
0: बहुत ही स्वादिष्ट है,
1: ओ
0: उसके बाद आप मल्लिका भी लगा सकते हैं,
1: जी जी जी
0: मध्यम जुलाई में पकने वाला, जैसे कि मल्लिका लगाइए और सीपिया आम है और
1: अच्छा
0: आम्रपाली, ये
1: हाँ
0: सब भी लगा सकते
1: ये
0: हैं,
1: सब भी
0: आम्रपाली का भी स्वाद बहुत अच्छा
1: बहुत
0: होता
1: अच्छा
0: है,
1: होता
0: लेकिन
1: है।
0: मल्लिका का जब आप खाएंगे, हम लोग तो खाए हुए हैं,
1: जी जी
0: सभी लोग खाए होंगे,
1: जी
0: लेकिन इनका काफ़ी मिठास और काफ़ी अच्छा लगता है।
1: जी जी
0: और
1: जी
0: लास्ट में जो बहुत लास्ट में आता है, जब खत्म होने का सीजन होता है, तो आप देखते होंगे कि चौसा आता है,
1: हाँ
0: चौसा और सुकुल, बस यही सब आम
1: ये
0: आता
1: अगस्त
0: है।
1: वगैरह में आता
0: हाँ
1: है।
0: हाँ लास्ट
1: जी
0: में अगस्त सितंबर तक भी आता है।
1: जी जी तो जैसा कि आपने जाना किसान भाइयों कि आमों के जो उन्नत प्रभेद हैं और इनके पकने का समय जो है क्रमांक है कि क्रमशः कब कब कौन सा आम आपको पकेगा।

0: हमारा बाग जल्दी इस्टेब्लिश
1: तैयार
0: हो
1: हो
0: रहा।
1: जाता है
0: तो
1: बिल्कुल
0: इसके लिए हमें संकर वैरायटी लगाना है और
1: जी।
0: जो हमें बढ़िया पौधा लगाना है। और
1: अच्छा
0: यदि जल्दी उत्पाद चाहिए
1: जी
0: तो थोड़ा सा बड़ा पौधा चाहिए, है
1: अच्छा
0: ना,
1: हाँ।
0: कि जो है बड़ा पौधा का दाम थोड़ा सा ज्यादा लगता है,
1: लगता
0: दो
1: है
0: सौ 250 लगता है,
1: जी
0: लेकिन उसका जो इस्टेब्लिशमेंट का समय है वो घट जाता है।
1: जी जी
0: तो बहुत छोड़ और उसका मृत्यु दर भी बहुत कम होता
1: कम
0: है।
1: होता है
0: तो ये पौधे जो है हमारा से जो है बड़ा पौधा लगाएंगे ज्यादा अच्छा होगा। और प्लस जो है ये हम वहाँ रांची से हमको अवेलेबल है। और पौधा लगा सारा ग्राफ्टेड होना चाहिए।
1: जी
0: और ये पौधे का किस्म अच्छा होना चाहिए, जो किस्म है, और
1: जी
0: तो ये रिप्यूटेड यूनिवर्सिटी से जब लेंगे, रिप्यूटेड जगह से, सरकारी संस्था है, तो
1: बिल्कुल
0: इसमें आपका जो है पौधा ठगने का कम चांस है।
1: कम रहेगा
0: बाहर से जो लेते हैं बोलते हैं कि निकलेगा मालदा, निकल जाता है बिज्जू।
1: जी
0: तो
1: जी
0: इसलिए उसको अच्छे जगह से पहले सिलेक्शन करना है। उसके बाद 20-25 दिन में भी डाल सकते हैं। और
1: बिल्कुल।
0: यदि ज्यादा गर्मी है तो 15 दिन में एक एक बार आपको पानी डाल देना है,
1: वैसे तो
0: ध्यान।
1: बरसात में पानी की जरूरत नहीं
0: फिर
1: पड़ेगी
0: बरसात जब आ जाएगी तो
1: जी।
0: पानी का तो खुद ही अपने आप हो जाए।
1: किसान भाइयों, अभी आपने श्रीमती अंजलि मिश्रा जी से जाना कि फूल फलों का नया बाग हम अभी लगा सकते हैं और कैसे लगा सकते हैं, खासतौर पे आम के जो पौधे हैं जिसका बाजार में काफ़ी डिमांड है आम का, तो इस बाग को लगा के आप अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं, उसके साथ आप दूसरे चीज़ की भी खेती बाग में कर सकते हैं। इन्होंने भी जानकारी दी, हम समझते हैं आप इस जानकारी से अवश्य लाभ उठाएंगे और अपनी आमदनी बढ़ाएंगे। इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस भेंटवार्ता के बाद आइए सुनते हैं एक संदेश।
2: प्रिय जिलावासियों, जोहार। मैं नीतीश कुमार सिंह, उपायुक्त सरायकेला खरसावां, समस्त जिलेवासियों से अनुरोध करता हूँ कि वर्तमान में चल रही भारत की जनगणना 2027 के अंतर्गत अब आप स्वगणना सेल्फ इनुमरेशन के माध्यम से अपनी जानकारी स्वयं दर्ज कर सकते हैं। आपके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर ही भविष्य में स्कूल, अस्पताल, सड़कें और सरकारी योजनाओं का लाभ आपके क्षेत्र तक पहुंचाया जाएगा। आप अपने मोबाइल से sc.census.gov.in पोर्टल पर अपनी और अपने परिवार की जानकारी स्वयं भरें। यह पोर्टल झारखंड में 15 मई 2026 तक स्वगणना हेतु खुली रहेगी। आपकी गोपनीयता हमारी प्राथमिकता है। हमारे जिले के सुनहरे भविष्य और सटीक योजना निर्माण के लिए हमने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। अब आपकी बारी। धन्यवाद।
1: किसान भाइयों, और अब चलते चलते कुछ बातें हरी सब्जियों की खेती में भिंडी और बैगन का स्थान सर्वोत्तम माना जाता है। आइए जानते हैं इस समय भिंडी और बैगन फसल की देखभाल कैसे करें। किसान भाइयों, मई और जून माह में भिंडी और बैगन की अच्छी पैदावार के लिए नियमित सिंचाई और कीट प्रबंधन के साथ खाद की संतुलित मात्रा सबसे महत्वपूर्ण है। भिंडी में 3 से 4 दिन में सिंचाई करें, जबकि बैगन फसल में इस समय तना छेदक कीटों से बचाव के लिए फेरोमैन ट्रैप लगाएं। इस समय आप दोनों फसलों में नीम का तेल का स्प्रे भी कर सकते हैं। और अंत में कुछ बातें हीट स्ट्रोक से बचाव के संबंध में। किसान भाइयों, हीट स्ट्रोक अर्थात लू से बचने के लिए शरीर को हमेशा हाइड्रेटेड रखें, जिसके लिए पर्याप्त मात्रा में पानी, नींबू पानी, ORS आदि का सेवन करते रहें। ढीले ढाले सूती कपड़े पहने और सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे के बीच सीधी धूप में न निकलें तो बेहतर है। अगर बाहर निकलना जरूरी हो तो सिर ढक कर निकलें, छाता का इस्तेमाल करें और सीधे धूप वाले कामों से बचें। इसके साथ ही कार्यक्रम कृषि जगत अब यहीं संपन्न होता है। हम फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में। सभी श्रोता मित्रों को रेडियो दोस्त संजीव का जोहार।

कृषि जगत, ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 MHz पर। शाम के 6:55 हुए हैं। अगला प्रसारण होगा आकाशवाणी के रांची केंद्र से। ठीक 7 बजे सुनिएगा प्रादेशिक समाचार और उसके बाद होगा कार्यक्रम जिले में आजकल। अब अगला प्रसारण रांची से सुनिए।

0: संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, आज हर घर में मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट जैसी डिवाइसेस आम हो चली है। देश भर में इनकी संख्या बिलियंस में होगी। आज के लेटेस्ट डिवाइस भविष्य के ई वेस्ट भी होते हैं। अगर ई वेस्ट को ठीक से डिस्पोज नहीं किया गया तो यह हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर सावधानी पूर्वक ऐसा किया जाता है तो रिसाइकल और रीयूज की सर्कुलर इकोनॉमी की बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि अलग अलग प्रोसेस के जरिए इस ई वेस्ट से करीब 17 प्रकार के प्रेशियस मेटल्स निकाले जा सकते हैं। इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और निकल शामिल है। इसलिए ई वेस्ट का सदुपयोग करना कचरे को कंचन बनाने से कम नहीं है। आज ऐसे स्टार्टअप्स की कमी नहीं जो इस दिशा में इनोवेट काम कर रहे हैं। इस सेक्टर ने हजारों लोगों को सीधे तौर पर रोजगार भी दिया है। ये सभी भारत को ग्लोबल रिसाइकलिंग हब बनाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन ऐसे इनिशिएटिव की सफलता के लिए एक जरूरी शर्त भी है। वो ये है कि ई वेस्ट के निपटारे से सुरक्षित उपयोगी तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करते रहना होगा।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द की। केंद्र सरकार ने पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई को सौंपी। राज्यपाल ने बिहार आई बैंक का नाम बदलकर झारखंड आई बैंक करने का दिया निर्देश। संस्थान को आयुष्मान योजना से जोड़ने के भी आदेश। बिजली पानी संकट को लेकर राजधानी रांची समेत राज्यभर में भाजपा का जोरदार प्रदर्शन। प्रदेश अध्यक्ष ने राज्य सरकार को बताया संवेदनहीन। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में कृषि कार्यशाला संपन्न। कम बारिश की आशंका के बीच मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने दिए सुखाड़ योजना बनाने के निर्देश। और राजधानी रांची और आसपास के क्षेत्रों में झमाझम बारिश और आंधी से मौसम बदला। कई जगहों पर पेड़ गिरने से बिजली और यातायात बाधित। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने शिक्षा में मेडिकल दाखिले के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने कहा है कि यह फैसला विद्यार्थियों के हित तथा राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली में विश्वास को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। एक रिपोर्ट।
2: एनटीए ने बताया है कि सरकार ने पेपर लीक के आरोपों की पूरी जांच के लिए मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। एजेंसी ने कहा है कि ये निर्णय केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय में एनटीए द्वारा जांच निष्कर्षों का मूल्यांकन करने के बाद लिया गया है। परीक्षा के लिए नई तिथि अलग से अधिसूचित की जाएगी। पंजीकरण विवरण, उम्मीदवार की जानकारी और मई 2026 के लिए चयनित परीक्षा केंद्र अपरिवर्तित रहेंगे। दोबारा परीक्षा के लिए फिर पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी और कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने लोकभवन में बिहार आई बैंक ट्रस्ट के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने इसका नाम जल्द बदलकर झारखंड आई बैंक करने और भूमि संबंधी समस्याओं को तुरंत सुलझाने के निर्देश दिए। राज्यपाल ने संस्थान को आयुष्मान भारत योजना से जोड़ने तथा आधुनिक सुविधाओं के लिए सीएसआर फंड जुटाने पर जोर दिया। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए हैं। धनबाद में प्रेस वार्ता कर श्री मरांडी ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान से पंजाब के रास्ते झारखंड में अवैध हथियारों की खेप पहुंच रही है, जो बेहद चिंताजनक है।
3: इस राज्य में पुलिस गुंडे और माफिया उन्हें लोगों के हवाले कर रखा है। जो प्रिंस खान दो ऑडियो इधर वायरल हुआ, किस प्रकार से पाकिस्तान के रास्ते पंजाब के रास्ते इलीगल्स आर्म्स को मंगाया जा रहा, इसके बाद भी सरकार मौन। यानी ये गठजोड़ देश के अंदर ही अंतरराज्यीय ही गिरोह ये नहीं है बल्कि इंटरनेशनल गिरोह भी, तो इसमें से हेमंत सोरेन क्या कर सकते।
1: राजधानी रांची समेत राज्यभर में बिजली पानी संकट को लेकर भाजपा ने आज विरोध प्रदर्शन किया। रांची में आयोजित विरोध प्रदर्शन में मुख्य रूप से रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ शामिल हुए। मौके पर प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने राज्य सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि बिजली कटौती और पेयजल किल्लत का जल्द समाधान नहीं हुआ तो भाजपा पूरे राज्य में आंदोलन और उग्र करेगी।
4: झारखंड से आजादी रांची में लोग पानी और बिजली को मांग को लेकर को लोग उतरने का काम किए हैं और उसी प्रकार का दृश्य पूरे राज्य में बनी हुई है और प्रत्येक प्रशासनिक जिले में इस प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से जनता सड़कों पर उतरने का काम किया है। लेकिन ये सरकार देशों की सोई हुई है, इनको आम लोगों के सुख दुख से कोई मतलब नहीं है।
1: जमशेदपुर में पहाड़ों और नदियों के संरक्षण को लेकर 22 और 23 मई को राष्ट्रीय स्तर की 2 दिवसीय संगोष्ठी आयोजित होगी। इस कार्यक्रम में देश भर के पर्यावरणविद और विशेषज्ञ जुटेंगे। जल पुरुष राजेंद्र सिंह और विधायक सरयू राय के संरक्षण में होने वाले इस विमर्श का मुख्य उद्देश्य नदियों और पर्वतों के संवर्धन के लिए सशक्त कानून बनाने की ठोस पहल करना है।
5: पहाड़ों और नदियों के संरक्षण संवर्धन के लिए भारत सरकार और राज्य सरकारें एक सशक्त कानून बनाए। अब इसका संरक्षण संवर्धन जरूरी इसलिए है कि हमारा जो विकास हो रहा है उस विकास में सबसे अधिक खतरा पहाड़ों और नदियों पर ही है। तो जब तक कोई कानून ऐसा सशक्त नहीं रहेगा जिसके आधार पर जिला प्रशासन या कोई भी कठोर कानूनी कार्रवाई कर सके, इसलिए एक ही विषय रखा है सेमिनार में और वह है लॉ फॉर माउंटेन्स एंड लॉ फॉर रिवर्स।
1: रांची स्थित सेना भर्ती कार्यालय ने आज घोषणा की है कि अग्निवीर भर्ती परीक्षा 2026 के तहत कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन का आयोजन 1 जून से 15 जून तक किया जाएगा। इस लिखित परीक्षा में केवल वही अभ्यर्थी शामिल हो सकेंगे जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी की है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राजधानी रांची के सदर थाना क्षेत्र के कोकर खोरहा टोली से 4 दिनों से लापता 18 महीने की अदिति पांडे की तलाश के बीच आज सुबह गाड़ी गांव नाले से कुछ क्षत विक्षत अवशेष बरामद हुए हैं। सिटी SP पारस राणा ने बताया कि फिलहाल इन अवशेषों की आधिकारिक पहचान नहीं हो सकी है।
6: हमारी टीम्स लगातार आज सर्च कर रही थी तो NDRF की टीम और नगर निगम की टीम, उनके द्वारा देखा गया कि एक पॉइंट ऐसा है जहां मांस का और हड्डी का टुकड़ा वहां पड़ा है और काफ़ी ठीक ठाक मात्रा में है और प्रथम दृष्टि देखने में वो वही लगता है, क्योंकि उस मांस के टुकड़े पर कोई भी हमें बाल या बाल होने की पुष्टि नहीं हुई और उसी आधार पर उस DNA सैंपलिंग के लिए भेजा गया है।
1: रांची स्थित बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित 2 दिवसीय कृषि कार्यशाला में आज कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की शामिल हुईं। उन्होंने बताया कि अल नीनो के कारण कम बारिश की आशंका को देखते हुए सभी जिलों को आकस्मिक सुखाड़ योजना तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। हजारीबाग में आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट को लेकर सिविल सर्जन डॉ. अशोक कुमार की अध्यक्षता में कार्यशाला आयोजित की गई। रांची से आई नोडल अधिकारी प्रियंका सांगा ने बताया कि इस ऐप से मरीज, डॉक्टर, लैब और फार्मेसी आपस में जुड़ेंगे।
7: एक रिव्यू मीटिंग रखा था हमारे सिविल सर्जन की अध्यक्षता में। इस फाइनेंशियल ईयर की जो रिपोर्ट थी उनसे हम लोगों ने साझा किया और उनको बताया कि अभी तक उन्होंने कितना इस मॉड्यूल को अच्छी रीति से स्टार्ट किया है, नहीं किया है, BSNL की कनेक्टिविटी मिली है, नहीं मिली है, उनको भी हम लोगों ने शामिल किया कि अपने प्रॉब्लम्स को रखें, जहाँ प्रॉब्लम्स हैं वो उनको नोट डाउन कराएं।
1: अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के अवसर पर आज सदर अस्पताल में विधायक ममता देवी और सिविल सर्जन डॉ. अनिल कुमार ने उत्कृष्ट कार्य करने वाली दर्जनों नर्सों को सम्मानित किया। विधायक ने अस्पताल की सफलताओं का श्रेय नर्सों के सेवा भाव को दिया।
8: आज इंटरनेशनल नर्सेस डे आज मनाया जा रहा है, सभी हमारी नर्स बहनें को बहुत बहुत बधाई। हमारे रामगढ़ जिले में अगर हमारा सदर अस्पताल आज नई ऊंचाइयों को अगर छू रहा है, कई सारे अवार्ड अगर प्राप्त कर रहा है, तो निश्चित तौर पर हमारी नर्स बहनें वहां पर काबिले तारीफ हैं। यहां के स्टाफ, यहां के डॉक्टर्स, सभी का भरपूर सहयोग रहता है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले कल में भी ये सदर अस्पताल और भी विकसित हो।
1: मौसम। राजधानी रांची और आसपास के क्षेत्रों में आज दोपहर बाद मौसम का मिजाज अचानक बदल गया। तेज आंधी के साथ हुई झमाझम बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन आंधी के कारण शहर के कई इलाकों में पेड़ गिरने की खबर है। इससे बिजली के तार टूट गए और आवागमन पर असर पड़ा है। मौसम विभाग ने आगामी 17 मई तक राज्य के कई हिस्सों में बारिश और वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी सिंहभूम जिला क्रिकेट संघ द्वारा 15 मई से बिरसा मुंडा क्रिकेट स्टेडियम में अंडर-16 समर क्रिकेट कैंप का आयोजन किया जाएगा। महासचिव असीम कुमार सिंह ने बताया कि 20 दिनों के इस कैंप में खिलाड़ियों को फिजिकल फिटनेस और क्रिकेट की बारीकियों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। और अब अंत में मुख्य समाचार। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द की। केंद्र सरकार ने पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई को सौंपी। राज्यपाल ने बिहार आई बैंक का नाम बदलकर झारखंड आई बैंक करने का दिया निर्देश। संस्थान को आयुष्मान योजना से जोड़ने के भी आदेश। बिजली पानी संकट को लेकर राजधानी रांची समेत राज्यभर में भाजपा का जोरदार प्रदर्शन। प्रदेश अध्यक्ष ने राज्य सरकार को बताया संवेदनहीन। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में कृषि कार्यशाला संपन्न। कम बारिश की आशंका के बीच मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने दिए सुखाड़ योजना बनाने के निर्देश। और राजधानी रांची और आसपास के क्षेत्रों में झमाझम बारिश और आंधी से मौसम बदला। कई जगहों पर पेड़ गिरने से बिजली और यातायात बाधित। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सवेरे 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
9: प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: इस अंक में आप सुनेंगे गढ़वा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे गढ़वा संवाददाता।
1: गढ़वा जिले में बीते शनिवार को स्थानीय व्यवहार न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न विभागों के 1,39,000 मामलों का निष्पादन किया गया। साथ ही इसमें 2,39,00,000 रुपए राजस्व की भी प्राप्ति हुई। इस अवसर पर गढ़वा के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष मनोज प्रसाद ने लोगों को राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रति जागरूक भी किया।
2: अपील है कि वो निर्भय होकर, निर्भीक होकर इस लोक अदालत में आगे बढ़कर आए। त्वरित न्याय दिलाने का हम आश्वासन देते हैं। किसी भी प्रकार का कोई भी परेशानी हो, परेशानी का निपटारा कराया जाएगा।
1: विगत 10 मई रविवार को प्रथम भारतीय स्वाधीनता संग्राम के 169वीं वर्षगांठ पर गढ़वा की सांस्कृतिक संस्था पंडित हर्ष द्विवेदी कला मंच की ओर से तिलक करो इस मिट्टी को नामक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने 169 दीपक जलाकर प्रथम भारतीय स्वाधीनता संग्राम के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम के विषय में जानकारी देते हुए पंडित हर्ष द्विवेदी कला मंच के निदेशक नीरज श्रीधर ने बताया,
3: प्रथम भारतीय स्वाधीनता संग्राम में जितने भी हुतात्मा रहे, जिन वीरों ने, भारत माता के सपूतों ने जो बलिदान दिया है, उनको सादर समर्पित करते हुए प्रत्येक वर्ष हम लोग 10 मई को एक कार्यक्रम करते हैं जिसका नाम है तिलक करो इस मिट्टी से। 1857 के कालखंड की अमर शहीदों के गांव से मंगाई गई मिट्टी को कलश में रख करके हम लोग विधिवत उसका पूजन करते हैं और फिर अखंड भारत के मानचित्र पर दीप सजाकर जलाते हैं और उस मिट्टी से तिलक करके उन वीरों की गाथा को हम लोग गीत संगीत भाषण उद्बोधन और शौर्य प्रदर्शन के माध्यम से यह कार्य कर रहे हैं ताकि आने वाली पीढ़ी अपने पूर्वजों और उनके सुकृतियों के बारे में जान सके और गर्व से कह सके कि हम।
1: गढ़वा जिले में बिजली पानी की समस्या को लेकर विगत 6 मई को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने समाहरणालय पर रोष पूर्ण प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व भाजपा के गढ़वा विधायक सत्येंद्रनाथ तिवारी ने किया। इस अवसर पर विधायक श्री तिवारी बिजली पानी की समस्या पर बहुत आक्रामक दिखे। उन्होंने कहा कि
4: 50,000 चापानल खराब है, 2,000-3,000 रुपया में जिसका मरम्मती हो सकता था उतना पैसा भी सरकार के पास नहीं है। पूरे देश में झारखंड और वेस्ट बंगाल एक नंबर और दो नंबर पर आता है सबसे नीचे के पायदान पर। झारखंड में 8% लोगों को ही जल जीवन मिशन का लाभ मिल रहा है। ऐसे में 92% लोग आज बेचारे हताश हैं, निराश हैं, गंदा पानी पी के चुराने का पानी पीने को विवश है, इसलिए बीमारी के भी शिकार हो रहे हैं। आज यह सांकेतिक हड़ताल है कि सरकार जागे और लोगों को जल जीवन मिशन पैसे का जो घोटाला हुआ है उस पैसे को खोज करके बाहर ला करके और लोगों को शुद्ध पेयजल पहुंचाने का काम करे।
1: जिले में मौसम का उतार चढ़ाव लगातार जारी है। जिले का तापमान एक बार फिर बढ़ने लगा है। इस समय जिले का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। मौसम विभाग ने सप्ताह के अंत तक 42 डिग्री तक तापमान बढ़ने का पूर्वानुमान बताया है। इसको देखते हुए गढ़वा वासियों को फिलहाल भीषण गर्मी और लू से निजात मिलने की संभावना नहीं दिख रही है। विनोद कुमार पाठक, आकाशवाणी समाचार, गढ़वा।
0: अभी आप सुन रहे थे गढ़वा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

आकाशवाणी रांची का प्रसारण अभी आप सुन रहे थे FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, आप हैं आकाशवाणी जमशेदपुर के साथ। शाम के 7:15 हो रहे हैं। आइए अब सुनते हैं बांग्ला कार्यक्रम।

0: আলো।
1: ग्रामीण श्रोता मित्रों को हमारा नमस्कार जोहार। कार्यक्रम आलोक के आज के अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं शशांक शेखर।

0: मित्रों, सरायकेला खरसवां जिला अंतर्गत चांडी क्षेत्र के चिलगु चकुलिया स्थित सोबरन स्मृति ट्रेनिंग सेंटर में 4 दिवसीय आवासीय सामाजिक परिवर्तन शाला का आयोजन विगत 6 से 9 मई तक किया गया, जिसमें झारखंड के विभिन्न जिलों से लगभग 30 प्रतिभागी शामिल हुए। आपको बता दें कि पिछले 3 वर्षों से ये कार्यशाला नियमित रूप से आयोजित की जा रही है, जिसका उद्देश्य खासकर युवाओं को समाजोन्मुखी बनाकर रचनात्मक सामाजिक बदलाव के लिए प्रेरित और प्रशिक्षित करना है। इस कार्यशाला में भाग ले रहे कुछ प्रतिभागियों से हमने बातचीत की। अपना परिचय दीजिए, क्या नाम है आपका?
1: मनीषा पिंगवा।
0: कहाँ की रहने वाली हूँ?
1: मैं शहवासा की रहने वाली हूँ।
0: आपकी शिक्षा कहाँ तक हुई है?
1: मेरी शिक्षा अभी चल रही है, एमएड चल रही है।
0: कौन से सब्जेक्ट?
1: फिजिक्स।
0: मतलब साइंस?
1: हाँ साइंस।
0: और इस सामाजिक परिवर्तन शाला में क्या कुछ साइंस से जुड़ी कुछ चीजें भी बताई जा रही?
1: हाँ, यहाँ पे शुरुआत में साइंस से जुड़ी बातें बताई गई है, जैसे बिग बैंग से रिलेटेड, उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटोन जैसे सारे तत्व जो है वो फिजिक्स साइंस में ही आते हैं।
0: तो आप शुरू से ही इसमें हैं?
1: हाँ, शुरू से ही।
0: थर्ड वर्कशॉप है ना, तीसरा शिविर है?
1: हाँ, ये मेरा तीसरा शिविर है।
0: नियमित रूप से इसमें आ रही हो तो अब तक मूल रूप से इस तरह का जो शिविर हो रहा है, JSSC जिसको नाम दिया गया है, झारखंड स्कूल फॉर सोशल चेंज, ये राज्य स्तरीय वर्कशॉप है, इसका मैसेज क्या जा रहा है? मतलब आपको क्या लग रहा है कि समाज में जो भी आप आगे जाएंगी तो आपके मार्फत और भी जो लोग आपसे जुड़े हुए लोग होंगे, आप जुड़ना चाहेंगी, क्या संदेश आप देना चाहेंगे कि जो सीख के जा रहे हैं, क्या सीखा आपने?
1: यहाँ पे यही सीखने को मिल रहा है कि जो जितने भी हमारे समाज में जो कुरीतियां हैं और धार्मिक से रिलेटेड कुछ बातें हैं, उन सारी बातों को हम लोग, उन सारी अंधविश्वास चीजों को किस तरह से समाज से हटाएंगे और आगे बढ़ेंगे।
0: मतलब वैज्ञानिक चेतना का विकास करना, तर्क शक्ति अपने अंदर में लाना
1: जी,
0: कि हम किसी भी बात का आँख मूंद के भरोसा नहीं करें या उस राह पे न चलें
1: जी,
0: जांच परख लें कि सही है कि गलत है,
1: गलत
0: है ना? जिस तरह से पाखंड का जोर है, लोग झूठ को सच मानने लगे हैं, ऐसे समय में सामाजिक परिवर्तन शाला जो हो रही है, इस तरह के अभियान, इस तरह की मुहिम आपको लगता है कि देश भर में चलना चाहिए?
1: जी हाँ सर, ये जो है सारे देश भर में चलना चाहिए, और मैं तो चाहती हूँ कि छोटे छोटे जो जिले हैं वहाँ पे भी होना चाहिए। जैसे अभी हम लोग आए हैं यहाँ जिले पे, चाहती हूँ कि चाहवासा के कुल्हान क्षेत्र में भी ऐसे शिविर लिया जाए।
0: आप अपनी कोई भूमिका तय करेंगी आने वाले समय में? अपने जॉब मान लीजिए आप कुछ करेंगी, कोई प्रोफेशन में जाएंगी, तो ये जो आप सीख रही हैं जीवन में किस तरह से काम में लाएंगी?
1: अभी तो मैं अपने पेशे से एक शिक्षिका हूँ, तो शिक्षिका होने के नाते मैं अपने सबसे पहले अपने विद्यालय में विद्यार्थियों को ऐसे इस तरह की बातें बताऊंगी, जैसे कि जिस समाज में अच्छी बातें फैल सके, फिर इस तरह की कुरुतियां बातें ना हो। अभी से बच्चे सीखेंगे छोटे से ही, तो बड़े होके उनके में तर्क शक्तियाँ जागेगी, चीजों को उतना तक सोच सकेंगे वो।
0: क्या नाम है आपका?
2: मेरा नाम कमल देव बेसरा है, मैं गमरिया प्रखंड का बड्डी गांव का हूँ, सरायकेला जिला है।
0: क्या हो?
2: जी मैं स्टूडेंट हूँ और अभी तो मैं काम भी कर रहा हूँ पार्ट टाइम।
0: यहाँ जो आपने सामाजिक परिवर्तन शाला में हिस्सा लिया है, ये तीसरा शिविर है आपका
2: जी,
0: तो क्या कुछ यहाँ हो रहा है, कुछ समाज में परिवर्तन का उद्देश्य है तो किस तरीके से क्या कुछ हो रहा है?
2: सर यहाँ पे सीधे सीधे कहा जाए तो लोगों को तर्क करना सिखाया जा रहा है, किसी भी चीज को बिना उनका पुष्टि किए क्या है क्या नहीं है उनको मान लेना नहीं है। तो हमको बहुत शुरू से शुरू करवाया जा रहा है, जैसे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, बिग बैंग से लेकर अभी तक जो तीसरा शिविर हुआ, अभी हम आ चुके हैं कि अर्ली इंडिया में कैसे आए, कहाँ से उत्पत्ति हुई, अफ्रीका से कैसे निकले, और अभी जो अभी हम जिस तीसरे शिविर में है यहाँ पढ़ाई हो रहा है आपका कि आर्य यहाँ कैसे पहुंचे, यहाँ खेती कैसे शुरुआत हुई, और अभी हम जाति व्यवस्था के बारे में पढ़ रहे हैं जी। अभी तीसरा फिर बस इतना ही हुआ है और आगे भी देखते हैं, बहुत अच्छा अच्छा एक्टिविटी भी कराया जाए।

0: रहा है यहाँ पे, ताकि और चेतना खुले।
1: आपको लग रहा है कि रचनात्मक परिवर्तन की जरूरत है, तो इस तरह के शिविर से कुछ लाभ हो रहा है?
0: जी, इससे बहुत ही लाभ होगा। और जैसे कि गांव में अंधविश्वास माना जाता है कि सांप काटने से उसको पहले ओझा के पास ले जाया जाता है, लेकिन उसको ओझा के पास नहीं ले जाने के बदले आप डॉक्टर के ले जाएंगे तो उसके आसार बहुत है बचने के। ये भी एक अंधविश्वास था, लेकिन अब धीरे धीरे ये सब चेतना खुल रही है लोगों की, और हमारी भी खुल रही है। कुछ भी बात अभी होंगी गाँव में तो हम तर्क कर सकते हैं। इस तरह के वर्कशॉप हर एरिया में होने चाहिए, ताकि लोगों की चेतना और बढ़े, और जो गाँव घर के जो गरीब परिवार के हैं उनका चेतना और अच्छे से खुले, क्योंकि वही सबसे ज्यादा इन सब चीजों को मानते हैं।
2: क्या नाम है आपका?
3: मेरा नाम बिष्टु मैसा है, मैं पश्चिम सिंहभूम चाईबासा से हूँ।
2: आप करते क्या हैं?
3: सर मैं फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं करता हूँ
2: पढ़ाई
3: जी।
2: लिखाई?
3: जी पढ़ाई लिखाई कर रहा हूँ, इग्नू से ग्रेजुएट कर रहा हूँ
2: ये
3: जी।
2: 4 दिनों में
3: जी
2: क्या कुछ बताया गया, क्या जानकारी हासिल हुआ आपको जो इससे पहले आप नहीं जानते थे?
3: यहाँ आके मुझे बहुत कुछ नया नया जानकारी मिल रही है, जो मुझे बिल्कुल भी जानकारी नहीं था। जैसे कि यूनिवर्स की उत्पत्ति कैसे हुआ, उसमें क्या प्रक्रिया रहा होगा, जैसे बिग बैंग विस्फोट होने के बाद जिस तरह से अणु परमाणु हाइड्रोजन गैस प्रोटॉन इस टाइप से हीलियम गैस फैलने लगी, उसके बाद से जो वो जो कण है अलग अलग भागों में बांटने लगे, उसके बाद धीरे धीरे फिर सब अपना अपना आकार में आने लगे, उसके बाद फिर कई हजारों लाखों साल के बाद पृथ्वी का एक आकार बना। इस तरह से फिर पृथ्वी बनने के दरमियान में एक उल्का पिंड जो टकराया गया है उसका जो आधा हिस्सा अभी जो हम जिसको चांद बोलते हैं उससे चांद भी बना। तो इस तरह से जो भी हमारा पृथ्वी में अभी जो हम देख पा रहे हैं उसका उसके बारे में मुझे जानकारी मिली। दूसरी शिविर में अटेंड कर रहा हूँ, इसमें कुछ और नया सीखने को मिली, जैसे कि जाति व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था, सामाजिक की व्यवस्था, कि हम इस धरती पे जब हम मनुष्य आया उसके बाद से वो किस तरह से अलग अलग समुदाय में बांट गए हैं, इस तरह का जानकारी अभी दूसरी शिविर में मिल रही है।
2: इस दौर में कहीं भी बिग बैंग से लेके
3: जी
2: ये कहीं नहीं मिलता है कि तीसरी शक्ति भी कोई है जिसने धरती बनाई?
3: जी बिल्कुल जी, ये तो बिल्कुल यहाँ आके मुझे स्पष्ट हुआ कि ऐसा कुछ है नहीं, बस हमें बताया जाता है और उस चीज को हम विश्वास करके हमें लगता है कि शायद ऐसा कुछ है दुनिया में, कोई तीसरा शक्ति भी है, इस तरह से हमें लगता है।
2: इसमें वैज्ञानिक चेतना भी डाली जा रही है
3: बिल्कुल,
2: तर्क शक्ति आपके अंदर हो,
3: एकदम
2: जो भी इसमें भाग ले रहे हैं
3: जी
2: उनके अंदर में वैज्ञानिक चेतना का विकास करना
3: जी, जी।
2: सवाल पूछने की आदत डालना
3: बिल्कुल।
2: आपको लगता है कि समाज में आने वाले समय में आप जैसे सीख के जा रहे हैं आपके माध्यम से और भी जो लोग हैं जुड़ेंगे और समाज में कुछ बदलाव दिखेगा आने वाले समय में?
3: बिल्कुल दिखेगा, जैसे कि मैं पहला शिविर जब अटेंड किया था तो मैंने एक साथी को बताया कि इस तरह का कुछ वहाँ पे जानकारी मिलेगी, हम लोगों को बताया जाएगा, सीखने को मिलेगा। तो शुरू में ही मेरे साथ एक साथी आए, और उसके बाद जब पहला शिविर अटेंड करने के बाद जब मैं अपना एरिया में चला गया वहाँ पे अपने साथियों को बताया तो उनमें भी इंटरेस्ट जागने लगा, तो फिर अभी फिर से मेरे साथ और भी साथियाँ आए, तो मुझे लगता है कि ये चीज अगर और भी लोग इसमें जुड़ते जाएंगे तो उन साथियों के साथ मिलजुल करके हम अपना एरिया में इस चीज ये जो अभी यहाँ से सीख रहे हैं संदेश हम उसको एकदम अच्छी तरह से फैला सकते हैं, और लोगों में जो चीज है उसको हम कहीं ना कहीं उसको हम संदेश अच्छे रूप से दे सकते हैं।
2: क्या नाम है आपका?
4: मेरा नाम पूजा बंकीरा है और मैं खरसवां से हूँ।
2: क्या करती हो आप?
4: मेरी पढ़ाई अभी एमकॉम कंप्लीट हो चुका है, 2-3 साल हो गया है।
2: अभी भी किसी प्रोफेशन में नहीं है आई है?
4: वैसे तो मैं जॉब कर रही थी, अभी गांव में हूँ, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाती हूँ।
2: शिक्षण के कार्य में जुटी हुई है, शिक्षा के बिना सब कुछ हो रहा है।
4: हाँ, ग्रामीण बच्चों को थोड़ा मैं उनको हेल्प करती हूँ,
2: शिक्षा की ज्योत जला रही है, अच्छा काम कर रही है। तो इस सामाजिक परिवर्तन शाला में आप लगातार आ रही है?
4: ये मेरा तीसरा शिविर है।
2: क्या कुछ यहाँ पर सार जो कहेंगे हम इस वर्कशॉप का, क्या अब तक आपके जहन में आया है?
4: जिस हिसाब से हम समाज को देखते हैं, अलग अलग जातियों में बटे हुए हैं या फिर कुछ नियम कानून ऐसे हैं, तो ये सब चीज कुछ नहीं है। पुराने जमाने में नियमावली जो लागू हुआ है हम उसको फॉलो करते आ रहे हैं, और फॉलो नहीं ये हम गुलाम खटते हुए आ रहे हैं, लेकिन ये है कि अपना विचारधारा वैज्ञानिक सोच हम अपने हिसाब से सोचना चाहिए कि ये जो भी चीज है, क्या जो भी चीज को हम अमल करते हैं या फिर जो भी चीज हम सुनते हैं कि नहीं ऐसा ही होगा, तो उस चीज को हम अपने वैज्ञानिक से सोचना चाहिए कि ये एक्चुअल में जो चीज बोला जा रहा है क्या वो सही है, तर्कशील बात है या फिर नहीं है। मुझे ये जानकारी यहाँ से प्राप्त हो रही है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है कि मैं अगले 2 शिविर तक मैं बहुत ही अच्छी तरह से सारे चीजों को जान जाऊंगी कि एक्चुअल में यहाँ एक्चुअल में हो क्या रहा है, कहाँ प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है हम लोग को।
2: लगातार जो यहाँ पर एक्टिविटीज भी होती है अलग अलग सत्रों में, कुछ आउटडोर कुछ इंडोर, ज्यादा इंटरेस्टिंग आपको क्या लगा?
4: मेरे को ये लगा कि मतलब जो पार्टिसिपेट हम लोग करते हैं तो हर क्षेत्र में जो भी चीज जैसे भाषण हो गया, अखबार लेखन शैली होता है, तो ये हम लोगों का माइंड को विस्तार रूप से सोचने के लिए मजबूर करती है कि कोई भी चीज

0: कैसे होता है और कैसे उसको हम लोग सोचने के लिए हम लोग को मजबूर किया जाता है, मतलब कि मजबूर होना पड़ता है, और हम लोग को सारी जानकारियां इससे मिलती है कि आखिर क्या है क्यों है। जो चीज हम बस देख के सोचते हैं कि ऐसा है वैसा है, तो ऐसा वो चीज हम लोग यहाँ पे सीख रहे हैं। समझ सकते हैं कि एक वैज्ञानिक सोच की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ही रास्ता बनेगा। पाखंड और ये जो चीज चल रहा है, ये सब चीज से तो अभी तक हम वैसे ही है, कोई बदलाव नजर नहीं आ रहा है। इसीलिए हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ही काम करना होगा, और ये अगर हमने सब कुछ अप्लाई कर लिया है, तो फिर हम लोग बहुत जल्द ही बदलाव ला
1: ला
0: सकेंगे,
1: सकेंगे।
0: तरक्की
1: क्या
0: के राह पर हम लोग आगे बढ़ सकेंगे।
1: नाम हुआ आपका?
2: मेरा नाम समीर हेमरम है, मैं पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा से हूँ। वर्तमान में मैं इंग्लिश ऑनर्स के साथ पढ़ाई कर रहा हूँ।
1: इस वर्कशॉप में जो आप आए हैं 4 दिनों में, यहाँ क्या कुछ मिला जो आपके काम आएगा? समाज में कुछ आप दे सकेंगे आने वाले समय में, समाज की तरक्की के लिए, प्रगति के लिए?
2: ये जो पाठशाला है, हमारी जो वर्तमान की स्कूल व्यवस्था जो है उसे एक अलग व्यवस्था है, जो काफी सकारात्मक और हमारे जमीनी स्तर पर सिखाई जाने वाली पाठशाला है। यहाँ हम लोगों ने कई चीजों को पढ़ा और जाना, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण रहा इसमें, चाहे वो पृथ्वी की उत्पत्ति हो और हमारे जो जातीय वर्ण व्यवस्था की जो लोगों के द्वारा बनाई गई हो, हमारे वैज्ञानिक जो एविडेंस है वो अलग कहते हैं। इस पे हमारी गहन चेतना का एक विस्तृत ज्ञान रूपी जो हमारे शिक्षकों के द्वारा दी गई वो काफी सकारात्मक है, और हमारे समुदाय और हमारे जितने भी लोगों को ये जागरूक करने की एक पहल है।
1: सबसे ज्यादा इस 4 दिनों में आपको जो एक्टिविटीज हुई है अलग अलग इंडोर आउटडोर
2: जी,
1: ज्यादा इंटरेस्टिंग क्या लगी आपको?
2: हमें लगी कि यहाँ पे जो प्रैक्टिकल एजुकेशन की तरह जो सभाएं बुलाई जाती है गांव में, उस तरह की एक माहौल बनी, और जिससे हम लोगों को एक बोलने की और अपने आप को उभरने की और सामाजिक लोगों में जन चेतना जगाने की एक प्रतिनिधित्व की तरह एक हम लोग भी उभरे हैं। मुझे लगता है ये चीज काफी जरूरत थी, और हमारे जैसे युवाओं को, हमारे समाज के लोगों को इनमें इन्वॉल्व होने की बहुत जरूरत है। ऐसे समूह बनाकर हमारे लोगों के जन लोगों में जागरूकता पहला है, और हमारे संवैधानिक कर्तव्यों का निर्वहन करें।
1: क्या नाम हुआ आपका?
3: मेरा चंद्रमोहन चंपिया, गांव बांजी कुसुम।
1: पढ़ाई लिखाई कहाँ तक?
3: ग्रेजुएशन।
1: फिलहाल क्या कर रहे हो?
3: अभी तो कुछ नहीं करते हैं।
1: स्कूल फॉर सोशल चेंज, ये झारखंड स्तरीय, राज्य स्तरीय, ये दूसरे बैच का तीसरा शिविर है
3: जी।
1: तो पहली बार आप आए हो
3: जी? जी।
1: क्या कुछ सीखने को मिला?
3: बहुत कुछ सीखने को मिला, हम नहीं जानते थे पहले। मेरा पिताजी बोलता था कि पहले हम लोग का यम है जो दोटो था पहले, लुकु या लुकमी, उसका यह से आए थे बोलते हो। तो अभी यहाँ आके वो समझ में आया कि पृथ्वी कैसा बना और गांव कैसा बसा बोल के।
1: तो आगे आने वाले समय में इन सब चीजों का कैसे आप इस्तेमाल करोगे अपने परिवार में, अपने समाज में, किस तरह से
3: अपना गांव में बैठा की कर समझा सकते हैं?
1: ये बात है, तो एक बार की तो कोई भरोसा करेगा नहीं, बोले कहाँ से लेके चले आए। हम इतने सालों से जान रहे हैं, बचपन से जान रहे हैं, तुम ये नया चीज लेके आ गए।
3: एक बार में तो नहीं समझेगा लोग भी,
1: एक बार में नहीं समझेगा। ये क्रिएटिव वर्क है, रचनात्मक बदलाव है, धीरे धीरे होगा। आज हम लोग इसका बीज बो रहे हैं तो ये कई सालों बाद फल देगा
3: जी। जी
1: ना,
3: ऐसा ही धीरे धीरे होगा।
1: ये थी कुछ ग्रामीण युवाओं से हमारी बातचीत, जिन्होंने चांदिल क्षेत्र के चिलगो चकुलिया स्थित सोवरन स्मृति ट्रेनिंग सेंटर में संपन्न 4 दिवसीय आवासीय सामाजिक परिवर्तन शाला में भाग लिया। कार्यक्रम आलोक का आज का ये अंक बाह्य ध्वनि अंकन पर आधारित था। कार्यक्रम के इस अंक के प्रस्तुतकर्ता राकेश रमन, ध्वनि अंकन एवं वाचन स्वर शशांक शेखर का। जोहार।
4: आलो ग्रामीण कार्यक्रम आलोक अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, FM 102.4 MHz।

ये आकाशवाणी जमशेदपुर है। श्रोताओं सुनिए एक आवश्यक सूचना। नीतीश कुमार सिंह उपायुक्त सरायकेला खरसावां समस्त जिलेवासियों से अनुरोध करते हैं कि वर्तमान में चल रही भारत की जनगणना 2027 के अंतर्गत अब आप स्वगणना यानी कि सेल्फ इन्यूमरेशन के माध्यम से अपनी जानकारी स्वयं दर्ज कर सकते हैं। आपके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर ही भविष्य में स्कूल, अस्पताल, सड़कें और सरकारी योजनाओं का लाभ आपके क्षेत्र तक पहुंचाया जाएगा। आप अपने मोबाइल से se.census.gov.in पोर्टल पर अपनी और अपने परिवार की जानकारी स्वयं भरें। यह पोर्टल झारखंड में 15 मई 2026 तक स्वगणना हेतु खुली रहेगी। आपकी गोपनीयता हमारी प्राथमिकता है। हमारे जिले के सुनहरे भविष्य और सटीक योजना निर्माण के लिए हमने अपनी जिम्मेदारी निभाई। अब आपकी बारी है। सूचना समाप्त हुई।

अमिताभ भट्टाचार्य का लिखा गीत आप सुन रहे थे श्रोताओं। संगीत था अमित त्रिवेदी का, आवाजें अरिजीत सिंह और निकिता गांधी की थी और फिल्म थी केदारनाथ। आकाशवाणी जमशेदपुर से श्रोता सुन रहे हैं फिल्म संगीत।

जोश, इस फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत आप सुन रहे थे श्रोताओं अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाजों में। बोल थे समीर के और संगीत था अनु मलिक का।

जीनियस। इस फिल्म का ये गाना था श्रोताओं अरिजीत सिंह की आवाज में। गीत लिखा था कुमार ने और जीनियस फिल्म का ये गाना आप सुन रहे थे श्रोताओं।

0: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 इयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
1: FM 102.4 MHz पर आप हैं श्रोताओं आकाशवाणी जमशेदपुर के साथ और सुन रहे हैं फिल्मी गाने।

श्रेयांक घोषाल और सोनू निगम की आवाजों में सिद्धार्थ गरिमा का लिखा गाना आपने सुना, विक्की प्रसाद का संगीत था। फिल्म थी टॉयलेट, एक प्रेम कथा।

0: इरशाद कामिल के बोल थे, संगीत था संदेश शांडिल्य का, आवाज सुनिधि चौहान की थी और फिल्म थी चमेली। आकाशवाणी जमशेदपुर से श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम, और कार्यक्रम के बाकी गाने लेकर हम अभी हाजिर होते हैं। बने रहिए आकाशवाणी जमशेदपुर के साथ।
1: नमस्कार जमशेदपुर, नमस्कार जमशेदपुर का एक अलग अंदाज,
2: ज्ञान विज्ञान
3: इतिहास के पन्नों से,
2: सेहत और बॉलीवुड की बातें,
1: मौसम का मिजाज,
2: अपने शहर की खबरें,
3: बातों मुलाकातों के साथ
1: सुरीला मनोरंजन
2: और भी बहुत कुछ।
1: आप सुनते हैं कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर में दिन के 11:05 से 12 बजे तक
3: आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से।
1: नमस्कार जमशेदपुर।
4: हेलो मन भावन, आप सुनेंगे नए अंदाज में मेरे यानी निमिषा के साथ। प्रत्येक रविवार दिन के 11 बजे आकाशवाणी जमशेदपुर के विविध भारती केंद्र से 100.8 मेगाहर्ट्ज पर। आपके फोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक बुधवार दोपहर 12 बजे से 12:30 बजे के बीच। हमारा टेलीफोन नंबर है 2960445 और कोड है 0657। तो आप भी जुड़ जाइए हेलो मनभावन कार्यक्रम से।
0: आकाशवाणी जमशेदपुर से श्रोता सुन रहे हैं फिल्मी गाने।

उदित नारायण, शान, वाजिद, सूजी क्यू और क्लिंटन की आवाजों में ये गीत आप सुन रहे थे श्रोताओं पार्टनर फिल्म से। लिखा था इस गाने को संजय छेल ने और म्यूजिक था साजिद वाजिद का।

चाइना गेट। इस फिल्म का यह गाना था श्रोताओं अलका याग्निक, शंकर महादेवन और विनोद राठौर की आवाजों में। गीतकार थे समीर और संगीत था अनु मलिक का।

बधाई हो फिल्म का ये गाना था गुरु रंधावा और नेहा कक्कड़ की आवाजें थी। और श्रोताओं इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत का आज का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। इजाजत दीजिए, नमस्कार। ये आकाशवाणी जमशेदपुर है, अगला प्रसारण होगा

0: का समर्थन करेगा, विश्वास मत कर। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर की अदालतों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। भारत दो दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी बृहस्पतिवार से करेगा। इसमें पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। तेल की बढ़ती कीमतों और अमेरिका ईरान तनाव के बीच घरेलू बाजार में लगभग 2% की गिरावट। और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन के पुरुष डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 के कथित पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। इस मामले में देश भर से कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। जांच एजेंसी ने उच्च शिक्षा विभाग की लिखित शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है। नीट यूजी परीक्षा के संचालन में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक संबंध में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, चोरी और साक्ष्य नष्ट करने तथा सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की जांच के लिए विशेष सीबीआई टीमें विभिन्न स्थानों पर भेजी गई हैं। नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान दल ने अब तक 15 लोगों को हिरासत में लिया है। जांचकर्ता अब संदिग्ध नेटवर्क के विस्तार और परीक्षा से पहले प्रश्न पत्रों के प्रसार से जुड़े धन के लेन देन की जांच कर रहे हैं। दल ने कल जयपुर में मनीष नाम के कथित मुख्य साजिशकर्ता को हिरासत में लिया। सूत्रों के अनुसार इससे पहले राजस्थान पुलिस ने 7 मई को देहरादून से 5 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें कथित मुख्य साजिशकर्ता सीकर का करियर काउंसलर राकेश कुमार भी शामिल था। अगले दिन 4 नीट परीक्षार्थियों को भी गिरफ्तार किया गया। उधर नासिक पुलिस ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। इससे पहले राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द कर दी थी। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
1: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
0: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नव निर्वाचित टीवी के सरकार के लिए होने वाले विश्वास मत से पहले राज्य की राजनीति स्थिति नाटकीय रूप में बदल गई है। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी सरकार को समर्थन देने के मुद्दे पर दो गुटों में बट गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एडापड्डी के पलानीसामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का समर्थन न देने का निर्देश दिया है। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले एक गुट ने एसपी वेलुमणि को ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी विधायक दल का नेता चुना है। ये गुट विश्वास मत के दौरान टीवी के सरकार का समर्थन करेगा। सरकार को अम्मा मक्कल मुनित्र कड़गम के एकमात्र विधायक एस कामराज का भी समर्थन प्राप्त है, जिन्हें आज ही उनकी पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। मुख्यमंत्री जोसेफ विजय कल से ही विश्वास मत से पहले समर्थन जुटाने के लिए सहयोगी दलों के नेताओं से बैठकें कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हेमंत बिस्व शर्मा ने आज लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। डॉक्टर शर्मा के साथ 4 मंत्रियों ने भी शपथ ली। इनमें भाजपा से रामेश्वर तेली और अजंत नियोग, असम गण परिषद से अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट से चरण बोरो शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा सहित 4 मंत्रियों को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि श्री शर्मा ने कुशल प्रशासक के रूप में पहचान बनाई है। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अपने हाथ में ले ली है। मामले की जांच के लिए पुलिस महानिदेशक पंकज सिंह की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया गया है। इस बीच पुलिस ने इस मामले में उत्तर प्रदेश और बिहार से 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। न्यायालय ने आरोपियों को 24 मई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: sbs.com.au/law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर के न्यायालयों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। इसके लिए सरकार से 40 से 50 हजार करोड़ रुपए का आवंटन सुनिश्चित करने को कहा गया है। समिति 31 अगस्त तक प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल को विस्तृत निष्कर्ष और आवश्यक निधि का विवरण प्रस्तुत करेगी। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे, इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि यात्रा के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी।
2: संयुक्त अरब अमीरात दौरे के दौरान भी ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत होगी। जिस प्रकार का हमारी उनसे साझेदारी चल रही है, कैसे इसको और व्यापक किया जाए ताकि हम अपने जो ऊर्जा सुरक्षा हमारी है उसको हम मजबूत कर सके। इसके अलावा जो 4 अन्य देश हैं, नॉर्डिक समिट होने वाला है, नॉर्वे की यात्रा है, स्वीडन की यात्रा है, इटली की यात्रा है, नेदरलैंड्स की यात्रा है, यहाँ पर भी ये देश में से के नवाचार के बहुत बड़ा केंद्र है। इनोवेशन इकोसिस्टम में भारत में बहुत काम हो रहा है और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में ये लोग और ग्रीन ट्रांजिशन में काफी आगे हैं। तो इन सभी मुद्दे पर हमारी बातचीत होगी और वो सब साझेदारी जो विकसित भारत की तरफ हमको ले आता है उसको कैसे मजबूत किया जाएगा।
1: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को चीन के समर्थन से जुड़ी खबरों पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये खबरें पहले से ज्ञात तथ्यों की पुष्टि करती हैं।
2: ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम में हुए आतंकी हमले का एक सटीक, लक्षित और नपातुला जवाब था। इसका उद्देश्य उन आतंकवादी ढांचों को नष्ट करना था जो न केवल पाकिस्तानी राज्य द्वारा प्रायोजित है बल्कि पाकिस्तान से और उनके इशारों पर चलता है। अब यह उन राष्ट्रों को ही तय करना है, उन पर ही निर्भर करता है जो स्वयं को जिम्मेदार मानते हैं कि वे इस बात पर आत्मचिंतन करें कि क्या आतंकवादी ढांचे को बचाने के प्रयासों का समर्थन करना उनकी प्रतिष्ठा और वैश्विक साख को प्रभावित करता है।
1: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार साइबर सुरक्षित भारत के निर्माण की दिशा में अथक प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने में अवैध खातों की समस्या एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने आज रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के साथ एक समझौता किया है। इसका उद्देश्य बैंकिंग और डिजिटल भुगतान प्रणाली में साइबर आधारित वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने और अवैध खातों को कम करने में सहयोग को मजबूत करना है। श्री शाह ने कहा कि इस कदम से अवैध खातों का तेजी से पता लगाया जा सकेगा और उन्हें समाप्त किया जा सकेगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत आर्थिक, तकनीकी अथवा भू राजनीतिक हर तरह की बाधाओं का सामना करने में सक्षम है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि खंडित भू राजनीतिक और व्यवसायिक परिस्थितियों के कारण दुनिया हर दिन संकटों का सामना कर रही है, लेकिन भारत ने लगातार प्रतिकूल परिस्थितियों को अवसरों में परिवर्तित किया है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोने की खरीद टालने और विदेश यात्रा से बचने की अपील एक सकारात्मक कदम और एहतियाती उपाय है। उन्होंने कहा कि देश में आवश्यक वस्तुओं की कोई कमी नहीं है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि इस समय विपक्ष को सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए।
3: विपक्ष को चाहिए कि वो पैनिक ना फैलाए, भ्रम की राजनीति ना करे और आपदा में अवसर की खोज और आविष्कार ना करे। और जिस तरह से कोविड की महामारी में भी विपक्ष ने ऐसी ही भूमिका निभाई थी, लेकिन भारत कोविड की महामारी से उभर पाया और मजबूत होकर निकल के आया, वैसे ही ये जो वैश्विक संकट है, चुनौतियां हैं इसमें, लेकिन भारत में वो मजबूती है कि इन चुनौतियों के सामने मजबूती से खड़ा भी रहेगा और मजबूत होकर उभर के आएगा।
1: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से सरकार मातृभाषा, भारतीय ज्ञान परंपराओं और एआई संचालित शिक्षा पर आधारित अनुसंधान और नवाचार को निरंतर बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल साउथ के देश विश्वास, समाधान और नेतृत्व की अपेक्षाओं के साथ भारत की ओर देख रहे हैं। भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के स्थापना दिवस पर उन्होंने कहा कि यह संगठन भारतीय परिप्रेक्ष्य में सामाजिक विज्ञान अनुसंधान को नई दिशा देने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है।
4: आईसीसीआर समय को आगे जाते हुए आने वाले 10-15 साल भारत को 2047 की रोड मैप में पहुंचने के लिए, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए किस किस प्रकार की सोशल चैलेंजेस को ध्यान देना पड़ेगा, ये आईसीएसएसआर के आने वाले 10-15 साल के काम होने चाहिए। हमें अपनी भाषा को महत्व देना पड़ेगा, हमारी अर्थनीति को मजबूत करना है तो हमारी भाषा को हमें महत्व देना पड़ेगा।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स चिकित्सा नवाचार और स्वास्थ्य सेवा उत्कृष्टता के क्षेत्र में देश का प्रमुख केंद्र बनकर उभरा है। आज नई दिल्ली में एम्स के दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति ने कहा कि एम्स ने किफायती दरों पर रोगी देखभाल और आधुनिक चिकित्सा के उच्चतम मानक स्थापित किए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। तेल की बढ़ती कीमतों और अमेरिका ईरान तनाव के बीच बंबई शेयर बाजार में लगभग 2% की गिरावट आई है। अन्य आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं अमित गोयल।
5: बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज 1.9% के नुकसान से 1456 अंक लुढ़ककर 74,559 के स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 1.8% की गिरावट से 436 अंक गिरकर 23,380 के स्तर पर रहा। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 32 पैसे की गिरावट से 95.63 पैसे प्रति डॉलर के रिकॉर्ड निचले स्तर पर दर्ज हुआ।
1: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने 2025-26 में 1,98,000 करोड़ रुपए का अब तक का सबसे अधिक शुद्ध लाभ दर्ज किया है। ये लगातार चौथा वर्ष है जब बैंक मुनाफे में रहे। वित्त मंत्रालय ने कहा कि यह प्रदर्शन तेजी से बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की मजबूती और स्थिरता को दर्शाता है। गुजरात में जनगणना का पहला चरण 1 जून से शुरू होगा। लोगों को पहली बार भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए स्वगणना पोर्टल se.census.gov.in के माध्यम से जनगणना में शामिल होने का अवसर मिलेगा। 17 से 31 मई तक लोग पोर्टल पर स्वगणना पूरी कर सकेंगे। 1 से 30 जून तक नामित जनगणना अधिकारी घर घर जाकर जानकारी एकत्र करने के लिए परिवारों की सूची तैयार करेंगे। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने आज रीभोई जिले के भोईरिम्बोग में एरी रेशम प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य राज्य के पारंपरिक रेशम उद्योग को मजबूत करना और बुनकरों के लिए बेहतर बाजार पहुंच बनाना है। थाईलैंड बैडमिंटन ओपन में पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने इंडोनेशिया के पुत्र एरवियान सिहा और बगास मोलाना को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है, जबकि हरिहरन, अमसा कारुनन और एमआर अर्जुन तथा महिला डबल्स में रितुपर्णा श्वेतापर्णा पांडा को हार का सामना करना पड़ा। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी प्रतियोगिता में लक्ष्य फोगाट ने फाइनल में प्रवेश कर लिया है, जबकि 4 अन्य मुक्केबाजों ने सेमीफाइनल मुकाबलों में कांस्य पदक हासिल किया। आईपीएल क्रिकेट में अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात टाइटंस ने 17वें ओवर में 4 विकेट पर 124 रन बना लिए हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 के लिए पंजीकरण जल्द ही समाप्त होने वाले हैं। इच्छुक उम्मीदवारों को 19 मई से पहले यात्रा के लिए आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए kmygov.gin पर लॉगिन कर सकते हैं। सीबीआई अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सीबीआई ने कथित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में मामला दर्ज किया। देश भर से कई संदिग्धों को हिरासत में लिया। तमिलनाडु में एआईएडीएमके पार्टी में फूट। 30 विधायकों का बड़ा गुट विजय की सरकार का समर्थन करेगा, विश्वास मत कल। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर की अदालतों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। भारत 2 दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी बृहस्पतिवार से करेगा। इसमें पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। तेल की बढ़ती कीमतों और अमेरिका ईरान तनाव के बीच घरेलू बाजार में लगभग 2% की गिरावट। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: Manthan.
1: नमस्कार, मंथन कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित गोयल। आज हम चर्चा करेंगे विकसित भारत जी राम जी के बारे में। हमारे साथ आज जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष झा। आशुतोष जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।

0: देश का विकास होना है तो जो भी निर्माण हो वो स्थायी, उस दिशा में ये जी राम जी की पहल जो है वो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी दिशा में जाएगी, और अगले 5-7 साल में जब इसका इम्पैक्ट दिखना शुरू होगा तब ये पता चल जाएगा कि जिस सोच के साथ इसे जमीन पर उतारने की कोशिश हुई है वो पूरा हो गया, और सही तरीके से अगर इसका कार्यान्वयन हुआ तो मुझे विश्वास है कि पूरा होगा।
1: जी चलिए सुनते हैं हमारे केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने इसकी जानकारी देते हुए क्या कहा और कब से लागू हो रही है इसके बारे में उन्होंने बताया।
2: विकसित भारत जी राम जी अधिनियम की अधिसूचना जारी कर दी गई। 1 जुलाई से अब विकसित भारत जी राम जी योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार चाहने वाले हमारे मजदूर भाइयों को बहनों को अब 100 नहीं साल में 125 दिन का रोजगार दिया जाएगा। बीच के समय में मनरेगा के सारे प्रावधान लागू रहेंगे, अधूरे काम अभी 1 जुलाई के पहले तक मनरेगा के अंतर्गत ही पूरे किए जाएंगे। अभी व्यापक पैमाने पर राज्यों से सलाह मशवरा करके नियम बनाने की प्रक्रिया जारी है। विकसित भारत जी राम जी के अंतर्गत अधिकतम राज्यों को 6 माह का समय रहेगा अपेक्षित तैयारी के लिए।
1: आशुतोष जी, जिस तरह से मंत्री जी ने भी कहा कि 6 महीने का समय दिया गया है तैयारी करने के लिए, लेकिन जब तक जैसे कि 1 जुलाई से ये प्रावधान लागू होने हैं और तब तक मनरेगा के प्रावधान ही लागू रहेंगे, तो इसमें क्या कहीं कोई संशय है या कुछ इस तरह की बात है जिसमें लोगों को समझ नहीं आ रहा या राज्यों से कोई अपेक्षा समर्थन नहीं मिल पा रहा?
0: जो विपक्षी राज्य है उनकी ओर से ये सवाल उसी समय से उठने शुरू हुए थे कि इसमें अगर 40% राज्यों को खर्च करना पड़ेगा तो राज्यों पर भार पड़ेगा और वो समस्या होगी। तो विपक्षी राज्यों की ओर से ये समस्याएं आ रही थी, वो उनकी ओर से ये सवाल खड़े किए जा रहे थे। लेकिन जो दूसरी बातें हैं इसमें कि देखिए, जो नए प्रावधान इसमें किए गए कि भाई आप 125 दिन की का गारंटी देंगे, आपकी जो निगरानी व्यवस्था होगी, निगरानी तंत्र होगा वो बिल्कुल जमीन पर मौजूद होगा, अगर 1 सप्ताह का साप्ताहिक कोई काम होता है तो सप्ताह खत्म होते ही उसे तत्काल पेमेंट होना चाहिए, इस तरीके की तैयारियां, और प्लस ये कि आप एक तैयारी इस लिहाज से करते हैं कि हमें किस तरीके के कंस्ट्रक्शंस करने हैं, क्योंकि इसमें पंचायतों की जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी है, बहुत सारी योजनाएं जो पहले से चल रही थी उसको इसमें समाहित किया जाना है, तो इस तरीके की तैयारी की बात थी। देखिए अदरवाइज तो क्या है, 2005 से ही ये योजना चल रही थी तो चल ही रही थी, जो बदलाव हुए उसको देखते हुए जो तैयारी राज्यों को करनी है उस लिहाज से जो ग्रामीण विकास मंत्री ने जो बात कही, मुझे वही लगता है इसमें बहुत कंफ्यूजन की बात नहीं है।
1: 1 जुलाई से इस तरह की योजना लागू हो रही है और इसमें जिस तरह से आपने भी बताया कि इसमें कुछ नए प्रावधान जोड़े गए हैं, नए कामों को भी, और साथ ही साथ समय से भुगतान को सुनिश्चित किया गया है, और अगर भुगतान अगर समय से नहीं होता तो क्या किसी तरीके का उनको हर्जाना भी मिलने की इसमें कुछ प्रावधान है?
0: जी बिल्कुल, ये अच्छी बात इसमें है, क्योंकि देखिए जो पुराने रिकॉर्ड जो बताते हैं मनरेगा के टाइम से जो चलती रही थी बात, उसमें ये समस्या शुरुआत से आ रही थी कि काम कर लिया भुगतान नहीं हो रहा है, महीनों महीनों पड़े हुए हैं, और फिर देने के लिए जो है सो मजदूर को रिश्वत देनी पड़ रही है, इस तरीके की समस्या। तो इसमें बाकायदा ये इंतजाम किया गया, क्योंकि ये तो रिकॉर्ड में होगा ना कि आपने आज से काम शुरू किया और अगले 20 दिन तक पहले काम किया, ये रिकॉर्ड में है, और उसमें प्रोविजन है कि आपको जो है कार्य संपन्न होने के बाद मैक्सिमम जो है 15 डेज का दिया गया है कि उसके बीच में आपको भुगतान करना है, अगर आप नहीं करते हैं तो पर डे के हिसाब से हर्जाना उसमें जोड़ना होगा। तो ये अच्छी बात है, क्योंकि मुझे लगता है कि तभी तंत्र ज्यादा मजबूती से काम कर पाता है जब उसमें एक जवाबदेही तय कर दी जाती है, तो यहाँ जवाबदेही तय की गई है।
1: जवाबदेही की आपने बात करी तो इस बारे में भी केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कुछ जानकारी दी है।
2: विकसित भारत जी राम जी के अंतर्गत रोजगार देने के लिए भारत सरकार ने ही अपने बजट में 95,600 करोड़ से ज्यादा की राशि का प्रावधान किया है। राज्यों ने भी अपने अपने बजट में विकसित भारत जी राम जी को लागू करने के लिए प्रावधान किया है, और केंद्र और राज्यों की कुल राशि अगर जोड़ ली जाए ये 1,51,000 करोड़ रुपए से ज्यादा होगी। मजदूरों को भुगतान DBT के माध्यम से उनके बैंक या डाकघर में जो अकाउंट है उसमें किया जाएगा। कोशिश होगी कि 3 दिन के अंदर हो, लेकिन अधिकतम 15 दिन के अंदर प्रक्रियाएं पूरी करके उनके खाते में पैसा आ जाए। 15 दिन के अंदर अगर पैसा नहीं आया तो हमारे मजदूर भाई बहन विलंबित भुगतान के पात्र भी होंगे। देरी से देंगे तो उस पर एक निश्चित राशि अलग से देनी पड़ेगी, और मांगने पर अगर रोजगार नहीं मिला तो बेरोजगारी भत्ता भी देना पड़ेगा।
1: जिस तरह से मंत्री जी ने कहा कि अगर मांगने पर रोजगार नहीं मिलता तो आपको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, तो कहीं ना कहीं कोई

0: संशय की गुंजाइश तो बनती नहीं है। ये योजना पहले की योजना से किस मायने में अलग देखते हैं आप?
1: दो तीन बड़े अंतर हैं। अगर सिर्फ प्रावधान की बात करें, प्रावधान की सबसे बड़ी बात तो ये कि अगर उसमें 100 दिन की गारंटी थी तो इसमें 125 दिन की गारंटी है, और राज्यों को ये तय करने का अधिकार दिया गया कि आप कौन सा लीन पीरियड मानते हैं और कौन सा ऐसा पीरियड मानते हैं जिसमें काम नहीं दिया जा सकता। ये दोनों चीजें हैं उसमें। रेनी सीजन है, अब पता चला उस बीच में कोई रोजगार मांगने आ जाए तो कैसे देंगे आप, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम होना है वहां पर। तो इस तरीके की छूट भी है राज्यों को। इसमें बिल्कुल संशय नहीं है कि ये थोड़ी बहुत घटनाएं होती थी कई जगहों से कि काम मांगने पर भी काम नहीं मिलता था। क्यों? क्योंकि इंतजार करवाते थे वो जो जिलाधिकारी होते थे, वो ये देखते थे कि भाई अभी काम शुरू करना है तो फिलहाल इसको टाल कर रखो, जो एक होता है ना कि फिलहाल आप इसको नजरअंदाज करो, फिर कोई काम शुरू होगा तो फिर महीने भर बाद 45 दिनों बाद एक कोई काम शुरू हो रहा है तो उसमें जोड़ने की कोशिश होती थी। इसमें जो अच्छी बात है नई स्कीम क्या है कि विभिन्न योजनाओं के तहत बहुत सारे कार्य राज्य सरकारों के भी चल रहे होते हैं। गांव में हॉस्पिटल बन रहे हैं, कोई और काम हो रहा है, बहुत तरीके के काम, कोई तालाब खुदाई की बात हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो उसको इससे जोड़ा जा सकता है। जो इन्होंने बात कही कि केंद्र और राज्यों के पैसे मिला करके केंद्र ने 95,000 करोड़ रुपीज का इसमें प्रोविजन किया है और राज्यों की ओर से जो 40% की बात थी उसको जोड़ करके उन्होंने वो कहा। अब इसमें बहुत सारे काम हो सकते हैं और मुझे नहीं लगता कि अगर कोई व्यक्ति जो अनस्किल्ड लेबर जिसकी बात हम करते हैं, क्योंकि इसमें अनस्किल्ड लेबर को ही मिलता है, वो कोई काम मांगे और उसे काम नहीं दिया जा पाए, मुझे ऐसी कहीं गुंजाइश नहीं दिखती है। फिर भी अगर कहीं इस तरीके की स्थिति होती है तो मुझे लगता है वहां जरूर जानबूझकर लापरवाही हो रही है। ये एक सबसे बड़ा अंतर है कि बदलाव दिखेगा मुझे लगता है
0: जी। क्या इसमें राज्य सरकार या पंचायत के स्तर पे भी जो कुछ कार्य होते थे उसमें इसमें समाहित किया गया है उनको, और जिससे कि आपने अभी जैसे बताया कि बहुत सारे कार्य अलग अलग तरीके से चलते रहते थे लेकिन सबको एक समाहित करके जिसमें कि धन का आवंटन की कमी ना आए, क्योंकि एक बड़ा भाग इसमें बजट में भी इसके लिए प्रस्तुत किया गया है।
1: यही बात जो राज्य विरोध कर रहे थे उनको यही समझाने की कोशिश हुई थी कि 40% ये आप पर कोई अतिरिक्त दबाव नहीं पड़ रहा है। अगर कोई भी निर्माण हो रहा है राज्य में तो वो राज्य के फायदे के लिए है या नहीं, तो राज्य के लिए फायदे के है तो राज्य उसमें हिस्सेदारी क्यों नहीं करेंगे। राज्य के लोगों के फायदे के लिए है कि नहीं तो उन्हें रोजगार मिलेगा, तो फिर राज्यों की हिस्सेदारी क्यों नहीं होनी चाहिए, जिम्मेदारी और जवाबदेही, ये दोनों चीज इसमें समाहित किया गया है, जिससे मुझे लगता है ये ज्यादा प्रभावी होगा, जमीन पर ये दिखना शुरू होगा
0: जी। इस बारे में केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि एक बड़ी धनराशि इसके लिए रखी गई है और इसमें कौन कौन से कार्य कराए जा सकते हैं, इसके बारे में भी उन्होंने कुछ जानकारी दी है।
2: 1,51,000 करोड़ से ज्यादा की विशाल धनराशि से गांव में इंफ्रा के सारे काम व्यापक पैमाने पर होंगे। जल संरक्षण के काम, गांव में अधोसंरचना के काम, सड़क, पुल, पुलिया, स्कूल, आंगनबाड़ी भवन, खेत, सड़क जो जरूरी है सब किए जा सकेंगे। आजीविका मूलक काम भी, सेल्फ हेल्प ग्रुप की दीदी हो, एफपीओ हो, उनके लिए वर्किंग शेड जैसी कई अधोसंरचनाएं भी बनाई जा सकेंगी, और प्राकृतिक आपदा से बचाने के लिए संरचनाएं जैसे रिटेनिंग वाल वगैरह, अगर नदी के किनारे कोई गांव है जहां पानी भरता है तो वैसे काम भी लिए जा सकेंगे। इस योजना के अंतर्गत जो काम करने वाले हमारे कर्मचारी साथी है उनको पर्याप्त और समय पर वेतन का भुगतान हो, इसके लिए प्रशासनिक व्यय को भी बढ़ा के 6-9% कर दिया गया है। मजदूरों की जिंदगी में एक नए सवेरे का आगाज हो रहा है और विकसित भारत के लिए विकसित गांव बनाने का संकल्प प्रधानमंत्री जी का पूरा करने में यह योजना मील का पत्थर साबित हो।
0: जैसे केंद्रीय मंत्री ने बताया कि विकसित गांव बनाने की तरफ ये एक बड़ा कदम है, तो ये जानना बड़ा जरूरी है कि क्या गांव के आसपास ही उनको रोजगार मुहैया कराया जाएगा, इसके लिए समर्पित होगा, या उसमें कहीं दूरी का भी कोई प्रावधान नहीं है?
1: जो इसकी मंशा है वो यही है कि गांव के आसपास जो जहां के रहने वाले हैं उसके आसपास ही रोजगार मुहैया हो, और चूंकि बहुत बड़े स्तर पर कार्य चल रहे होते हैं हर जगह, कार्य और नए शुरू किए जा सकते हैं। अब जैसे इन्होंने बात कही कि जल संरक्षण, अब जल संरक्षण आज इसके की प्राथमिकता में शामिल है तो जल संरक्षण को सबसे ऊपर रखा गया। इसके अलावा एक खूबसूरत बात इसमें जोड़ी गई है कि आपदा से निपटने की तैयारी। अब देखिए आपदा से निपटने की तैयारी कई मिनिस्ट्री के लेवल पे चल रही है जिसमें होम मिनिस्ट्री भी शामिल है और उसमें बहुत सारे मिनिस्ट्री शामिल है, उसमें वाटर रिसोर्सेज मिनिस्ट्री भी शामिल है, केंद्र से लेकर के राज्य तक, यानी एक पूरे सहयोग की बात होगी। हर मिनिस्ट्री केंद्र से लेकर के राज्य तक

0: एक दूसरे से सहयोग करके ऐसी अधोसंरचना का ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर रहा होगा जो स्थायी होगा और वो हमेशा के लिए देश के काम आएगा। तो जाहिर तौर पर उसमें गांव तो शामिल होंगे। आप ये मान के चलिए कि अधिकतर जो इसमें लाभ मिलना है वो गांव को मिलना है। शहरों में तो बहुत बड़े लेवल पे इन्वेस्टमेंट आ रहे होते हैं कहीं ना कहीं से, गाँव में ही समस्या सबसे ज्यादा खड़ी होती है, जहाँ राज्य सरकार भी कई बार हिचकिचाती है और केंद्र सरकार से जो पैसे जा रहे हैं कई बार वो खर्च नहीं हो पाते हैं ढंग से क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। इस स्कीम के जरिए मुझे लगता है सबसे ज्यादा फायदा गांव को होगा। और इसीलिए बात हो रही है ना कि गांव, हम लोग तो हमेशा से बोलते रहे कि भारत गांव का देश है, बचपन से हम लोग ये पढ़ते भी रहे हैं। गाँव विकसित होगा तो देश भी विकसित होगा, यही इसकी मंशा है।
1: और शहरों पे भी जो ग्रामीण का जो बोझ होता है, अचानक से शहरों पे शहरीकरण का बोझ है, शायद उसको भी कम करने में मदद मिलेगी और ग्रामीण क्षेत्र का भी विस्तार होगा। एक महत्वपूर्ण जो मैं इसमें बात देख रहा था कि 5 किलोमीटर से अगर दूर होगा कोई कार्यस्थल तो उसके लिए मजदूरों को कुछ अतिरिक्त भुगतान भी किया जाएगा, ये शायद इस योजना को काफी आकर्षक बनाता है।
0: जी बिल्कुल। अब अगर कोई गाँव का एक मजदूर, आप उसे 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पे एक काम दे रहे हैं और दिन भर की दिहाड़ी के हिसाब से, जो चूंकि इसमें मिनिमम वेजेस का ही एक हिसाब होता है
1: जी,
0: उस पे तो वो बहुत आकर्षक कभी नहीं हो सकता। इसीलिए ये बात देखिए, जो पहली योजना थी मनरेगा, उसमें भी ये बात थी कि उस घर के आसपास, लेकिन उसमें कोई एक डिस्टेंस को डिमार्केट नहीं किया गया था कि हाँ 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर, तो आसपास आप कुछ भी बोल सकते थे, 10 किलोमीटर भी बोल सकते थे। तो ये बताना कि भाई 5 किलोमीटर के डिस्टेंस में ये बहुत आकर्षक बनाता है, तो एक तो 125 दिन की गारंटी, दूसरा पेनल्टी अगर उनको समय पर भुगतान नहीं किया जाता है उनका जो वेतन है, और तीसरा गांव के बिल्कुल आसपास, ये तीनों चीजें हैं जो इसे बहुत ही आकर्षक बनाएगी।
1: जी, क्योंकि ये एक अधिनियम ऐसा है जिसमें केंद्र, राज्य और स्थानीय योजनाओं का भी समन्वय है, तो एकल योजना बहुवित्त पोषण दृष्टिकोण को इससे काफी बढ़ावा मिलता हुआ नजर आता है। क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि राज्य सरकार पे अलग योजनाएं चल रही हैं उसी मतलब की, और केंद्र सरकार भी इसी तरीके की योजना चला रही है, और शायद गांव के लेवल, पंचायत लेवल पे भी, स्थानीय स्तर पे भी इस तरह की कभी कभी योजनाएं आ जाती हैं, तो कहीं ना कहीं उसका समावेशीकरण हो जाएगा तो उसमें बेहतर होगा कि एक तरह की योजना जिसकी की खासतौर पर जरूरत है ग्राम के क्षेत्रों को, उसका पूरा भरपूर लाभ मिल सके।
0: बिल्कुल, यही मंशा है, कन्वर्जेंस। जितनी स्कीम चल रही है उसका कन्वर्जेंस होना चाहिए, तभी क्या है कि आप पैसे को सही तरीके से खर्च कर पाएंगे और सही तरीके से निर्माण भी हो पाएगा। ये बहुत जरूरी इसका हिस्सा था और वही जरूरी है देश के लिए हर तरीके से।
1: चलिए, तो मोटे तौर पर ये मान लिया जाए कि गाँव के 5 किलोमीटर के दायरे में रोजगार मिलेगा, जल सुरक्षा, ग्रामीण बुनियादी ढांचा, आजीविका संबंधी बुनियादी ढांचा और चरम मौसम से बचाव संबंधी कार्य इसमें लागू किए जा सकेंगे, 100 दिन के मुकाबले 125 दिन का रोजगार इसमें सुनिश्चित किया गया है, और साथ ही साथ भुगतान भी समय पर मिले इसकी गारंटी भी की गई है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो शायद इस योजना को पहली योजना से ज्यादा आकर्षक बनाती हैं और साथ ही साथ जिम्मेदारी भी तय करती हैं, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो। आशुतोष जी, हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: श्रोताओं, ये कार्यक्रम आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
2: मंथन।

आकाशवाणी दिल्ली का प्रसारण अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के ठीक 10 बज रहे हैं श्रोताओं। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत।

सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम का आगाज इस प्यारे से गीत के साथ।

कार्यक्रम का पहला गीत आपने सुना कभी कभी फिल्म से। आवाजें लता मंगेशकर और मुकेश की थी। शब्द रचना थी साहिर लुधियानवी की और तर्ज बनाई थी खयाम ने।

गीतकार थे आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की थी और ये गीत हमने लिया था फिल्म नाइट इन लंदन से। श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं ये अगला गीत।

तुमसे अच्छा कौन है। ये था फिल्म का नाम जिसका गीत अभी आप सुन रहे थे। स्वर लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी के, बोल हसरत जयपुरी के और धुन शंकर जयकिशन की।

शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में गीत लिखा हसरत जयपुरी ने, आवाज़ें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की थी और फिल्म थी दिल तेरा दीवाना। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं श्रोताओं और सुनते हैं ये गीत।

शब्द रचना थी साहिर लुधियानवी की, संगीत था चित्रगुप्त का, स्वर लता मंगेशकर मोहम्मद रफी के, फिल्म थी वासना। आकाशवाणी जमशेदपुर से श्रोताओं आप सुन रहे हैं फिल्मी गाने।

फासले, ये था फिल्म का नाम जिसका गीत अभी आप सुन रहे थे। आवाज़ें लता मंगेशकर और किशोर कुमार की थी। शब्दकार थे शहरयार और संगीतकार शिवहरी।

गुमराह इस फिल्म का ये गाना था श्रोताओं महेंद्र कपूर की आवाज़ थी। शब्द रचना थी साहिर लुधियानवी की और तर्ज बनाई थी रवि ने। FM 102.4 MHz पर ये आकाशवाणी जमशेदपुर है और श्रोता सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में शकील बदायूनी का लिखा यह गाना आप सुन रहे थे। नौशाद का संगीत था और फिल्म थी संघर्ष।

दिले ना था फिल्म का ये गाना था श्रोताओं, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें थी। संगीतकार थे खयाम।

ब्लैकमेल इस फिल्म का ये गाना आप सुन रहे थे, श्रोताओं, किशोर कुमार की आवाज़ थी। गीतकार थे राजेंद्र कृष्ण, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी।

बाजार इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे श्रोताओं। लता मंगेशकर और तलत अजीज की आवाजें थीं। शब्दकार थे मखदूम मोहिउद्दीन और तर्ज थी खयाम की। और श्रोताओं, इसके साथ ही फिल्म संगीत का आज का ये कार्यक्रम यहीं खत्म होता है। इजाजत दीजिए, नमस्कार।

फिल्म संगीत का कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी जमशेदपुर है FM 102.4 MHz पर। रात्रि के 11 बजने ही वाले हैं। थोड़ी ही देर में हिंदी और अंग्रेजी में समाचार प्रसारित किए जाएंगे दिल्ली केंद्र से।

0: मैं वैष्णवी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 के कथित पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। इस मामले में देश भर से कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। जांच एजेंसी ने उच्च शिक्षा विभाग की लिखित शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है। नीट यूजी परीक्षा के संचालन में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के संबंध में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, चोरी और साक्ष्य नष्ट करने तथा सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की जांच के लिए विशेष सीबीआई टीमें विभिन्न स्थानों पर भेजी गई है। नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान दल ने अब तक 15 लोगों को हिरासत में ले लिया है। कल जयपुर में मनीष नाम के कथित मुख्य साजिशकर्ता को हिरासत में लिया। उधर नासिक पुलिस ने नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। इससे पहले राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द कर दी थी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
1: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने

0: जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
1: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित टीवीके सरकार के लिए होने वाले विश्वास मत से पहले राज्य की राजनीतिक स्थिति नाटकीय रूप में बदल गई है। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी सरकार को समर्थन देने के मुद्दे पर दो गुटों में बंट गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एड्डापाडी के पलनी स्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया है। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले एक गुट ने एसपी वेलुमणि को ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी विधायक दल का नेता चुना है। ये गुट विश्वास मत के दौरान टीवी के सरकार का समर्थन करेगा। भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता हिमंत बिस्व शर्मा ने आज लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। डॉक्टर शर्मा के साथ चार मंत्रियों ने भी शपथ ली। इसमें भाजपा के से रामेश्वर तेली और अजंता नियोग, असम गण परिषद से अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट से चरण बोरो शामिल है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर के न्यायालयों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। इसके लिए सरकार से 40 से 50 हजार करोड़ रुपए का आवंटन सुनिश्चित करने को कहा गया है। समिति 31 अगस्त तक प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल को विस्तृत निष्कर्ष और आवश्यक निधि का विवरण प्रस्तुत करेगी। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। श्री जायसवाल ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि यात्रा के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी।
2: संयुक्त अरब अमीरात दौरे के दौरान भी ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत होगी। जिस प्रकार का हमारी उनसे साझेदारी चल रही है, कैसे इसको और व्यापक किया जाए ताकि हम अपने जो ऊर्जा सुरक्षा हमारी है उसको हम मजबूत कर सके। इसके अलावा जो चार अन्य देश हैं, नॉर्डिक समिट होने वाला है, नॉर्वे की यात्रा है, स्वीडन की यात्रा है, इटली की यात्रा है, नेदरलैंड्स की यात्रा है, यहाँ पर भी ये देश में से नवाचार के बहुत बड़ा केंद्र है। इनोवेशन इकोसिस्टम में भारत में बहुत काम हो रहा है और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में ये लोग और ग्रीन ट्रांजिशन में काफी आगे हैं। तो इन सभी मुद्दे पर हमारी बातचीत होगी और वो सब साझेदारी जो विकसित भारत की तरफ हमको ले आता है उसे कैसे मजबूत किया जाएगा।
1: आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हरा दिया है। थाईलैंड बैडमिंटन ओपन आज से शुरू हो गया है। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने इंडोनेशिया की जोड़ी को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. The Central Bureau of Investigation, CBI, has registered a case in connection with an alleged paper leak in the conduct of the National Eligibility Cum Entrance Test, NEET UG 2026. The agency has registered the case based on a written complaint received from the Department of Higher Education, Ministry of Education. The agency stated that special CBI teams have been formed and dispatched to various locations for an investigation into the matter. NEET UG 2026 exam was conducted by the National Testing Agency, or NTA, on the 3rd of this month. In this case, the Rajasthan Police Special Operations Group, SOG, has so far detained 15 people. The SOG yesterday detained an alleged mastermind identified as Manish from Jaipur. Addressing a press conference on NEET exam cancellation in New Delhi, DG National Testing Agency Abhishek Singh said, NTA will conduct a re-exam for students and it will be done in a fair manner and no additional fee will be charged for the re-exam. The political situation in Tamil Nadu has turned dramatic ahead of tomorrow's floor test for the newly elected TVK government led by Joseph Vijay. The All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam has split into two groups over extending support to the government. The faction led by former Chief Minister and Party General Secretary, Edappadi K. Palaniswami, has directed Party